फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की तीन दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान

0: रॉयल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम इंटरनेट स्ट्रीमिंग और डीटीएच पर सुन सकते हैं और इसके अलावा एंड्रॉइड और आईओएस पर एक एप्लीकेशन है न्यूज ऑन एआईआर, जिसके जरिए आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद दुनिया के किसी भी कोने में और दिन के किसी भी समय ले सकते हैं।
2: यह है विविध भारती।
1: वंदन वार

चिंतन। बाबा साहब अंबेडकर का कथन है, मनुष्य का जीवन महान होना चाहिए ना कि लंबा। भक्ति संगीत।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग झरोखा। सुनिए लिखा जोखा आज विविध भारती से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। श्री रामचरितमानस कांड का 198वां भाग सुनवाया जाएगा आपसे कुछ देर बाद 6:35 पर। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों चल रही है श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार है शकुंतला नरसिम्हन, आज दूसरी कड़ी। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम, 7:30 पर हम है रही प्यार के। सुबह 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक। आज जाने माने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के याद का दिन है। सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित होगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 पर दोबारा सुना जा सकता है। सुबह 10 बजे पिटारा में बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत लेखक और निर्देशक देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत सुनवाई जाएगी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। दिन में 11 बजे सुनिएगा विविधा। विविधा के अंतर्गत हासी नाटिका होगी सास बहू और हेलो फरमाइश, लेखक निर्देशक यूनुस खान। व्यंग्य नाटक ये उन दिनों की बात है, अभिनय नरोत्तम बीन। दिन में 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर। दिन में 2 बजे त्रिवेणी सुनाई जाएगी, 2:30 पर सुनिएगा सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे मन चाहे गीत सुनिएगा, 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक चंदन वृक्ष, उषा सक्सेना ने इसे लिखा है, निर्देशक रमा अरुण त्रिवेदी। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का 5वां और आखिरी भाग सुनवाया जाएगा आज शाम 4 बजे। शाम 5 बजे छाया गीत सुनिएगा, 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम होगा, कर्नाटक संगीत पद्धति के राग भाग 2, कलाकार शकुंतला नरसिम्हन। शाम 7 बजे सैनिकों की शौर्य गाथा, इस श्रृंखला में महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन निकी जाकू केंगुर से की शौर्य गाथा सुनवाई जाएगी। 7:45 पर साज और आवाज कार्यक्रम में सुरेश यादव की बजाई फिल्मी धुने सैक्सोफोन पर और फिर वही फिल्मी गाने। रात 8 बजे हवा महल में झलकी सुनिए मैरिज एनिवर्सरी, हरि नारायण शर्मा ने इसे लिखा, HS व्यास का निर्देशन। 8:15 पर चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम होगा, 9:30 पर मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित होगा आज के फनकार कार्यक्रम। सुबह रात्रि 10 बजे छाया गीत सुनिएगा, 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11 बजे विविधा सुनिएगा, हास्य नाटिका सास बहू और हेलो फरमाइश। और इसके अलावा विविधा के अंतर्गत व्यंग्य नाटक ये उन दिनों की बात है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आपको बता दें सुबह 9:30 और रात 9:30 पर मजरू सुल्तानपुरी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। आज है मजरू की याद का दिन।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्री राम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है?

0: श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी मान्यताएं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: श्रोतागण नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसा राग के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे एक तरीके से मॉडर्न या आधुनिक कहा जा सकता है। कुछ राग ऐसे हैं जो प्राचीन काल से हजार वर्ष के पूर्व प्रसिद्ध हैं और थे, और कुछ ऐसे हैं जिनकी रचना हाल ही में हुई थी। कतन कुतूहलम इसी प्रकार का एक राग है। पटनम सुब्रमण्य अय्यर, जो एक वाग्यकार थे, करीब 100-150 साल पहले इसे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में शामिल किया था। उस समय हमारे देश में अंग्रेजी शासक राज्य करते थे और विलायती बैंड संगीत सुनने को मिलता था। पटनम सुब्रमण्य अय्यर ने इस राग को पाश्चात्य बैंड संगीत की शैली में बनाया और स्वर इस प्रकार लगते हैं।

अर्थात इसमें लगने वाले स्वर शुद्ध हैं। यह 29वां मेलकर्ता राग धीर शंकराभरणम से जन्य है, तो स्वर शंकराभरणम के अर्थात बिलावल के शुद्ध स्वर लगते हैं। राग कतन कुतूहलम का चलन इस प्रकार है। सर मधन निगा पर।

सने दा परसा। क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि कुछ पाश्चात्य धुन बज रहा हो? लेकिन यह बताना जरूरी है कि वेस्टर्न बैंड संगीत पर आधारित होते हुए भी राग कतनकुतूहलम कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पद्धति का ही एक नमूना माना जाता है, अर्थात इसको अच्छी तरह शामिल कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि पाश्चात्य संगीत की झलक इसमें होने के कारण इसे शास्त्रीय कोश में शामिल नहीं कर सकते। भला कर्नाटक पद्धति हो या हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय संगीत हो, हमारी भारतीय प्रथा में सदा दूसरी सभ्यताओं में से कुछ अंश ग्रहण करके अपना लेना और उसे एक भारतीय रूप देकर उसकी शोभा बढ़ा देना, यह हमारी विशेषता है, हमारी परंपरा की विशेषता है, हमारी कला की विशेषता है। तो आइए अब सुनते हैं राग कतनकुतूहलम में शेष गोपालन की आवाज में मुत्तैया भागवतर की एक रचना। यह कृति आदि ताल में है, अनुपल्लवी के बाद।

अर्थात अंतरा के बाद एक चित्तस्वरम यानी बंदिश सरगम जुड़ा हुआ है, जिसमें आप राग कतन कुतूहलम का स्वरूप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो सुनिए विद्वान शेष गोपालन की आवाज में राग कतन कुतूहलम में मुत्या भागवतर की एक रचना।

0: ஜடாதம் கிருபாகரம் இது
1: राग कतन कुतूहलम में सबसे ज्यादा मशहूर एक कीर्तनम है त्यागराज रचित, जो है रघुवंश सुधाम बुधि, जिसकी रचना पट्टनम सुब्रमण्य अय्यर ने खुद की। तो उसका भी एक छोटा सा झलक मैं दे देती हूँ आपको।

0: अभी आप सुन रही थी जल तरंग पर राग कदन कुतूहलम। कलाकार थे अन्यम पट्टी एस गणेशन और एस तंदपानी। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं कि इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: आइए सुने भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का आगाज एक ही रास्ता फिल्म के गाने से करते हैं। हेमंत कुमार की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीत खुद हेमंत कुमार का है।
1: लवली निगम विदेश मंत्री डॉक्टर
2: अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यवसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Anuja Kumar. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with the US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues including regional and global peace and security. U.S. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting. He called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defense, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts in West Asia through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio shared U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. He called India a vital partner to the United States. The government has published draft rules under the Viksit Bharat Jiramji Act 2025 for wider public consultation. The Rural Development Ministry said that any person, stakeholder, organization or institution may submit objections or suggestions on the draft rules for consideration by the 21st of next month. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister J.P. Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the state health scheme, Swasthya Sathi, will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The Memorandum of Understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. Mr. Adhikari said that a proposal has been sent to the centre regarding an increase in the number of PM Jan Aushadhi Kendras in West Bengal from the existing 117 to 469. The Chief Minister also said that proposals for new medical colleges in Alipurduar, Kalimpong and South Dinajpur districts as well as a new AIIMS for North Bengal have also been sent to the central government. In Maharashtra, a 1,500-page charge sheet has been filed before the court at Nashik in connection with the alleged sexual assault and attempted religious conversion case linked to a TCS facility in the city. According to an SIT chief, Sandeep Mithke, the charge sheet was filed yesterday against four accused, Martin Patel, Nida Khan, Danish Sheikh and Tosif Attar. He said additional charge sheets related to 7 to 8 persons connected to offences are expected to be filed within the next 3 to 4 days. U.S. President Donald Trump said that a deal with Iran, including opening of the Strait of Hormuz, has been largely negotiated after consultation with Israel and other allies in the region. Announcing progress on his Truth Social platform, Trump said final aspects and details of the deal are being discussed and will be announced shortly. President Trump said he had spoken with leaders from Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan and Bahrain, along with Israel. Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baghaei earlier today said to the state television that the U.S. and Iranian positions had been converging in the last week, but warned that did not mean agreements would be reached on key issues. A major security scare has unfolded near the White House after multiple gunshots were heard close to the presidential complex in Washington, prompting an immediate lockdown response from law enforcement agencies. The U.S. Secret Service shot down a person, reportedly the suspect, near the scene, while a bystander was also struck down during the chaos. During the time of shooting, U.S. President Donald Trump was inside the White House. The IMD has forecast severe heat wave conditions today in parts of Delhi, Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha. The weather agency also predicted heavy rainfall today in parts of Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. And that is the end of this news bulletin.

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर। त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। और प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और जनमानस को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने के लिए प्रत्येक नगर में गीता भवन के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास कार्यों के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का भी विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कल सिंगरौली महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने सिंगरौली को प्रदेश का सबसे विकसित और आधुनिक शहर बनाने की घोषणा की।
1: हमने अपने बच्चों के प्रोत्साहन को देने के लिए उनके साथ भी समय बिताया। विकास के लगभग 550 करोड़ के अलग अलग कामों का लोकार्पण किया। 1,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की स्वीकृति सिंगरौली में हुई है। आने वाले समय में सिंगरौली सुव्यवस्थित शहर में सबसे अच्छा शहर बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
0: इससे पहले डॉक्टर यादव ने 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। बैढ़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पहले रक्षा उपकरणों का आयात करता था, लेकिन आने वाले कुछ समय में यह रक्षा उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक बनकर उभरेगा। उन्होंने कल महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सांवली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा।
2: सेल्फ रिलायंट इंडिया।

0: आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई, हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
1: केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। यह इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। अब तक लगभग 100,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। किसानों को अब तक उपार्जित गेहूं का 20,680 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। ट्विशा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ राज्य सरकार के चार्टर्ड विमान से भोपाल पहुंच गई। इससे पहले आरोपी समर्थ सिंह को कल अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशमी पर कल प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य शासन ने समस्त जिलों में गंगा दशमी पर्व पर आयोजित गतिविधियों एवं कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले मुख्य अतिथियों की सूची जारी की है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा में और अन्य मंत्री जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शिवपुर में भी कल गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में जिले भर में दीपदान, जल स्रोतों का पूजन, कलश यात्राओं के आयोजन के साथ रामेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी जिले के ग्राम कसीहवा में शॉर्ट सर्किट से हुए एक हादसे में 3 बच्चों की मृत्यु की घटना पर शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि मृत बच्चों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 6-6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला रेडक्रॉस सोसाइटी सीधी की ओर से परिजनों को 20,000 रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता राशि दे दी गई है। वहीं रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के सागौर ग्राम में कल 3 बालिकाओं की कुएं में डूबने से मौत हो गई। वे गांव के पास एक कुएं पर नहाने गई थीं। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। अब रुक करते हैं खेल की खबरों का। रांची में 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नितिका आकरे ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। नितिका ने 4.10 मीटर की शानदार छलांग लगाकर न केवल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया बल्कि एशियन गेम्स 2026 के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क भी हासिल कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने 9 से 12 जुलाई तक ऑर्डोस चीन में आयोजित होने वाली प्रथम एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नितिका आकरे को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं IPL में लखनऊ में खेले गए मुकाबले में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे और दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। गर्मी का अंदाजा इसी बात

लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले का नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा खजुराहो में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। गुना जिले में भी गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पर तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में भेल दशहरा मैदान पर कल मशहूर संगीतकार एआर रहमान का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया गया। रहमान को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। खंडवा से होकर गुजरने वाली जयपुर और हैदराबाद के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन को अब स्थायी साप्ताहिक ट्रेन के रूप में संचालित किया जाएगा। गुना के जिला पंचायत विश्राम गृह में 26 मई को युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्त्री रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर। तुषार शर्मा की मौत के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। और प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

फरीब फिल्म का ये गीत आपने सुना और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश लाजवंती फिल्म का गाना आशा भोसले और साथियों की आवाजें ही। संगीत एस डी बर्मन का।

सुने हमें रही प्यार के। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस गाने के साथ, बजरू सुल्तानपुरी की बोल आर डी बर्मन की तर्ज़।

शागिर्द फिल्म का ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ था, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, फिल्म का नाम प्यार का मौसम, मजरूह सुल्तानपुरी, आर डी बर्मन।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
4: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

0: मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
5: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल

0: ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पूर्वी मध्य प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा पंजाब राजस्थान तेलंगाना पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

आइए सुने चित्रलोक। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम नमन कर रहे हैं गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को। एक ऐसे गीतकार जिन्होंने फिल्म उद्योग में एक लंबी पारी खेली। युग बदलते रहे लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी गीतकारी की दुनिया के एक रोशन सितारे बने रहे।

दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

विविध भारती से आप चित्रलोक सुन रहे हैं। आज जाने माने संगीतकार राजेश रोशन का भी जन्मदिन है और हम उन्हें दे रहे हैं जन्मदिन की बधाइयां।

फिल्म संसार की जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम।
1: मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।

0: लिए फूल नहीं हीरो ही पहनते हैं हेलमेट।
1: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज हमने राजेश रोशन और मजरूह सुल्तानपुरी की कहानी आपको सुनवाई।
1: आप सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे K.L. सैफ।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजरू सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुत करता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: धाराएं तीन विचार स्वर और संगीत
1: तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा
0: बातें जो देती हैं हौसला शब्द जो देते हैं सुकून
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ
1: साथ मेरा ओ हम नवा
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी
1: तुम आ गए हो नूर आ गया
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर

0: कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है।
4: जाए उन्हें धूप में घर से बाहर ना निकलने दें और समय समय पर पानी पीने के लिए प्रेरित करें। दतिया जिले में युवा संगम रोजगार स्वरोजगार मेले का आयोजन कल किया जाएगा। युवाओं से दस्तावेजों के साथ इसमें शामिल होने की अपील की गई है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े की अध्यक्षता में जिले की कानून व्यवस्था के संबंध में 28 मई को एक बैठक का आयोजन भी किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा वृद्धजनों के सम्मान, मनोरंजन, बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल जिले में की गई है। रेड क्रॉस भवन में संचालित आनंद घर डे केयर सेंटर में वृद्धजनों के लिए सप्ताह के सत्रों भागों के समन्वय जाएंगी। पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा आपस में जांच और छापामार कार्रवाई बीते दिनों की गई। टीम के द्वारा संदिग्ध वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान कई वाहन चालकों द्वारा खनिज परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। वे बिना अनुमति और बिना वैध परिपत्र के खनिज का वैध परिवहन, उत्खनन और भंडारण कर रहे थे। अभियान के दौरान प्रशासन की टीम ने ग्राम इंदरगढ़ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1500 घन मीटर रेत जब्त की। बाद में इन अवैध रेत भंडारों को नष्ट करने की कार्रवाई भी की गई। दतिया स्थित जिला जेल में मुलाकात कक्ष में लीगल एड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। स्थापित हेल्प डेस्क में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक लीगल एड डिफेंस काउंसिल में नियुक्त अधिवक्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। हेल्प डेस्क में नियुक्त लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा मुलाकात कक्ष में बंदियों के परिजनों को मौके पर ही कानूनी सलाह और सहायता तथा केस की जानकारी और अपील संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दतिया जिले से अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग जाति के 532 छात्रों को छात्रवृत्ति राशि 91,59,000 रुपए का भुगतान किया गया है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला दतिया के द्वारा जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित दिव्यांगजनों के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आगामी 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से तैयार किए जाएं। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े द्वारा जनगणना के तहत चल रहे मकान सूचीकरण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सुपरवाइजरों को प्रशस्ति पत्र देकर बीते दिनों सम्मानित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि सटीक मकान सूचीकरण न केवल जनगणना के लिए बल्कि भविष्य में विकास योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने सभी सुपरवाइजरों और फील्ड कर्मचारियों से अनुरोध किया कि जनगणना का कार्य निष्ठा और ईमानदारी से करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भरोसेमंद रिकॉर्ड बने। जिला स्तरीय परियोजनाओं, न्यायालयीन मामलों में समन्वय और विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा करने के उद्देश्य से प्रधान न्यायाधीश विजय चंद्र की अध्यक्षता में जिला मॉनिटरिंग सेल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्र ने उन्होंने कहा कि न्यायालय बीच समन्वय से जुड़े कार्य समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूर्ण हो। श्री चंद्र ने बताया कि 21 अगस्त से 23 अगस्त तक 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पक्षकारों की सहमति से बैंकिंग, सिविल, मोटर दुर्घटना, उपभोक्ता विवाद, रेरा, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, किराया नियंत्रण आदि जैसे प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। दतिया जिले में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने बताया कि संपर्क इजाजत। नमस्कार।
3: बोलने में कि हम हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
2: कितने दूर है छतरपुर से ये गांव?
3: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पे पड़ता है, तो बसारी के आगे है पहरा।
2: ओके।
3: बहुत ही छोटा सा गांव है सर। बहुत
2: तो कितनी क्लास तक वहाँ पढ़े आप?
3: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओरे, बुंदेली फिल्म थी। उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गाँव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक, जीजाओरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जीजाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका, टाइटल सॉन्ग था उसका।
2: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
3: उसपे ऐसे कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी तो उसी तरह से कि कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे कहाँ ले आए।
2: उपटा लगत उंगरिया, क्या बात है,
3: कहाँ ले आए राजा पहाड़िया में,
2: मतलब बुंदेलखंड
3: लाइक कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए। ये गाना मतलब इंडेक्ट

0: रूप से वैसा है। ई
1: हाँ
0: पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ई पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, लंपा लगत चुनरिया मेरे कहाँ ले आए, कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे कहाँ ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बम्बई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो
1: हाँ
0: लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो
0: तो
1: मजा आ गया मुझे सुन
0: बहुत ही
1: के
0: मजा आ गया। वो तो बहुत
1: तो।
0: मजा आ गया। तो
1: हाँ
0: यही था फिर बुंदेली। फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
1: हाँ
0: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे एमपी के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद।
1: अरे
0: और
1: बम्बा
0: मैं नाइन्थ
1: रे,
0: क्लास में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक
0: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम ऊपर छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे, हमारे
1: हाँ
0: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे,
1: तो
0: लाइक
1: बुंदेली में था ये।
0: हाँ बुंदेली में नाटक था। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है, क्योंकि मैं एक तो मैं पहला नाटक था मेरा, तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने अभी आपसे बात भी किया, इस तरह का जो जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ।
1: वाह।
0: तो फिर ऐसे ही शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ। फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफ़ी
1: ओ
0: बड़े
1: वो तो
0: एक्टर
1: पन्ना
0: हैं,
1: के ही
0: जो
1: है।
0: पन्ना के ही हैं। तो
1: हाँ
0: वो NSD से पास होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे। हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो, अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5 स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उनने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चलनी है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहाँ पे 1 महीने रहना है।
1: हाँ
0: तो शिल्पग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है,
1: अरे
0: इन्हें कहीं
1: वाह,
0: देखा है। तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना, और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं वो, क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया, और इतना अच्छा काम निकल के
1: और
0: आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफ़ी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मैं मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूँ, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुंचना है।
1: डायरी में लिख गया।
0: हाँ, तो मैं लिख
1: अरे
0: लिया कि
1: क्या
0: अभी
1: बात
0: मुझे
1: है।
0: पहुंचना है NSD। तो फिर वहाँ
1: अभी
0: से
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी जी
1: यहाँ एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी
1: तो
0: जी
1: जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहाँ बजाया जाए।
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम, वो
1: गोविंदा
0: गाना
1: की
0: गाना
1: फिल्म।
0: सुनता, तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए
1: क्या बात
0: ओए।
1: है,
0: तो ये कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
1: बिल्कुल वो एक जहन में बसे
0: बहुत
1: होते हैं
0: ही
1: और ये उस दौर की याद लेके
0: जी
1: आते
0: जी
1: हैं।
0: जी हमने
1: बातचीत
0: बहुत देखा है
1: करेंगे।
0: फिल्म को,
1: वाह।
0: बहुत देखा है फिल्म को हम, मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
1: हाँ,
0: गुंडा,
1: क्या
0: जो
1: बात
0: भी
1: है,
0: सीडी पे जो भी मिलता था देखते, सर जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह। ये
0: हाँ
1: गाना सुनते
0: जी।
1: हैं।

0: देवेंद्र आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है जो तब तक NSD में हैं और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए और वो एक शिविर लगाते हैं और वहां से आपको एक राह दिखती है
1: जी, जी।
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा जिसका परिचय नहीं है उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या होता है?
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूँ तो अब मुझे तो कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहां मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं NSD की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहां पहुंचा। उसमें मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था। मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया। फिर मैं NSD के गेट पे पहुंचा और मैं NSD मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है। और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया है। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी, रिटायर्ड फौजी थे वो
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो कह रहे हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कह रही अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊँगा। मैंने बोला कि मैं आऊँगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था,
0: वो छोटा वाला
1: फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है,
0: बस
1: रिकॉर्ड कर दो, एक मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो या बैकस्टेज किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं।
0: अरे गजब,
1: तुम अनुशासित हो।
0: एक मिनट में
1: सब बता दिया, ये करके आना पड़ेगा तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया। फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
0: तो मैं कॉलेज में, इस शहर में था
1: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा। और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक किया, और भी नाटक जो भी वो कराते थे उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही, भाई अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, हम तो कुछ भी कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा।
0: अच्छा,
1: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा। अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो? आपको कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर ये नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
0: बिल्कुल
1: आप जानते होंगे, बहुत बड़े कवि हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल, विहान ग्रुप,
1: हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर है अलख नंदन सिन्हा जी, अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं MA के लिए मैंने अप्लाई किया था और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को। शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं, और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोच रहा हूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फ़ोन कर रहा हूं। अभी 5 बजे कोई कोई फ़ोन उठाएगा?
0: बिल्कुल।
1: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूँगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फ़ोन बंद हो जाए या आपका फ़ोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा
0: रोशनपुरा चौराहे,
1: हाँ, एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा हाँ। मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे ये पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने उनके पैर छुए, वो नहीं बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने कि बोले हमारे यहाँ तो बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया। और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं और 1 घंटा हो गया।
0: पहले हेमंत आया,
1: हेमंत दादा आए पहले, और अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदी ले, और तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले, और तुमने बोला तुम गाने आना गाते हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगीता सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहनी हुई है, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर ही रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया बैठे बैठे, पानी आया चाय आई, हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं। और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं, बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये उन्होंने बोला कि इसको लेके आ गए, कौन है मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर। मैं बहुत कॉन्फिडेंस था, मेरे को ये ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उन्होंने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं सर कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रियर सेल्फ पे साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेक्टरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी शामला हिल्स पे, उसमें मैं हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना, और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा, तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तब मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको?
0: जरूर।
1: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, ओ पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कईया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
0: क्या बात है।
1: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं। हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेलाना जा पाहो उनका आके तिनगाने,
0: वाह वाह,
1: आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
0: वाह वाह,
1: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए ढीले दोई बेला और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला। फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया लेवाई और कंधे पे बैठा के पूरो मेला दो घुमाई। कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने दद्दा मुखा मेला जाए।
0: कहते हैं देवेंद्र
1: उस समय ये बुंदेलखंड के कभी गानों में कभी जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे, छाप है तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी। और वहाँ से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
0: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
1: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोले ली और रोटी बना के और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था। खर्च कुछ था ही नहीं,
0: बस खाना हो गया,
1: खाना हो गया। और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल स्पेस साफ करना है, चटाइयां बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना। और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में। और मैं देखता था भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े और दादा मुझे, और मेरी भाषा बहुत खराब थी तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक मुझे वो करने को मिला। मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी। और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, यार मैं समझ नहीं आता मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे वो भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा, कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, SNA अवार्डी हैं वो और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहाँ पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही और वो गाना मुझे ही गाना था तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे, तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया। सर देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया और मैं इससे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था।

0: क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की और लिखने
1: क्या
0: भी शुरू
1: बात
0: किए,
1: है,
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना दिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का, 7-8 मिनट का, एक 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान
0: हाँ,
1: सुनेंगे।
0: पता चलेगा
1: तो
0: सर।
1: बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का,
1: ओमकारा का गाना है।
0: ओमकारा का गाना है
1: बहुत
0: कि बहुत ही
1: शानदार गाना
0: सुंदर
1: है,
0: गाना है, बहुत ही
1: बहुत
0: सुंदर
1: शानदार
0: गाना
1: गाना
0: है।
1: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र, आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: हाँ,
0: तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेली गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहाँ पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला चल
1: चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना मेरे ग्रुप में काम करना।
0: अच्छा,
1: तो एक ब्रिज मिल गया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है
0: डेस्टिनेशन। वो बोर्ड और
1: वो तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटी नहीं है।
0: हाँ।
1: वो तो मैं, मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था।
0: अच्छा।
1: पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो, तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ।
0: अरे
1: मैंने कहा यार, तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था। 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ।
0: ओके।
1: और तो उसके बाद मैं दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम किया।
0: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
1: हो गया
0: और वहीं वो,
1: और वो धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा।
0: मिले धुरंधर जी?
1: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक।
0: हाँ।
1: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, बोले यार ऐसे वो मनगढ़ंत कहानी सुना रहे। वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग जैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहाँ पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
0: जी।
1: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब
0: प्यार
1: मिलता, परिवार के सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है, और फिर वो रिटायर्ड हो गए, तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहाँ भी

0: बहुत ही अच्छे थे वो।
1: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
0: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग इसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे। बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मेरा डायलॉग खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी।
1: अच्छा,
0: क्योंकि
1: लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये बहुत
0: मैं बता रहा हूँ कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था, शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था, तो लोग हंसते थे, तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है।
1: हाँ,
0: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की, मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके। मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था,
1: शक को साफ बोल रहे हो,
0: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया, जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा को सही बोला था, शामिल बोला था। मेरा दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोलना था, इतने दिन से तुमसे यही तो बोलवाना चाह रहे थे हम।
1: ओके।
0: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया और मैंने बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया और डायरेक्ट कर रहे थे अनुरोध खुटवत सर, और मैंने मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे और लगातार बोलना है, और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज जो मैं नहीं करता था सबको उसको करना है, मैंने जम पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियाँ कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहाँ से अपना रुझान बदला, और मैंने डिज़ाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया सेकेंड ईयर से, आप स्पेशलाइजेशन करते हो, तो वो लिया, और फिर मैं उस तरफ आ गया, और फिर मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी के पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं, और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ, लोग मेरे एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
1: बिल्कुल
0: तुम्हारी एफर्टलेस का मैं दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
1: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है आपने?
0: अभी दिल्ली पहुंचा, उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
1: बंसी कॉल
0: जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया। हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लाजन लाइव थिएटर करते थे, और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था, और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने, और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफ़ी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन, जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे, तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
1: बिल्कुल
0: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं, और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं, और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज़्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं।
1: तो वहाँ से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में, और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डीरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया, और वो थिएटर ओलंपिक हुआ उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1000 लोग देखते थे, और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिज़ाइन किया था, और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक, कि वहाँ से एक रेल की पटरी निकलती है, और वहाँ पे एक गार्ड रहता है, और वहाँ पे एक फाटक है, और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफ़ी गाने ऐसे पॉपुलर हुए, और मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिया किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफ़ी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया।

0: पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया
1: और यहाँ से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ, मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे शुरू होता है कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है। पर ये बता था कि वहाँ हर हाल में पहुंचना है, जहाँ जाने का ख्वाब देखा है तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे। फिर मैंने एक नाटक बना लिया, कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे। वो शुरू ऐसे होता था, एक आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।
1: अच्छा।
0: हाँ, वो क्योंकि रेडियो का बंदा था तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है, और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस में उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए, और वो फिर कोविड लग गया। हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
1: और उसका एक गाना सुनाओ यार।
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको।
1: बिल्कुल
0: सुनाता हूँ मैं आपको। उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, मैं एक इसकी छोटी सी अभी बता देता हूँ कि एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है, और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये, एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के रख दी, बदल दी। उस पर एक कहानी है, हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है। एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद है, तो वो क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है, क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गाँव से निकल के कहाँ कहाँ पहुँचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है,
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी।
1: वाह।
0: सुबह उठा तो कान के नीचे, सुबह उठा तो कान के नीचे, गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, क्या बढ़िया गाना।
0: जी जी जी।
1: कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: सर जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और 2 परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने भी बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, NMACC में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले, और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी,
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब सीरीज?
0: जी जी, स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिग्गी।

0: जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मैं लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिगी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा। अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो। अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है बहुत। मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा। मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोविंद सर काम, आशीष विद्यार्थी जी उसमें काम कर रहे हैं, तो काफी लोग उसमें थे। तो उसमें बहुत ही अच्छा था, और उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था गाना, उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था। अच्छा, वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है, काफी ऐसे फन सॉन्ग है। आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या चाय चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह,
0: पी के कहीं तो फूंक में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए,
1: क्या सुंदर।
0: उसके लिरिक्स ऐसे हैं, मतलब
1: वाह वाह वाह। देवेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए।
0: जी जी जी।
1: तो फिर कभी मिलेंगे और आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती, मैंने सुनता था, आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार।
1: बिल्कुल।
0: और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत, इतना नहीं एक रेडियो में।
1: बिल्कुल।
0: मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको, और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं कहाँ पे कहूँ, जैसे गाने मैंने सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ, कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है। और दूसरा, मैं शहर भी रहा हूँ, तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है। और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज आपके साथ बैठा हुआ था।
1: सफर है।
0: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके, और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंद दादा ने दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: पिटारा में आज
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: मंदाकिनी जी, सन 2026 कुछ ऐसे शुरू हुआ है विविध भारती में कि उसकी बात ही कुछ और है। हर महीने एक आयोजन होता है जिसका नाम है सृजन भारती, और ये जो सृजनात्मकता की ये लहर चली है, इसमें रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में एक आयोजन हुआ था जहां दो नाट्य प्रस्तुतियां हम आमंत्रित श्रोताओं के सामने लेकर आए थे।
1: बिल्कुल।
0: और इसमें से पहली प्रस्तुति कौन सी थी?
1: सास बहू और हेलो फरमाइश।
0: जी हाँ, टाइटल से, शीर्षक से ही आपके समझ में आ गया होगा कि कितना मजेदार ये रहा होगा।
1: बिल्कुल, शीर्षक था सास बहू और हेलो फरमाइश। लेखक यूनुस खान, प्रतिभागी कलाकार ममता सिंह, मंदाकिनी जोशी, अनुश्री पाठक, यूनुस खान और जयंत पात्रीकर।
0: आइए सुनते।
2: हेलो
3: हेलो फरमाइश।

0: आई सुनते हैं अपनी पसंद का ये गीत।
1: मैं
2: समझ में नहीं आता इन लोगों का कॉल कैसे लग जाता है। मैं तो 2 साल से कोशिश कर रही हूँ पर मुआ ये फोन लगता ही नहीं। जाने विविध भारती वालों ने क्या सेटिंग कर रखी है। देखना एक दिन मेरा फोन जरूर लगेगा। जरूर मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी। अरे बहू
3: हाँ।
2: मेरी डायरी कहाँ रख दी तूने। कितनी बार कहा है मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। बहू
3: हाँ।
2: डायरी ला कर दे मेरी।
3: माँ जी मैंने नहीं ली ना आपकी डायरी, हाथ भी नहीं लगाया मैंने। वैसे आपको बता दूं सासू माँ, जिस काम के लिए आप डायरी खोज रही हैं ना वो होगा नहीं। हाँ
2: अरे काली जबान, जब देखो उल्टा ही बोलती है।
3: हुँ?
2: अच्छा बता कौन सा काम है।
3: अरे वही हेलो फरमाइश में फोन लगाने का काम
2: है।
3: अब हम तो क्या पूरा मोहल्ला जानता है कि सुनीता देवी किसके पीछे पड़ी है।
2: आग लगे तेरी जबान को। इस उम्र में मैं किसके पीछे पड़ूंगी। किसी ऐसे वैसे के पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये हेलो फरमाइश है। विविध भारती का हेलो फरमाइश। बड़ी मुश्किल से फोन लगता है इसमें।
3: अरे मुश्किल से फोन लगता है मत बोलिए सासू माँ, ये बोलिए कि फोन लगता ही नहीं है। 3 साल से तो मैं आपको कोशिश करते हुए देख रही हूँ, आज तक तो लगा नहीं और न ही लगेगा, देख लेना। हाँ
2: बकवास बंद कर और मेरा नाश्ता ला। कितनी बार कहा है भारत की गूंज से पहले नाश्ता, विविध भारती की गीत माला से पहले लंच और हवा महल से पहले मेरा डिनर दे दिया कर, पर हमेशा देर कर देती है तू।
3: हाँ सासु माँ मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है आपके पुकारने से पहले।
2: दफा हो जा,
3: नौटंकी जल जाती है।
2: दफा हो जा और जल्दी से नाश्ता ले आ। मैं जरा हेलो फरमाइश में कॉल लगा के देखती हूँ। 02225467।
3: आप जिस नंबर से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें।
4: द नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी, प्लीज कॉल आफ्टर सम टाइम।
3: कहा था ना हमने सासू माँ ये फोन लगेगा नहीं। वैसे अगर फोन लग भी गया तो आप कौन से गाने की फरमाइश करेंगी ये तो बताओ। अच्छा रुको रुको, सुनो आइडिया सासू माँ, एक आइडिया। एक काम करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, मैं बनती हूँ अनाउंसर और आप बनना कॉलर।
2: खामोश, तुम कैसे बनोगी अनाउंसर।
3: क्यों
2: और मैं कैसे बनूंगी कॉलर।
3: क्यों क्यों क्यों क्यों
2: क्यों क्यों क्यों क्यों बड़ा कौन
3: आप,
2: सास कौन
3: आप,
2: तो सुनीता कौन
3: आप,
2: तो अनाउंसर बनेगा कौन।
3: ना ना ना ना ना ना ना, एक मिनट। हाँ एक मिनट, फिर से करते हैं। अच्छा बताइए सुनीता देवी कौन।
2: मैं।
3: और विविध भारती की फैन कौन।
2: मैं।
3: इतने दिलों से कॉल कौन लगा रहा है।
2: मैं।
3: तो कॉलर बनेगा कौन।
2: मैं। करम जली दास पीटी, ऐसा नहीं होगा। देख तू बहू है, बहू की तरह रह, समझी।
4: अरे बहू क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने।
3: पिताजी देखिए ना, अम्मा फिर पगला गई है, वो कहती है उन्हें विविध भारती पर हेलो फरमाइश करना है।
2: न्यूज चैनल की तरह बात को तोड़ मरोड़ कर पेश मत किया कर। अम्मा को विविध भारती पर हेलो फरमाइश नहीं करना है, हेलो फरमाइश में फोन करना है, समझी।
4: तुम लोगों से तो बस बहस करवा लो।
3: पिताजी वही तो, बहस क्यों करना। चलिए ना पिताजी प्रैक्टिस करते हैं ना।
4: अरे वकालत की प्रैक्टिस तो हम कब की छोड़ चुके बहू।
3: अरे पिताजी वकालत की प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, हेलो फरमाइश की प्रैक्टिस करनी है।

0: मान जाइए ना पिताजी, मान जाइए ना। तो चलिए आप दोनों बनिए कॉलर और हम बनते हैं अनाउंसर, ठीक है? हम बनेंगे टिम्मी मिश्रा। अच्छा शुरू करते हैं। फोन की घंटी बजी नहीं है अभी तक।
1: ट्रेन ट्रेन
2: ट्रेन
1: ट्रेन
2: ट्रेन
1: ट्रेन ट्रेन।
0: हेलो हेलो, हाँ हेलो फरमाइश, नमस्ते, हम हैं टिम्मी मिश्रा। हम ना आज विविध भारती पर हेलो फरमाइश कर रहे हैं। बताइए आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं, आपको कौन सा गाना सुनना है, आपके शहर का मौसम कैसा है, आपके घर में कौन कौन है, आपको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद है, आप अपने शहर में किन दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं?
3: चुप, एकदम चुप, खामोश, एक भी शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा।
0: पिताजी वो हेलो फरमाइश
3: ना पति को बोलने देती है ना ससुर को, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश।
4: इसीलिए तो हम कह रहे थे कि हम बनेंगे अनाउंसर। इस घर में हमसे ज्यादा विविध भारती कौन सुनता है भला?
3: तुम बीच में कहां से टपकी? अरे जिंदगी भर तुमने बस फरमाइश की है और हमने पूरी की है, तो आज भी फरमाइश पूरी करने का काम हम करेंगे। ट्रेन ट्रेन
0: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन।
3: स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट। मौसम कैसा है ये नहीं बता सकता क्योंकि कमेंट्री बॉक्स से बाहर का मौसम नहीं दिख रहा, स्टूडियो के बाहर का नजारा यहां से दिखता नहीं है। हाँ तो स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट। अगले कॉल के लिए मैदान एकदम साफ। एक इंजीनियर फर्स्ट स्लिप में, एडिटर सेकंड स्लिप में और प्रोड्यूसर गली में खड़ा है और कुछ ही दर्शक मौजूद हैं जिनमें उत्साह की लहर नजर आ रही है। कॉलर नई बॉल के साथ तैयार। इस बीच रिंगटोन बजती है।
4: सुनो जी,
3: हेलो,
4: सुनो जी, चुप रहो, बकवास बंद करो। ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं श्रोताओं से बात। अरे इसे क्रिकेट की कमेंट्री बना दिया है तुमने, सारा दिन बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, सारा जीवन क्रिकेट क्रिकेट। मैं तो तंग आ चुकी हूँ क्रिकेट के इस पागलपन से। इस घर में दो पागल हैं, एक ये है क्रिकेट प्रेमी,
3: एक शानदार बॉल और ये बल्लेबाज क्लीन बॉल,
4: और दूसरी है ये सिनेमा प्रेमी।
0: सौ सौ साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागे मौ से प्यारी सासू जी, मेरी सासू माँ।
3: शट अप
4: शट अप। बहुत हो गया बहुत हो गया, इतने दिनों से कॉल लगा रही हूँ, हेलो फरमाइश में तो कॉल लगता ही नहीं है। मुझे ही पता लगाना होगा कि आखिर चक्कर क्या है, इसीलिए तो मुंबई आ गई हूँ। चुपके से चलती हूँ विविध भारती के अंदर, हेलो फरमाइश के स्टूडियो में, और पता लगाती हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। लोग सोचेंगे कि आधी रात को ये बुढ़िया कहाँ चली आ रही है। अरे वाह अरे वाह, यहाँ तो फोन की रिंग लगातार बजे जा रही है। वाह वाह, उठाऊं क्या है? उठा लेती हूँ, चलो उठाती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
5: देवा देवा, मैं किती वेळ फोन करत आहे, अरे तुमचा फोन कधीच वाजत नाही, काय झालं? तुम्ही काय केलं तुमच्या मशीनला? तुम्हाला काय लोकांना त्रास द्यायलाच आवडतं का?
4: नमस्ते नमस्ते, हेलो फरमाइश। अरे सुनिए, हेलो फरमाइश हिंदी कार्यक्रम है, समझिए आप, आपको हिंदी में बात करनी चाहिए। आप कौन बोल रही हैं और क्या कहना चाहती हैं आप?
5: अरे देवा, लो हिंदी में बोल देती है मैं। मी मृणमयी, यानी कि मैं मृणमयी बोल रही हूँ जलगांव से।
4: जलगांव से, पानी गांव से।
5: पहले पहले तो ये बोलो, तुमचा फोन कभी स्वागत नहीं, यानी कि तुम्हारा फोन लगता काय को नहीं?
4: क्या
5: मैं कितनी बार फोन करता है?
4: अरे
5: अरे, यानी कि मैं कितनी देर से फोन कर रही हूँ?
4: क्या
5: अरे तुझा मशीन लगाए के लो तू?
4: अरे
5: अरे, यानी कि आपने अपने मशीन को क्या कर रखा है?
4: ये अनुवाद भी कर रही है।
5: अरे तुम्हाला लोकांना त्रास द्यायलाच आवडतं का? यानी कि लोगों को चिढ़ाने में मजा आता है कि तुमको?
4: अरे ये तो अनुवादक है। हे भगवान दो दो भाषाएं मत बोलिए ना प्लीज। देखिए देखिए देश भर के श्रोता कॉल करते हैं ना, इसीलिए आपका कॉल नहीं लगता है ना।
5: अरे मेरा ही कॉल क्यों नहीं लगता, यानी कि बाकी सबका क्यों लगता है? क्यों क्यों क्यों?
4: वो क्या है ना,
5: बहाने बनाऊंगा का।
4: क्या है ना,
5: यानी कि बहाने मत बनाओ।
4: हे भगवान आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
5: अरे आधी सांगितलं होत मी,
4: फिर मराठी?
5: यानी कि मैंने तो पहले ही बताया था आपको।
4: अरे अनुवाद भी कर
5: दिया। मी मृणमयी, यानी कि मेरा नाम है मृणमयी।
4: अरे
5: मृणमयी मई, मैं जलगांव से बोलता है, यानी कि मैं जलगांव से बोल रही हूँ, समझा?
4: समझा समझा समझा। मृणमयी, मृणमयी कितना प्यारा नाम है ना।
5: अरे बाबा मृणमयी नहीं, मृणमयी।
4: बापरे,
5: आया क्या समझ में? यानी कि मृणमयी।
4: अरे सुनिए सुनिए मृणमयी, मृणमयी ही सही होता है, मृणमयी नहीं।
5: आता तुम ही मला शिकवाल, यानी कि तुम सिखाओगी मुझे मेरा नाम क्या है?
4: अरे अरे नहीं भाई, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जी।
5: तो फिर कैसी बात है, यानी कि क्या बोलती है आप?
4: अच्छा अच्छा ये बताइए कि आपका दिन कैसा जा रहा है आज?
5: बहुत बकवास है, एकदम एकदम बकवास जा रहा है। एक तो मैं 2 साल से फोन लगा रही हूँ, फोन है कि लगता ही नहीं है। यानी कि आप लगा है तो तुम बकवास किए जा रही हो?
4: बापरे,
5: कोई अच्छी बात करना नहीं आता क्या तुमको?
4: अरे
5: क्या नाम है तुम्हारा?
4: जी मेरा मेरा नाम है समता सिंह।
5: ओ अच्छा, तो तुम हो समता सिंह?
4: जी मैं हूँ समता सिंह।
5: जी जी क्या लगा रखा है? अरे जब भी तुम फोन इन प्रोग्राम करती हो मेरा कॉल क्यों नहीं लगता? यानी कि तुम ही ने कुछ कर रखा है मशीन में।
4: क्या?
5: अरे एक दिन मैं वहाँ आ जाऊंगी, यानी कि सर फोड़ दूंगी तुम्हारा वहाँ आके।
4: अरे बापरे, अरे रे सुनिए तो, ऐसी मार पीट की बात नहीं करते हैं। बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
5: अरे अरे गाना तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ यानी कि मेरा फोन लगता क्यों नहीं है?
4: मुझे क्या पता, मेरा मतलब मुझे नहीं मालूम।
5: अरे तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? चलो चलो अपने बॉस का नंबर दो।
4: बॉस का नंबर? बॉस का नंबर मतलब क्या मतलब?
5: बॉस का नंबर मतलब तुम्हारे बॉस का नंबर, यानी कि तुम्हारे साहब का नंबर।
4: ओ अरे अरे वो सब छोड़िए ना, असल में मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
5: आपने सुना नहीं, पहले अपने बॉस का नंबर दो। बॉस का नंबर?
4: बाप रे ये तो बड़ी खतरनाक कॉलर है, फोन काट देती हूँ। बाप रे कितने खतरनाक लोग कॉल करते हैं यहाँ, मैं तो सचमुच में फंस गई, बड़ा ही मुश्किल काम है ये सचमुच। हे भगवान, हे भगवान क्या करूं, फिर फोन बजने लगा। एक काम करती हूँ, फिर उठा लेती हूँ फोन। हेलो हेलो हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
2: आप बोलती हो तो मिठास घुलती है, आप बोलती हो तो सूरज चमकता है, आप बोलती हो तो हम सुनते हैं, आप बोलती हो तो बोलती ही रहती हो। आवाज की दुनिया के दोस्त समता सिंह को इंदौर से सलीम आलिन वन का सलाम। अब बस एक कर दीजिए काम, हमको दे दीजिए इनाम, गाना सुनवा दीजिए जनाम।
4: जनाम जनाम, ये जनाम क्या होता है?
2: जी वो तो बस तुक मिलाने के लिए जनाम कर दिया। जी जनाब हैगा असल में। हाँ।
4: और ये सलीम ऑल इन वन का क्या मतलब है?
2: जी, मैं हूँ ना, मैं हूँ ऑल इन वन, यानी मैं ही टेलर, मैं ही प्लम्बर, मैं ही मैकेनिक और मैं ही ड्राइवर।
4: अच्छा,
2: घर वालों जो भी करवाना हो काम, गाना सुनवा दो जनाब।
4: फिर जनाब।

0: अध्यय जी, अरे कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: हाजी सुनना तो बाद में चाहते हैं, पहले तो सुनवाना चाहते हैं। हाँ बोलो। हाँ
0: हाँ
1: सुनाओ।
0: हाँ
1: अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के, कर दिया खून देखो मेरे एतबार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया। अच्छा लगा?
0: बहुत अच्छा लगा। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, पूरा गाना तो आपने सुनवा दिया, अब हम क्या सुनवाएं आपको?
1: हाजी हाजी ऐसा कीजिए, मुझे आप कुछ मत सुनवाइए, हमें एक और गाना सुनवा देते हैं आपको।
0: हाँ
1: तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है,
0: नाता
1: ये
0: है।
1: नाता है।
0: अरे मिस्टर ऑल इन वन, अरे मिस्टर ऑल इन वन,
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
0: सुनिए तो सुनिए।
1: कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। अजी वाह वाह तो कीजिए, मिटाने।

0: Κάτι εσκαφούν. Τζισί με πιάρι κέρι τα τα. Γάνα σουν να τσάχτε, κι σουν μα να τσάχτε. Γε τα κλειέρ νεί εσκα. Γε πατά νεί καν σε άγγα, γε γάικ. Γε βιβίτ φάρτι βάλω κα κάμ το σαχμούς πόχτ μουσκίλ χεάρ. मुझे तो जरा सी देर में समझ में आ गया कि कैसे कैसे संभालना पड़ता है।
1: ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग
0: अरे फिर बजने लगी घंटे। अब क्या करूं? फिर लेती हूँ, फिर लेती हूँ, एक कॉल फिर लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश। हेलो जी, मैं समता सिंह बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं जी?
2: बोल नहीं रहे हैं, है? बोल रही हूँ।
0: अरे बाप रे। जी हाँ जी हाँ, हेलो फरमाइश, बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
2: आप हेलो फरमाइश से बोल रही हैं क्या?
0: हाँ
2: हेलो फरमाइश। गाना तो हम बाद में सुनेंगे, पहले तो हमें आपसे कुछ बात करनी है।
0: बात? हाँ हाँ कीजिए कीजिए, जरूर कीजिए।
2: मैं पूना से मनीषा बोल रही हूँ। मुझे अपनी सास की शिकायत करनी है आपके यहाँ।
0: है? सास की शिकायत?
2: हाँ,
0: पर ये कोई सास शिकायत केंद्र नहीं है, ये तो हेलो फरमाइश है।
2: तो क्या हुआ? आप लोग हमेशा कहते हैं ना, कही अपने दिल की बात
0: है,
2: तो आप सुनिए, यही है मेरे दिल की बात। मेरी सास ने मेरे दिल की वाट लगा रखी है, खड़ूस कहीं की।
0: अरे अरे अरे अरे, ऐसा नहीं बोलते। हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो, आपकी सास आपका भला चाहती हो।
2: गलत फहमी? अच्छा बताओ, किसकी सास है, आपकी या मेरी?
0: आपकी।
2: तो सच किसे पता होगा?
0: आपको।
2: तब कौन बोलेगा?
0: आप।
2: और सुनेगा कौन?
0: आप। वो मेरा मतलब मैं सुनूंगी।
2: सिर्फ सुनना नहीं है, हर बात पर हाँ हाँ भी करना है आपको।
0: हाँ से आ गई है कॉलर। हाँ
2: देखो, अब मुकर नहीं सकती आप।
0: हाँ
2: मेरी सास खड़ूस है, बोलो हाँ।
0: अरे हम हाँ कैसे कह सकते हैं, हमें क्या पता?
2: अभी अभी आपने कबूल किया कि हमें सब पता है, तो बोलो हाँ।
0: हाँ
2: मेरी सास खड़ूस है।
0: हाँ,
2: वो मुझे सताती हाँ, है।
0: अब मैं ये कैसे कह दूँ?
2: चुप चुप, बोलो हाँ, वरना।
0: हाँ भाई हाँ।
2: उसकी कितनी बुराई की जाए वो कम है, बोलो हाँ।
0: आप गाने की फरमाइश कीजिए ना। हमसे हाँ हाँ क्यों बुलवा रही हैं, कहाँ से आ गई आप?
2: जितना कह रही हूँ करती जाओ, समझी? बोलो हाँ।

0: मैंने किए, अब मेरी सास करेगी, बोलो हाँ।
1: अरे ये मैं कैसे कह दूँ?
0: देखो मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, आपने एक्सेप्ट किया है कि आपको हाँ बोलनी है।
1: हाँ।
0: तो अब सारे काम सास से करवाने चाहिए।
1: हाँ हाँ।
0: और उनके हर काम में मीन मेख निकालनी चाहिए कि नहीं?
1: अरे पर ये तो हेलो फरमाइश है बाबा।
0: बकवास मत करो, सीधे बोलो, समझी तुम?
1: अरे हाँ,
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हर वक्त सास को कोसना भी चाहिए।
1: हाँ,
0: बोलो
1: पर,
0: हाँ।
1: नहीं पर हाँ,
0: सास से हमेशा डांट कर बात करनी चाहिए।
1: अरे बाप रे, मैं कहाँ फंस गई, कहाँ फंस गया रे बाबा। हाँ,
0: और उन्हें घर से निकाल देना चाहिए ना।
1: अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
0: हेलो
1: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम, ना से रोग हरे से पीरा, जपत निरंतर हनुमान वीरा, ना से रोग हरे से पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन नाम जो लावे। फोन काट देती हूँ, फोन काटने देती हूँ, बड़ी खतरनाक कॉलर थी, कहाँ से आगे चिल्लाती हुई है, मर्ज करम जली नास पीटी। मर गए, ये मैं कहाँ फंस गई थी। ओफो, मैंने तो सोचा था कि हेलो फरमाइश बड़ा ही मजेदार प्रोग्राम है, पर यहाँ तो अरे बाप रे, ये कॉल लूँ कि नहीं लूँ। लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
0: सासू जी, 8 बज गए हैं, उठ जाइए ना।
1: मैं समता सिंह बोल रही हूँ।
0: समता सिंह, अरे तबीयत तो ठीक है आपकी सासू माँ?
1: आप कौन बोल रही हैं?
0: हे भगवान, क्या हुआ है इन्हें, बताइए कौन सा गाना, अरे क्या कह रही है ये?
1: बताइए, मैं समता सिंह बोल रही हूँ, आप बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है।
0: हे भगवान, लगता है पानी डालकर जगाना होगा सासू माँ को। ये लो छपा।
1: अरे ये क्या क्या डाला, करप चली नाथ पीटी, ये क्या क्या मेरे ऊपर पानी क्यों डाला तूने?
0: अरे तो क्या करती सासू माँ? हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रही हैं? समता सिंह है, ये क्या था सब?
1: अरे लगता है मैं कोई सपना देख रही थी।
0: हेलो फरमाइश का सपना?
1: पता नहीं मेरा ये सपना कब सच होगा।
2: सौ सौ साल पगलाओ
0: हमारी सासू जी।
2: हेलो फरमाइश में फोन लगाओ
0: सासू जी।
2: सौ सौ साल पगलाओ
0: हमारी सासू जी।
2: हेलो फरमाइश में फोन लगाओ
0: सासू जी।
1: हेलो फरमाइश, मैं समता सिंह।
3: हेलो
4: फरमाइश।
5: था प्रहसन सास बहू और हेलो फरमाइश, जिसे यूनुस खान ने लिखा था और उसमें हम और आप शामिल थे। उसके साथ मनुश्री पाठक जी थी, ममता सिंह जी भी थी और यूनुस खान खुद भी थे इसमें। और इस दिन एक और प्रस्तुति हुई थी। हम जानते हैं कि नाट्य प्रस्तुतियां केवल नाटक से नहीं होती, कई बार किसी कोई लेख हो, कोई कविता हो, इससे प्रेरणा लेकर भी नाटक लिखे जाते हैं।
6: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी दिन एक और नाट्य प्रस्तुति हुई थी जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था।
5: जी हाँ।
6: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने,
5: और इसका शीर्षक था ये उन दिनों की बात है। तो मंदाग्नि जी, ये जो शीर्षक है ये उन दिनों की बात है। असल में उन दिनों की बात है जब हम केवल और केवल सिनेमा देखा करते थे।
6: बिल्कुल
5: हाँ। और सिनेमा देखने के लिए किस तरह से प्लानिंग होती थी, कैसे टिकट निकाला जाता था, और फिर सिनेमा देखने के बाद में कैसे आकर के उसकी बड़ी वर्णनात्मक शैली में हम उसकी कहानी सुनाया करते थे।
6: बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ जयंत जी कि ये उन दिनों की बात है जब तांगे में बैठकर कोई व्यक्ति जोर जोर से अनाउंसमेंट किया करता था, आइए फिल्म देखने आइए, इस तरह की उद्घोषणाएं होती थी और हम उसको सुना करते थे और उससे प्रेरित होकर फिल्में देखने जाया भी करते थे।
5: चलिए इसका मजा लेते हैं।

जनता की विशेष फरमाइश पर आपके शहर में दोबारा आइए आइए ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में एक बार फिर से जुबेल थीप देवानंद वहीदा रहमान शानदार संगीत से भरपूर जुबेल थीप पहली बार देखी अशोक कुमार को गद्दार के रोल में। आखिरी तक आपको पता नहीं चलेगा कि पिक्चर के गद्दार है अशोक कुमार, तो देखना नहीं भूलिए जुबेल थीप आपकी विशेष फरमाइश पे ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में जुबेल थीप। ये उन दिनों की बात है जब कोई शहर या कस्बा कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा इससे लगाया जाता था कि वहां कितने सिनेमा हॉल हैं। जिनके पास 8-10 होते वो मेट्रो वाली ठसन मारते, एक से एक सिनेमा हॉल का ऐसा खाका खींचते थे जैसे ताजमहल के प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड भी ना कर पाते हों। गप गोष्ठियों के वो शान होते थे और अमूमन हमेशा ही महफिल लूट ले जाते थे। जिनके पास इतनी ना हो उन्हें बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता, वो जब तब कहते कि भाई हमारे यहाँ तो बस एक ही टॉकीज है, और उनके भीगे हुए स्वरों से ऐसा प्रतीत होता कि मानो वो मूलतः उन्हीं का कसूर हो। और कुछ बे औलाद किस्म के भी होते जिनके नसीब में एक भी सिनेमा हॉल नहीं बदा होता। लोग दिलासा देते कि फिक्र ना करो भाई, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। अलबत्ता इसके लिए किसी ने कोई झाड़ फूंक करवाई हो ऐसी कोई इत्तला मेरे पास अभी तक तो नहीं है। अपने यहाँ क्या था कि अपने यहाँ तो दो थी, अपने यहाँ दो टॉकीज थी और एक बंद पड़ी थी। कोई पूछता कि तुम्हारे यहाँ कितनी टॉकीज हैं तो अपन कहते तीन हैं, एक बंद पड़ी है लेकिन जल्दी शुरू हो जाएगी। दोनों सिनेमा हॉल एक दूसरे के अगल बगल में थे और उनमें जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती थी। ऐसी कड़ी और सीधी टक्कर कभी कोई भी ठंडा पीने वाली कंपनी हो उनके बीच में नहीं रही होगी। तो कई बार दुश्मन खेमों को झांसा देने के लिए आगामी फिल्म वाले बक्से में पोस्टर किसी और फिल्म का लगाया जाता और खटाक से घोषित दिन से एक रोज पहले ही कोई और फिल्म चला दी जाती। इस छापामार कार्रवाई से शत्रु भौचक रह जाता और नगर में कई दिनों तक इसकी चर्चा बनी रहती। और कई बार तो फिल्म को जबरन हिट कराने के लिए कृपया फिल्म के गानों और डायलॉग पर पैसे ना फेंकें ऐसी उद्घोषणाएं भी चलाई जाती, जिससे यह साबित होता है कि जुमला संस्कृति कोई आज की विधा नहीं है और इसकी जड़ें अपने महान देश में आदिकाल से मौजूद रही हैं। तो दोनों टॉकीज के सामने की ओर मुंह करके खड़े हो जाए तो बाई ओर जो थी वो मुकुट टॉकीज थी और दाई ओर विष्णु टॉकीज थी। नाम से जाहिर होता कि मतलब लोग धार्मिक होते थे, धार्मिक भावना से अपने काम करते थे, तो यही नाम भी वो उस तरह से रख लिया जाता था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि उस समय फिल्म देखना भी अपने आप में धर्म होता था, बड़ी शिद्दत से देखा करते थे फिल्म। इसीलिए फिल्म शुरू होने से पहले आरती बजती थी, मुकुट टॉकीज में बजती थी वो ओ

पूरे करें। और विष्णु में बसती थी अंबे, तू है जगदंबे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मतलब क्या माहौल होता था फिल्मों का, आप कुछ सोचिए। अच्छा, सामान्यतः मुकुट टॉकीज में ओल्ड क्लासिकल टाइप की फिल्म रखती थी और विष्णु में नई। टॉकीजों की भी होती ना कैटेगरी, भाई यहाँ ऐसी देखेंगे वहां वैसी देखेंगे, तो लोगों की मानसिकता वैसी बन जाती है। तो सकल वार्षिक घरेलू आय, परिवार के वयस्क अवयस्क सदस्यों की संख्या और तत्कालीन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तब घरों में सिनेमा देखने का अलग से बजट होता था। हम लोगों को आमतौर पर महीने में एक बार फिल्म देखने की अनुमति होती थी, एक बार देख लिया करते थे, जिनमें से किसी भी प्रकार का संशोधन सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा संभव नहीं था। मेहमान के रूप में जब कभी जीजा फूफा चाचा ताऊ वगैरह आ जाते थे ना, तब बच्चे बड़े खुश होते थे कि अतिरिक्त फिल्म देखने का सुयोग बनेगा और ये राशि जो है अमूमन उन्हीं की जेब से खर्च करवाई जाती थी। अच्छा, जेब खर्च के चोचले तब नहीं होते थे, लौट कर आए हुए खुले पैसों में से कभी मतलब 5-10 पैसे मिल जाए तो उन्हें जतन से संभाल कर रख लिया जाता था। तब थर्ड क्लास की टिकट जो थी वो 60 पैसे में मिल जाती थी। बात वालों ने शायद मेरे ख्याल से 1 रुपए 60 पैसे इस तरह का भी देखा होगा, तो 60 पैसे में मिल जाती थी। 50 या 55 पैसे इकट्ठे होते न होते सब्र का बांध टूट जाता। सिनेमा हॉल पहुंचकर किसी दयालु मित्र की तलाश की जाती, जो खुद भी दीगर मौकों पर जरूरतमंद हो सकता था या जिस पर अपना कोई पुराना एहसान होता था, है ना। उसे कहा जाता कि भाई यार 10 सीगम पड़ रही है, मिला दे भाई, मिला दे यार, सुन तो समझना, 10 सीगम पड़ रही, मिला दे यार। और वो क्या करता, वो जो है मान जाता था और इस तरह से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के प्रचार का वाहक बन जाता था। हम लोग आमतौर पर सबसे आगे वाली सीट हथियाते थे और इस बात पर हैरानी जाहिर करते थे कि यार लोग ज्यादा पैसे देकर पीछे क्यों बैठते हैं। तो बड़ा अजीब सा मामला था। तो आरती के तुरंत बाद 16 कुदरती जड़ी बूटियों से युक्त वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो जाता। फिर फिल्म डिवीजन की कोई फिल्म चलती जिसे न्यूज रील कहा जाता था। कई लोग मजा लेते थे, कई लोग बोर होते थे, लेकिन अपन को तो सिनेमा हॉल में ज्यादा से ज्यादा देर रहना होता था ना, तो हम तो भाई मजा ही लेते, समझ आए या ना आए कोई बात नहीं है। तो न्यूज रील की लंबाई हॉल में भरने वाले दर्शकों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती थी, और जब हॉल भरने पर भी फिल्म शुरू ना हो तो कोई ना कोई व्याकुल दर्शक ऑपरेटर के चरणों में कोई मोटी सी वजनदार गाली सादर अर्पित कर देता, जिसका अनुमोदन शेष दर्शक सीटियां बजाकर या रोष ध्वनि के साथ करते थे। फिल्म शुरू होने पर पहला दृश्य जब आता था तब सब सांस रोककर उसे देखते थे। यह होता था सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट जिसमें फिल्म की लंबाई दर्ज होती थी। अगर 16-17 रील की फिल्म होती तो वो छोटी मानी जाती थी और आमतौर पर दर्शकों की आ निकल जाती। 21-22 रील की फिल्म होने पर उसका स्वागत सीटियों के साथ किया जाता। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सीटी बजाने की कला का आविष्कार हिंदी सिनेमा के मद्देनजर ही किया गया होगा। इसके उद्भव और विकास की प्रक्रिया पर कोई ठोस अध्ययन हो तो इस तथ्य की पुष्टि मतलब की जा सकती है। तो फिल्म शुरू होने के बाद सबके सब किसी सम्मोहन से बंधे एक अलग दुनिया में प्रवेश कर जाते। ये वो चिरपरिचित दुनिया होती जिसे हम केवल अपने सपनों में देख पाते थे। यहां हवा में उड़ते बादल होते, बादलों को चीर कर सफेद अश्व आते, अश्वों के बाजुओं में पंख लगे होते और उस पर बैठे नायक का चेहरा सबको अपना लगता। सिर्फ 60 पैसों में ये दुनिया 3 घंटों के लिए किराए पर मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता था। अच्छा, उस समय हर सिनेमा हॉल में ना 2 प्रोजेक्टर नहीं होते थे, कईयों में एक होते थे, तो हर पार्ट के बाद एक इंटरवल होता था, जिसमें 2 होते तो वैसा तो सामान्य इंटरवल होता था। तब सिनेमा हॉल में एक ही प्रोजेक्टर मशीन हुआ करती थी, इसीलिए इंटरवल के पहले और बाद में एक शॉर्ट इंटरवल हुआ करता था। पहले शॉर्ट इंटरवल में गेट पास नहीं दिया जाता था। कभी कभी कोई पुरानी फिल्म लगी हो और ज्यादा भीड़ ना हो तो गेट पास भी नहीं दिया जाता। पक्की खबर होने पर हम ऐसे मौकों का लाभ उठा लेते और इंटरवल के बाद आधी फिल्म अधिकार पूर्वक देख लेते। गुलजार साहब की आंधी मैंने ऐसे ही इंटरवल के बाद देखी थी और पता नहीं किस मुहूर्त में देखी थी कि पहले वाली आधी फिल्म आज तक नहीं देख पाया। हाँ, वो कमलेश्वर जी वाला नॉवेल जो है वो पूरा पढ़ लिया है। अच्छा, इंटरवल की कालावधि के 2 मुख्य प्रयोजन होते थे। पहला लघु शंका वाला, कई बार इंटरवल के बाद जब कोई गाना आता तो टॉकीज के बगल वाली गलियों में उन मकानों के पिछवाड़े हिस्से में जहां थोड़ा अंधेरा और थोड़ी ओट होती, ये काम अधिकार पूर्वक निपटा दिया जाता।
और दूसरा प्रयोजन होता था अपने लिए ठेले वाले से गरम चने या मूंगफली हासिल करना। इसकी गुंजाइश तभी बनती जब फिल्म देखने के लिए पैसे आधिकारिक रूप से घर से स्वीकृत किए गए हों। जेब में पैसे कुछ ज्यादा हों तो जैन होटल के समोसे बड़े मशहूर हुआ करते थे। तो जिस दिन फिल्म के साथ समोसों का भी स्वाद हासिल हो जाए वो अपने लिए बड़ा दिन हुआ करता था भाई। और इसकी याद तब तक बनी रहती जब तक अगला सुअवसर हाथ ना आए। जैन होटल का जिक्र के साथ एक भीड़ भरी इंटरवल से कुछ पहले का किस्सा याद आ गया। पर इस मूल कथा से पहले मतलब एक सहायक कथा पर भी थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। ये कथा यूनियन मीटिंग के दौरान कॉमरेड एम एन प्रसाद सुनाया करते थे। सोवियत क्रांति से पहले जारशाही के दिनों में जब वहां गंभीर खाद्यान्न संकट था लोगों को परखने के लिए लेनिन चौराहों पर टोकरी लेकर बैठ जाते। टोकरी में रोटियां होती, कोई इंसान आकर रोटियां उठा ले तो उसे कुछ नहीं कहते, जो रोटियां मांगता उसे मना कर देते, चल। उनके एक साथी ने इसका सबब पूछा कि भाई क्यों यार तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, जो खुद आकर रोटियां उठा रहा है वो अपने अधिकारों को समझता है, मांगने वाला जो है वो अपने काम का नहीं है। तो मूल कथा यह है कि इंटरवल से ठीक पहले जैन होटल में एक देहाती किस्म के इंसान का प्रवेश होता है। बंदा आता है, बढ़िया दो तीन किस्म की मिठाइयां खाता है, फिर दो समोसे मंगाए जाते हैं, एक समोसा और मंगाया जाता है, आखिरी में चाय आती है। चाय भी बड़ी इत्मीनान से सुर्र सुर्र करके पी जाती है। जब तक कि इंटरवल की घंटी ना बज जाए तब तक घंटी बजते हुए बंदा उठता है और कितने हुए कहते हुए काउंटर तक पहुंचता है। इधर बेरा अपना हिसाब लगा रहा है, उधर सिनेमा वाली भीड़ टूटने को है। बस यही संक्रमण काल है। ठीक इसी क्षण वो पूरे आत्मविश्वास के साथ 200 मीटर की लंबी दौड़ लगाकर आंखों से ओझल हो जाता है। सिनेमा वाली भीड़ काउंटर पर पहुंच चुकी है और काउंटर पर बैठे चश्मे वाले सेठ को सूझ भी नहीं पाता कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। भागने वाले ने गालियां तक बकने का मौका नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि जैन होटल का सेठ लेनिनवादी नहीं है। अच्छा, इंटरवल से हॉल में लौटने की भी कुछ तयशुदा परंपराएं थीं। सिने पर्दे की मायावी रंग बिरंगी रोशनी बालकनी वाली सीटों से कुछ ही ऊपर से आती थी। नाचती खेलती कई रंगों वाली रोशनी मुझे बहुत आकर्षित करती थी और कई बार सिनेमा देखना छोड़कर इन्हीं रंगों में खो जाया करता था। रोशनी के निकास के लिए दीवार पर कुछ छिद्र बने होते थे। छिद्र के उस पार की दुनिया मेरे लिए बड़े कौतूहल का विषय थी। मैं सोचता था कि यार वो कौन सा जादू है जो पर्दे पर ऐसी दुनिया रच देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। उस कमरे के दरवाजे पर अंदर आना मना है, ऐसी इबारत होती। और मुझे अफसोस है कि मैं अपने जीवन में बड़ी बड़ी चक्रियों पर चलती फिल्मों की रील की उस तेज गति की नंगी आंखों से नहीं देख पाया जो पर्दे पर जीवन रचते थे। तो यहां से फैलने वाली रोशनी और पर्दे के बीच जब किसी दर्शक का सिर आ जाता तो एक बड़ी सी काली छाया उभर आती। कोई विनोदी दर्शक हॉल में मौजूद होता तो चिल्ला कर कहता, अबे बैठ जा। बेचारा अनजान छाया निर्माता झेप सा हो जाता, पर वो मट्ठर हुआ तो सिर हटाकर रोशनी के आगे थोड़ी देर के बाद अपना पंजा फैला देता और उसकी उंगलियां पर्दे पर नाचने लगती। इस कार्रवाई के जवाब में अक्सर माँ की गाली आती और कभी कभी जवाब में दुगनी आवाज के साथ सूद सहित वापस भी लौटाया जाता। ये संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम एक समृद्ध परंपरा के तहत आम जनता के मनोरंजन के लिए होता और तनाव में आने के बदले लोग हंसने लगते। फिर हंसी की आवाज सीटियों के शोर में खो जाती और लोग वापस फिल्म पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते। अच्छा, फिल्म देखने वालों में कुछ दर्शक ऐसे भी होते थे जो फिल्म देख चुके होते थे। वो अपने साथी को आगे की कहानी सुनाने का प्रयास करते और बदले में अगल बगल वाले की डांट भी खाते रहते थे। ए चुप्पे, ए लेके जा इसको, समझ नहीं आ रहा क्या उसको? मगर उन बेचारों से रहा नहीं जाता और थोड़ी देर में फिर इसी काम में लिप्त हो जाते। अच्छा, कुछ अमजद खान साहब की जहमत से बचाने के लिए तेरा क्या होगा कालिया, या फिर अब गोली खा जैसे संवाद गब्बर सिंह से पहले ही कह डालते। एक दर्शक तो ऐसा था जो सस्पेंस वाली फिल्म में लोगों का मजा खराब करने के लिए पहले ही जोर से चिल्लाकर मर्डरर का ऐलान कर देता। एक बार इसी वजह से उसकी अच्छे से कुटाई भी हुई। अच्छा, शोले एक बार दिवाली के समय लगी, इधर डाकुओं के बंदूक से गोली निकलती और उधर बालकनी में बम पटक, मतलब यहां बंदूक से गोली निकली वहां बालकनी में बम फूटा। गेट कीपर दौड़कर अंदर आता पर अंधेरे में किसे पकड़ता भाई। कुछ दर्शक बड़े पिन्ने किस्म के होते और जरा सा सीरियस सीन आने पर सुबकने लगते और कुछ कंटिन्यूटी फॉल्ट पकड़ने के एक्सपर्ट होते और चिल्लाकर कहते, अबे समुद्र में कूदा तो शर्ट लाल थी, अब नीली कैसे हो गई?
कुछ दर्शक जो होते हैं वो जंप और जर्प पालने के विशेषज्ञ होते हैं और ऐसा होने पर फौरन चिल्लाकर कहते हैं, अबे ए, काट दिया। उधर से रहस्यमयी रोशनी वाले छिद्रों के पीछे से आवाज आती, अबे रील ही ऐसी आई है साले, हाँ मुझे क्या बोल रहा है, चुपचाप देख। सिनेमा देखने के लिए टिकट लेना जरूरी होता था और टिकट लेने के लिए लाइन लगाना कोई आसान काम नहीं होता था। बचपन में देखा भाई, वो सिनेमा की लाइन जो हुआ करती थी बड़ी खतरनाक होती थी, और साइकिल स्टैंड से साइकिल निकालना तो और भी कितना मुश्किल काम होता था। तो जो कभी सिनेमा की लाइन में नहीं लगा, समझो उसका जीवन अकारक चला गया। कुछ लोग जो थे, मतलब पहला दिन और पहला शो, इस सिद्धांत पे यकीन रखते थे, भैया सिर पर कफन बांध कर निकल पड़ते थे। उचित सूचना के अभाव में माए ऐसे वीर बालकों की आरती भी नहीं उतार पाती थी, मतलब कि बेटा जा रहा है शहंशाह की टिकट लेने या उसकी टिकट लेने, रुक जा तिलक लगवा जा, है ना, आएगा भी या नहीं आएगा, दबकर निकल ना ले कहीं, बड़ा रिस्क रहता है ना। आरती भी नहीं उतार पाती थी, और ये काम कभी कभी सुबह सवेरे भी हो जाता था, जब किसी बहुप्रतीक्षित फिल्म के रोजाना 5-6 खेल होते थे। सिनेमा की लाइन के लिए ठंड, गर्मी और बारिश, सभी मौसमों को बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में भीड़ कुछ ज्यादा होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने के लिए लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता।

आता था, इतनी सकरी गली होती थी। मतलब थर्ड क्लास वाले जो है ना, मतलब उसमें तो एक ही एक आदमी जाएगा, उस पे चार चार लगते थे भाई साहब। ऊपर से तैर के जा रहे हैं और जाकर जो है टिकट ले ले। बाकी बालकनी वालकनी का तो अपने अलग माहौल था, वो फैल के जाओ, अमीर आदमी है भाई, कार से आए हैं, नहीं स्कूटर से, उस समय कार बड़ी चीज थी। तो सिनेमा की लाइन के लिए ठंड, गर्मी और बारिश सभी मौसमों को बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में कुछ ज्यादा ही होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने की लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। उसका एक पैर बुकिंग विंडो पर और दूसरा सामने वाली रेलिंग पर होता। एक हाथ से वो रेलिंग का सहारा लिया होता और कमीज को उतार कर दूसरे हाथों पर ऐसा कंधे पर लटका लेता। अंदर बनियान हो भी सकती थी और नहीं भी, मतलब कुछ तय नहीं होता था। बनियान ना होने पर भी वो बीच बीच में शर्ट से बदन को पोंछ लेता था, जिसके दो फायदे होते थे। पसीने से शर्ट के भीग जाने के कारण पंखा करते हुए वो ठंडी हवा फेंकता था और अंदर हॉल की सीलन भरी गर्मी में इत्र फुलेन का काम करता था। तब आज के समय वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता तो इसके रिपोर्टर आकर लोगों के मुंह में माइक ठूंस कर और पूछते कि आपको लाइन में लग रहा है, कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? शर्ट का पंखा हिलाता हुआ नौजवान कैमरे के आगे हिलाता हुआ कहता, जी तकलीफ तो है पर कोई बात नहीं, आगे सब ठीक हो जाएगा। और हो भी गया। अरे सिनेमा की लंबी लाइन देखकर कुछ कमजोर लोगों के दिल टूट जाया करते थे। कुछ ऐसे नाजुक दिल भी होते थे जो परिस्थितियों का बहादुरी पूर्वक मुकाबला करने के बदले कायरता पूर्वक ढंग से पिक्चर देखे बगैर लौट जाते। कुछ लोग ऐसे मौकों पर नारी शक्ति की उपयोगिता को रेखांकित करते और घर से आई महिलाओं को लेडीज वाली छोटी लाइन में लगा देते। अच्छा, महिलाओं की लड़ाइयाँ देखी हैं आप लोगों ने कभी टिकट के लिए? मतलब पुरुष क्या लड़ते होंगे, वो बाल पकड़ के, जिसको हम एमपी में कहते झोतरा। सिनेमा देखने की इस जंग में सब जायज था और कभी कभी नए आविष्कारिक उपायों का सहारा लिया जाता। एक बार जब विलंब से पहुंचने के कारण लंबी लाइन देखकर अपन ने रणभूमि से लौटने का मन बना लिया तो अपने एक मित्र ने इस बुजदिली के लिए खूब दुत्कारा। उसने मुझसे मेरे हिस्से के पैसे मांगे और जाकर लाइन के आसपास खड़ा हो गया। खिड़की खुल चुकी थी। थोड़ी देर में मैंने अपने मित्र को सज्जन से बातचीत करते हुए पाया और पता नहीं उसने ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया कि हड़बड़ाए हुए लाइन से अलग हुए और उनका स्थान मित्र ने ले लिया। टिकट लेकर हम अंदर हो गए। मित्र ने कुटिल मुस्कुराहट के साथ बताया कि वो सज्जन ग्यारसी लाल हैं, कोऑपरेटिव में बाबू हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते। मैंने जाकर उनसे कहा कि चचा आपका नाम ग्यारसी लाल है ना? उन्हें कहा हाँ। मैंने कहा कि आपको कोई ढूंढने आया था, घर में किसी की तबीयत बिगड़ गई है। ठाके लगाते हुए मैंने कहा कि अभी पलट कर आएंगे और तुम्हारी तबीयत बिगाड़ देंगे। तब तक 16-17 जड़ी बूटियों वाला वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो चुका था। अच्छा, कुछ भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ब्लैक में टिकट लेते थे। उन दोनों ब्लैक टिकट की चर्चा ब्लैक मनी से ज्यादा होती थी, जैसे इन दोनों चुनावों के रुझानों का आकलन सट्टा बाजार से किया जाता है। उन दोनों बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन इस बात से पता चलता था कि टिकट कितने में ब्लैक हो रही है। कई बार सिने मालिकों पर ब्लैक करने वाले इसे मिली भगत करने का आरोप लगते थे। आत्मनिर्भरता की दिशा में ये उन दिनों वैसा ही मशहूर रोजगार हुआ करता था जैसा इन दिनों पकौड़े बेचना। नागपुर की लक्ष्मी टॉकीज में जब मैंने चाचा भतीजा फिल्म देखी थी तो उसमें नायक धर्मेंद्र भी इस सम्मानित पेशे में लिप्त हुआ करते थे। ब्लैक से लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी की हैं, एक एक फिल्म से लोगों ने बिल्डिंग खड़ी की हैं, वो दौर हुआ करता था। सबसे बड़ा धक्का तब लगता था जब आप लाइन में खड़े हों और अचानक हाउसफुल की तख्ती के साथ खिड़की बंद हो जाए। शायर ने शायद इसी मौके के लिए कहा होगा कि किस्मत की खूबी देख ये टूटी कहां कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया। कभी कभी ऐसे मौकों पर गेट कीपर से दोस्ती बड़ी काम आती थी। राजा हुआ करते थे भाई गेट कीपर, बात नहीं करते थे किसी से सीधे मुंह, भले ही आपके मोहल्ले में रह

के गेट कीपर का रुतबा आज के एडिशनल कलेक्टर से ज्यादा होता था। थर्ड क्लास में सीट नंबर नहीं होता था, भीड़ ज्यादा होने पर लकड़ी की अतिरिक्त बेंच लगा दी जाती थी। गेट कीपर इनमें हितग्राही को समायोजित कर लेता था, बदले में हितग्राही उसे कम से कम टिकट दर से आधी और अधिकतम श्रद्धानुसार किंतु विज्ञापित मूल्य से कम की मुद्राएं अर्पित करता था। इससे परस्पर सामाजिक सौहार्द में वृद्धि भी होती थी। तो हमारी शहर का जबलपुर का ये वाक्य है, गेट कीपर ऐसा जो है अपना टॉर्च लेकर आता था, अब बेंच पर बैठने की व्यवस्था है, बैठा दिया है, चार ही बैठ सकते हैं, पांचवा नहीं बैठ सकता, लेकिन वो बैठाएगा। अब जो है वो टॉर्च लेकर पहुंचा है वहां पे, हाँ चल खिसक खिसक खिसक, अरे कहाँ खिसके यार भैया, बैठ तो गए यार, अब कहाँ बैठेंगे यहाँ पे, अरे क्या बैठने दे, अरे कहाँ बैठे, पैसा तो दे दिया, बैठने दो ना, अरे जगह का भैया देखो हम एक उस पर बैठे हैं यार, अरे खिसक खिसक, नहीं खिसकता था तो क्या, गेट कीपर क्या करता था, वो खिसकाने के बाद कितने टेक्निक वाले होते थे, गेट कीपर पर जाता था, खिसक बनेगी जगह, अरे नहीं बनेगी यार भैया, गेट कीपर जो होता था वो बेंच में, ये बेंच है तो बेंच के उसमें ऐसा बैठता था, दीवार से अपने दोनों पैर सटाता था, उसमें ताकत लगती।

करते थे, मूडी थे, जब तक 5-6 बार बुलाया नहीं आता हॉल की ओर रवाना नहीं होते थे, पर एक बार निकल गए तो मन लगाकर पोस्टर बनाते थे। कभी कभी फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के सिर के पीछे तख्ती लगाकर कटआउट जैसा बना दिया था, जिसकी नगर में उस समय बड़ी चर्चा थी। बॉबी के लिए उन्होंने गजब की कैलियोग्राफी की थी। उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में उस्ताद शागिर्द कोटे में देखी। आधी अधूरी मिलाकर जितेंद्र की लोक परलोक मैंने कम से कम 12 बार देखी होगी। फिल्म देखने के लिए हम 9 से 12 वाला सेकंड शो चुनते थे, क्योंकि भीड़ इसमें कदरन कम होती थी। 6 से 9 वाला फर्स्ट शो प्राइम टाइम होता था। महिलाएं दोपहर के भोजन के बाद रात को खाने की तैयारी के बीच 3 से 6 वाला मैटिनी शो चुनती थीं। 4 खेल होने पर स्कूल छोड़कर आने वाले प्रतिभाशाली बालक गुरुवार को 12 से 3 वाला शो भी देखते थे। इस दिन के चयन का यह कारण होता था कि स्कूल में इस दिन आम कपड़ों में आया जा सकता था। यह योजना खास तौर पर उन गरीब छात्रों के लिए थी जिनके पास यूनिफॉर्म की एक ही जोड़ी हो और वो उसे धो ना सकें। पर जैसा कि दीगर सरकारी योजनाओं में होता है, इस योजना का लाभ भी समान रूप से सभी उठाते थे और सिविल ड्रेस में होने के कारण होनहार छात्र सिनेमा के टिकट से वंचित होने से बच जाते। आन मिलो सजना, धड़कन, एक फूल दो माली फिल्मों के नाम मुझे अच्छी तरह से याद है। 7-8 बरस की उम्र में देखा होगा या शायद इससे पहले। फिल्म का कोई दृश्य याद करने की कोशिश करता हूं तो कुछ याद नहीं आता, कहां देखा यह भी याद नहीं। एक तो दृश्य आंखें बंद करने के बाद थोड़ी देर को लहराते हैं फिर गुम हो जाते हैं। ब्रीफकेस से निकलने हुए नोट को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, कहीं कोई गहरे कुएं में गिर गया है, सब कुछ बस धुंधला सा है। आंखों के आगे कोई साफ तस्वीर नहीं झलकती, जो साफ दिखता है वो संपूर्ण रामायण का दृश्य है। हनुमान की भूमिका में दारा सिंह है, रावण के दरबार में आसन नहीं मिलता तो अपनी पूंछ से गुंबद जैसा बनाकर उसी में बैठ जाते हैं। अशोक वाटिका में मचाए उत्पात से रावण क्रोधित है। अच्छा, ये मैंने नोट किया है कि वानर जो है फल खाते कम है, उत्पात ज्यादा मचाते हैं। मित्र राजेंद्र चंद्रकांत रॉय कहते हैं कि जिसे हम उत्पात कहते हैं वो वानरों की सदाशयता है। बंदरों की हिरण से अच्छी दोस्ती होती है। कोई जानवर शिकार पर आए तो वे हिरणों को आगाह कर देते हैं। उनकी उछल कूद इसलिए होती है कि पत्ते झरे और हिरण उसे चरें, यह उनकी आदत हो जाती है। बहरहाल बात संपूर्ण रामायण फिल्म की हो रही थी, जो मेरे जहन में स्पष्ट रूप से अंकित है। यह 70 के मध्य काल होगा। उन दिनों चंबल के बिहड़ों में डाकू काफी मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए वह स्वभावतः फिल्मों में भी प्रचुर मात्रा में दिखते थे। पान सिंह तोमर के आते आते डाकुओं ने अपना ठिकाना बदल लिया और वो दिल्ली मुंबई में शिफ्ट हो गए। कुछ NRI किस्म हो गए और सरहद पार ठिकाने बदलने लगे। जाहिर है कि डकैतों के घिसे पिटे प्राचीन तरीकों से चिपटे हुए नहीं रह सकते थे। 70 के दशक वाले पुराने डाकू 2 किस्म के थे, जैसे कि हिंदी पट्टी में रंगकर्मी कलाकार वगैरह होते हैं, एक प्रोफेशनल और दूसरे एमेच्योर। प्रोफेशनल डाकू है वो गांव या शहर आकर डकैती करते थे, अपनी ड्यूटी करने के बाद चुपचाप बिहड़ लौट जाते थे। वो थोड़ा संजीदा किस्म के होते थे और अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखते थे। और एमेच्योर डाकू जो होते थे उनकी दिलचस्पी डकैती में कम, नायिकाओं को छेड़ने में ज्यादा होती थी। वो थोड़े छिछोरे किस्म के होते थे और जंगल, बाग, पनघट, बावड़ी, नदियां इन्हीं तरह आसपास में मंडराते रहते थे। ऐसा मालूम होता था कि डकैती इनका अंशकालिक कार्य है। अलबत्ता दोनों ही किस्म के डाकुओं का यूनिफॉर्म एक ही होता था, नुकीले जूते, सफेद धोती, गहरे रंग का कुर्ता और कुर्ते पर कारतूसों वाली आड़ी बेल्ट, हाथ में दुनाली। अच्छा, कुछ शौकीन मिजाज डाकू रंगीन पगड़ियों या साफे का भी शौक फरमाते थे। ये आवागमन के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। इनके अलावा घोड़ों की सवारी करते हुए आम जीवन में मैंने सिर्फ बारात के साथ दूल्हों में देखा है। कारण शायद यह हो कि प्रकारांतर में वो भी डाकू ही होते हैं और दहेज के रूप में मोटी रकम और माल असबाब की डकैती करते रहते हैं। लेकिन डाकुओं की एक बात है भाई, डाकुओं की जितनी फिल्म देखो हर फिल्म में भाई संगीत प्रेमी मिलते हैं। ये मतलब क्लासिकल सुनते हैं, मतलब अगर सही दिशा इनको मिली होती तो सोचो, मतलब संगीत की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमाते वो लोग, अच्छे ट्रेंड सिंगर म्यूजिक फील्ड का कुछ ना कुछ होते। मतलब म्यूजिक के कितने अच्छे अच्छे गाने हैं ना, जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी, है ना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, दर्शन भी है और दुआ देके परेशान भी हो जाती हूँ, क्या बात है। चलो तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन जी नाम, उनके बिना तो नाम इंडस्ट्री का कैसे। इसके बारे में भी एक बात बड़ी वो है, हम जब छोटे थे
जब फिल्में नहीं भी देखते थे कोई पूछता था फेवरेट।

0: एक्टर कौन है? तो बोलते थे अमिताभ बच्चन। ये नाम इतना वृहत हो गया है, हम बोलते थे अमिताभ बच्चन। जिसने फिल्म नहीं भी देखी है, मनोरंजन जगत से, सिनेमा से नहीं भी मामला हो जिनको, वो नाम लेता था अमिताभ बच्चन। तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन के आगमन ने अपनी छोटी छोटी फिल्मों में डाकुओं की मोनोपाली को तोड़ा। अमिताभ युवाओं के क्रोध और गुस्से के प्रतीक थे। जंजीर के बाद दीवार में उनका गुस्सा और गाढ़ा हो जाता है और वो कभी कभी और सिलसिला में रोमांटिक हो जाते हैं। नटवरलाल और याराना में कॉमेडी भी करते हैं। उसके बाद फिर सिनेमा की एक नई धारा उभर कर सामने आती है, अर्धसत्य का पुलिस इंस्पेक्टर। जंजीर के पुलिस इंस्पेक्टर से ज्यादा तार्किक और वास्तविक लगता है और गुस्सा इतना है कि रामा शेट्टी का गला दबोच लेता है। जाने भी दो यारो जैसी क्लासिक फिल्म आती है जो संभवतः हिंदी की एकमात्र सटायर फिल्म है। बाद में और बनी होंगी लेकिन है ये फिल्म दर्ज फिल्म है। ये हिंदी सिनेमा के राग दरबारी के रूप में सामने आती है। गोविंद निहलानी, सई परांजपे, केतन मेहता, एमएस सत्यू, सुधीर मिश्रा, आनंद पटवर्धन, नसीर, ओम पुरी, पंकज कपूर, फारूक शेख, स्मिता पाटिल, शवाना आजमी वगैरह, ये सब मिलकर कुछ ऐसा रचने लगते हैं कि हिंदी सिनेमा की बनी बनाई स्थापनाएं, अवधारणाएं धराशायी होने लगती हैं। पर ये लंबे समय तक नहीं चल पाता। टेक्नोलॉजी उधर घात लगाए बैठी होती है। टेलीविजन और VCD का आगमन बॉक्स ऑफिस की कमर तोड़कर रख देता है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल जो हैं वो सूने होने लगते हैं। हाउसफुल वाली खिड़कियों पर काई जमने लगती है। सिनेमा हॉल के मालिक कोई कला प्रेमी तो है नहीं कि वो धरोहर को बचाने की फिक्र करें। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मौके की जगह है। हॉल मॉल में बदल जाते हैं। बेशक पर्दा यहाँ पर भी है पर वो 60 पैसे वाला थर्ड क्लास नहीं है वो माहौल, वो सिनेमा जीने वाला। वो 60 पैसे वाला दर्शक भी नहीं है जो आखिरी आदमी की श्रेणी में आता है। उसकी अनुपस्थिति में उसका कंटेंट, उसका सरोकार, उसकी चिंताएं, उसका देश, समाज सब गायब हो जाता है। यहाँ वो नया दौर नहीं चल सकता जो तांगे वालों को मोटर गाड़ी वाले की बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है। यहाँ 3 Idiots ही चल सकती है जो जरूरत पड़ने पर गरीब का मजाक उड़ा सके। खैर, सिंगल स्क्रीन सिनेमा वही दौर था, दौर की बात थी। हम भाई मिस तो करते हैं सभी लोग, क्योंकि वो थर्ड क्लास था, लाइन में लगना, वो जिया हुआ समय। सिनेमा देखना भी उत्सव हुआ करता था। याद आता है रिश्तेदार जब आया करते थे, अगर सिनेमा हॉल घर के पास हो तो पहले वो घर आते थे, साइकिल या अपनी जो भी गाड़ियां हो वो रखा करते थे, घर आकर पहले चाय नाश्ता करते थे, उसके बाद सिनेमा देखने जाते थे, फिर वापस आते थे, अपना वाहन लेकर जाते थे, वैसा जुड़ाव बना रहता था। लेकिन बाजार के साथ साथ जो है वो चीज़ें नहीं बची। तो बस यही है, ये शेयर करने का मतलब यही था, एक दौर जो है हम फिर से जी लें, याद कर लें चीज़ों को, आनंद लें। बाकी सिनेमा का क्या है,
1: मंजू हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। लैला मंजू रोजाना 4 खेलों में आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।
2: ये उन दिनों की बात है, तो उन दिनों की बात का मजा हमने लिया
3: जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था।
2: जी हाँ,
3: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने,
2: और उसका शीर्षक था ये उन दिनों की बात है। इसी के साथ समय हो रहा है आज के विविधा कार्यक्रम के पूरा होने का।
3: उम्मीद है आज का विविधा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप अपनी प्रतिक्रियाएं विविध भारती की फेसबुक पेज पर देना नहीं भूलें।
2: इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए जयंत पात्रीकर
3: और मंदाकिनी जोशी को नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: चाहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 8वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और

0: संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी हम

धरती कहे पुकार के इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, अभिमान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर और मनहर की आवाजों में। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

वो चार मुस्काया बेचारे शर्माए, हमारा भी जीना मचलने लगे जो हाथ

आप सुन रहे थे आकाशदीप फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को शुरू में ढाला चित्रगुप्त ने। गंगा की लहरें इस फिल्म का गीत है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में।

0: एस डी वर्मन की तर्ज थी आशा भोसले की आवाज, बम्बई का बाबू फिल्म का ये गीत था, रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी।
1: सुनिए
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

खुसरो सुल्तानपुरी के बोल थे लता मंगेशकर की आवाज़, ममता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रोशन की तर्ज थी। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया बाबू फिल्म का गीत, किशोर कुमार अलका याग्निक की आवाज़ें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे राजेश रोशन का संगीत था।

0: बाहर आने तक इस फिल्म का गीत आपने सुना, अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास और साथियों की आवाजें थी, राजेश रोशन की तर्ज थी। और श्रोताओं, यही थी हमारे आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों करते
0: हैं। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

मैं भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो अपने रेडियो सेट को श्रोताओं जरा करीब लाइए, सुनिए कि आपको पुकारता है विविध भारती पर प्यारे प्यारे गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर, जहां होती हैं हमारी इबारतें और आपकी बातें, थोड़ी थोड़ी सी तलखी, कुछ कुछ प्यार, थोड़ा तकरार और बेशक हम और आप मिलकर तय करते हैं सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, इसी की बात हमने आज की इबारत में की है। तो आपके लिए पढ़ देते हैं आज की इबारत। वैसे हमारे जो फेसबुक के साथी हैं वो तो देख ही चुके हैं कि आज की क्या इबारत है, और जो साथी नए जुड़ने वाले हैं उनसे हम बता दें कि आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते पर भेज सकते हैं अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। और अब ये है आज की इबारत। दिल का मौसम खुशगवार हुआ और कहने लगा, मेरे दिल जरा लहरा के चल। आशिकाना मौसम कहता है, इनसे शायद पहले सपनों में मिले थे। ये बिंदिया जब जब चमकती है, दिल से एक आवाज आती है कि ये तो तस्वीर है, और तस्वीर में वो बात कहाँ। कायनात को देखो तो जीने की तमन्ना जाग उठती है। काश कुदरत भी बोलती और कहती कि हमें भी तुमसे कितना प्यार है। खोलती ऐसे राज़ दिल जिन्हें छुपाना मुश्किल होता है। ऐसे में मुमकिन है कोई खफा हो जाए, फिर मिलने के बहाने कुछ सूझे और घर से निकल पड़े। दीवाना बनकर ढूंढा उनको जो बादलों की तरह बेकार।

कर जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो चलते हैं। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है जो जरूरी नहीं कि इस मौसम के साथ साथ चले। ये तो दिल का मौसम है, कभी खुशियों में लहराता है तो कभी रूठों को मनाता है, मन के फूल खिलाता है और सबको प्यार सिखाता है। तो चलिए चलते हैं आज इस अलबेले सफर पर, देखते हैं कि इस सफर पर आज किस किस से मुलाकात होती है। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

एक समय ऐसा था श्रोताओ, जब साइकिल पर खूब सवारी की जाती थी और देखा भी नहीं जाता था कि भाई फासला कितना है, यानी फासला थोड़ा भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था। तो साइकिल के बारे में आपका क्या कहना है, साइकिल से जुड़ी हुई बातें अगर आप चाहें तो हमसे जरूर साझा करें। आप सुन रहे थे जॉय मुखर्जी पर फिल्माया ये गीत, जो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है, इशारा फिल्म का ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी, मुकेश का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज खुशगवार मौसम में प्रकृति की खूबसूरती के दिलों की बात होने वाली है। ये बिल्कुल सही है कि जब दिल खुशगवार होता है तो हमारे आसपास की प्रकृति जैसे हरी भरी वादियों, कल कल करती अविरल नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरनों की आवाजें दिल को आशिकाना बना देती हैं, जिससे हर चीज में खूबसूरती नजर आने लगती है। वैसे अगर कहा जाए तो सुंदरता देखने वाली चीज में नहीं बल्कि देखने वाले वालों के मन में होती है। इसलिए तो कहा गया है कि अगर मन चंगा हो तो कठौती में भी गंगा बसती हैं। यही कारण है कि उदास मौसम के विपरीत खिले हुए मौसम में हर चीज दिल को लुभाती है। आज की इबारत में ढूंढते रह जाओगे वाली बात नजर आती नहीं आ रही। आपने इशारों इशारों में सब कुछ लिख दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने कुछ गीत भी सुझाए हैं। वैसे हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम को देते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि दिल, मौसम, आशिकाना, बिंदिया, आवाज़, तस्वीर, शायद, कायनात, तरन्नुम, तमन्ना, कुदरत, प्यार, राज, मुश्किल, मुमकिन, खफा, बहाना, घर, दीवाना, बादल, बेकरार, अच्छा, चलते और कुछ गीतों की सूची भी इन्होंने दी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सभी श्रोता मित्रों को प्रणाम, आइए चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में कुछ रोमांटिक, कुछ ठंडे गीतों से इस दोपहरी को यादगार बनाते हैं। वैसे तो सूर्य देवता अपनी तपिश से सारी दुनिया को जलाने की ठान कर बैठे हैं, हमारी विविध भारती ने भी ठान रखा है अपने गीतों की ठंडक से सबका मनोरंजन करने का। बस इंतजार है 1 बजे का। जी हाँ, तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अगर आप नहीं सुन रहे तो बस फटाफट आ जाइए रेडियो के पास और कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है। और एक और श्रोता लिखती हैं, आपकी जो पंक्तियां प्रेम के उस अनंत सफर का दर्पण है जहां हर मौसम एक नई दास्तान सुनाता है, आंखों में सजे सपने, बिंदिया की चमक और कायनात की खूबसूरती मिलकर एक ऐसी गूंज पैदा करते हैं जो सीधे दिल को छू लेती है, बादलों की तरह बेकरार करके जाने। और अच्छा, तो हम चलते हैं का वो आखिरी मोड़ दिल को एक खूबसूरत की कसक और उम्मीद से भर देता है। ये एहसास दिलाता है कि भले ही दूरियां हों लेकिन इंतजार का ये सफर अपने आप में कितना हसीन है। जी हाँ, और बिल्कुल इस तरह हसीन है दिल का सफर, जब मन होता है दिल किसी और भी निकल लेता है, जहाँ दिल को सुकून मिलता है। और ऐसा ही सफर आज कुछ हम तय कर रहे हैं।

शुदा, उस साइकिल की यादें तो आपको बतानी ही हैं, साथ साथ आप ये भी बताइए कि ये जो गीत है वो एक टेंट के पास फिल्माया गया है, ऐसी कोई याद आपकी है क्या? क्योंकि टेंट में भी आपने कभी ना कभी रात या दिन जरूर बिताए होंगे।

ये जो आखिर में आप सुन रहे थे संगीत, ये पंछी की उड़ान यानी उसके पंख की आवाज़ थी श्रोता। और ऐसा शायद कभी आपके साथ भी हुआ हो कि आपने भी टेंट में रात बिताई हो या दिन बिताया हो या कहीं गए हो, खासकर अगर आपने पहाड़ों की सैर की है, तो आप हमें ऐसे अनुभव बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि खुशनुमा मौसम मन को सुकून देता है, हल्की ठंडी हवा, खिलते फूल और बादलों की छांव दिल को नई उमंग से भर देती है। ऐसे मौसम में पुरानी यादें और दिल में बसी कोई खास तस्वीर बार बार मुस्कुरा उठती है। दिल में बसी तस्वीर केवल किसी चेहरे की नहीं होती, बल्कि उन प्यारे लम्हों की भी होती है जो जिंदगी को खास बना देते हैं। प्रकृति का सुंदर रूप इंसान को जीवन की भाग दौड़ से कुछ पल राहत के देता है और मन को शांति का एहसास कराता है, और खुशगवार मौसम उन यादों को और भी खूबसूरत बना देता है। जी हाँ, और तभी तो हम ऐसे मौसम में खास प्रकृति की ओर चल देते हैं, और तब हम ये नहीं देखते कि मौसम कौन सा है, क्योंकि हमारे दिल का मौसम जो कह रहा होता है कि भाई अब चलिए कहीं और चलें। एक हमारी और श्रोता बताती हैं, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा के पास एक साइकिल थी। उसे साइकिल पर बैठकर हमारे पापा सभी को स्कूल छोड़ देते थे। मुझे और मेरे दो भाइयों को मेरे पापा साइकिल पर ले जाया करते थे, और पूरी फैमिली 5 जने साइकिल पर ही जाया करते थे, कहीं भी जाते थे। और फिर जब मैं 12वीं कक्षा में आई तब मुझे स्कूल की साइकिल मिली थी, तब मैं साइकिल चलाया इन्होंने, और इन्हें बहुत खुशी हुई। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब पैर पैदल पर होते हैं और ठंडी हवा चेहरे को छूती है, तो ऐसा लगता है कि मानो हम वक्त से थोड़ा आगे निकल आए हैं। साइकिल की सवारी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया मात्र नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक एहसास है। बचपन की पहली आज़ादी के एहसास से लेकर आधुनिक दौर में पर्यावरण को बचाने के आंदोलन तक साइकिल हमेशा से इंसानी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा रही है। एक और श्रोता लिखती हैं, सुंदरता आईने में नहीं इंसान के स्वभाव में दिखाई देती है। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर दिल खूबसूरत ना हो तो सुंदरता अधूरी लगती है। असल खूबसूरती मुस्कान, सच्चाई और अच्छे व्यवहार में छुपी होती है, जो दूसरों के दिलों में जगह बना लेती है, वही सच में सबसे सुंदर होता है। सुंदरता रंग या चेहरे से नहीं, इंसान की सोच और उसकी सादगी से पहचानी जाती है। और कुछ लोग साधारण दिखकर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि उनकी रूह बहुत सुंदर होती है। जी हाँ, जब रूह सुंदर होती है तो ज़्यादातर देखने में ऐसा आता है कि मौसम चाहे जो भी हो, लोग चाहे जैसे भी मिले, बातें चाहे कोई भी कहीं जाए, लेकिन सुंदर लगता है और सब कुछ अच्छा लगता है। मन अच्छा है तो सब अच्छा लगता है, और यही है दिल का मौसम। एक और श्रोता लिखते हैं, वाकई में दिल का मौसम खुशगवार हुआ था जब मैं स्वयं परिवार सहित जून 2024 में कश्मीर गया था। मौसम तो आशिकाना था ही, और धर्मपत्नी की बिंदिया जब चमकती थी और मेरे दिल की आवाज़ भी लहरा कर कहने लगती, हर पल मजबूर था कि कश्मीर कुदरत का नायाब करिश्मा है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी हाँ, अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीं अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो।

हो जाए पानी पानी, गोरे बदन पर काला आंचल और रंग ले आया।

इस गीत के संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और पाकीज़ा फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, मीना कुमारी पर फिल्माया गया, उस गीत के संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही बात है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, क्या बात है, आपने जिस खूबसूरती से पुराने सदाबहार गीतों की पंक्तियों उनके भावों और उनके मुखड़ों को एक धागे में पिरोया है, उसे पढ़कर दिल सच में बाग बाग हो गया। ये सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर गोल्डन एरा का एक म्यूजिकल सफरनामा। आपके इस खूबसूरत पैराग्राफ को खंगालने के बाद आज के मुख्य शब्द जो हैं और उन पर आधारित सदाबहार गाने कुछ इस तरह निकल कर आते हैं, और बहुत सारे गीतों की बात इन्होंने लिखी है, उसमें से बहुत सारे गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। जी हाँ, इनमें ये गीत भी है, मौसम है आशिकाना। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में खूब साइकिल चलाई, बहुत बार साइकिल से गिरा, चोट खाई, पर साइकिल की सवारी नहीं छोड़ी, अब साइकिल की जगह स्कूटर ने ले ली है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली साइकिल मुझे 1974 में मिली जब कक्षा 8वीं में था, वो भी सेकंड हैंड 75 रुपये में खरीदी गई थी। जी हाँ श्रोताओं, और आगे लिखते हैं कि उस समय लगा जैसे मुझे हवाई जहाज मिल गया हो, इधर उधर बहुत चक्कर लगाया करता था। नई चीज़ें जब आती हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, और ख़ासकर जो साइकिल थी उसका क्रेज़ तो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस गीत में कलाकार जॉय मुखर्जी, यानी पहले गीत की इन्होंने बात करी है, मुखर्जी साइकिल पर सवार हैं, और जिन लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमत ज़्यादा लग रही है वो साइकिल पर सवार हो सकते हैं। जी हाँ, जहाँ तक कीमत की बात है, वो प्रकृति से तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। साइकिल पर सवारी प्रकृति को पूरी तरह से महफूज रखती है, तो अक्सर जब हम साइकिल चलाते हैं तो इस बात का जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों की दुनिया और खुशगवार मौसम में प्रीतम से मिलन अत्यंत भावपूर्ण मिलन श्रृंगार होता है, जहां प्रकृति और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य होता है। ठंडी हवाओं का चलना, बादलों का अदखेलियां करना, एक संगीतमय मादकता वातावरण में घुली सी जाती है। प्रिय का स्वप्न में आना, प्रेमियों के मन में विरह की पीड़ा को मिटाकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति से भर देता है। एक और श्रोता लिखते हैं, कुछ गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे दिल को सुकून की बारिश मिल गई हो, कुछ गाने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दिल में ढेर सारी शांति छोड़ देते हैं, कुछ धुनें सुनते ही पुरानी यादें धीरे से सामने आ बैठती हैं, ऐसे गीत सुनकर लगता है जैसे कोई बहुत अपना पास बैठा हो, कुछ गाने इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें बार बार सुनने का मन करता है, जैसे नीले गगन के तले जिस पथ पर चला, छोड़ दे सारी दुनिया, और ये सारे गीत इन्होंने लिखे हैं, जो गीत इन्होंने अंदाज लगाए। वैसे हमारे आज जो श्रोता लोगों ने गीतों की जो लिस्ट भेजी है वो ज़बरदस्त है, और उसमें बहुत सारे गीत जो हैं आज के कार्यक्रम से मिलते हैं।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज आप सुन रहे थे दो रास्ते फिल्म का ये गीत, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं को लिखना बाकी है कि हमने पूछा था इस जोड़ी की आखिरी फिल्म कौन सी है। कुछ एक श्रोताओं ने प्रेम कहानी के बारे में लिखा है, देखते हैं क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं कल से एक लंबी यात्रा पर हूँ, गाड़ी की चाल तो सीधी रखे हूँ पर दिल लहरा के ही चल रहा है। कुदरत के हसीन नज़ारों को देखकर दिल का मौसम भी आशिकाना सा हो गया है। हम सब की तरह कुदरत भी सबसे बोलती है कि हमें तुमसे प्यार है, मगर उसकी ये आवाज़ कानों में भले सुनाई नहीं देती तो उसे दिल की गहराइयों से महसूस करने पर ही समझा जा सकता है, और ये उसी को महसूस हो सकती है जो प्रकृति को प्यार करे। जी हाँ, तो आप बताइए कि प्रकृति के लिए आप क्या करते हैं? क्या आपने पेड़ लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो वो कितना बड़ा हुआ है हमें बताइए, और किस चीज़ का पेड़ है। एक इन्होंने ही, जिनका अभी मैंने जिनकी बात पढ़ी, उन्होंने बहुत सारे गीतों की बात करी है। पहले मिले थे सपनों में, दिल लहरा के चल, बिंदिया चमकेगी, जो बात तुझ में है, देखते हैं कौन सा गीत आता है। तो एक और श्रोता लिखती हैं, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, लेकिन दिल का सफ़र तो सभी जान लेते हैं, सभी समझ लेते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैडम जी, आज के सुरीले सफ़र में सभी फेसबुक साथियों के साथ पुष्पमाला पहनकर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। 10 बजे के तापमान 31 डिग्री पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य स्थल पर तैनात होकर शाम अवकाश होने तक अपना कार्य पूर्ण कर सकुशल अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं, और शुभकामनाएं लिखी हैं इन्होंने। एक और श्रोता लिखती हैं कि 2 दिन से सच में दिल का मौसम खुशगवार बना हुआ है, हालांकि गर्मी का कहर बना हुआ है, लेकिन अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करना एक आत्मिक शांति देता है और दिल कह उठता है मौसम है आशिकाना। भाई, हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी अपने दिल की बातें लिखी हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में स्कूल की तरफ से एनसीसी कैंप राजगीर में लगा था, उस दौरान एक रात टेंट में गुजारनी पड़ी थी, बहुत मज़ा आया था। जब अपने दोस्तों के साथ पहली बार घर से बाहर एक टेंट में रात गुजारी, वो दिन आज भी बहुत याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार किया है तुम बताना, और इन्होंने और भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। और वैसे आप कोशिश करिए, कोई ना कोई गीत तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें से तो कोई गीत नहीं मिलता। अपनी कोई यादगार तस्वीर आप बता सकते हैं।

रोशन की तर्ज थी फिल्म ताजमहल का ये गीत आप सुन रहे थे। प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया, साहिल अध्यानवी की रचना थी। हमारी श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर कभी पुरानी नहीं होती, जब देखो उतनी ही नई नकोर लगती है, मगर तस्वीर में वो बात कहाँ जो तुम में है। ये सारी प्रकृति को देखो तो जीने की तमन्ना बरबस सिर उठाने लगती है। काश ये पेड़ पौधे भी बोलते, हमसे कुछ कहते, हम सब नहीं जानते कुदरत अपने कितने अंदर कितने राज समेटे हैं। आप चाहे जितना सोच लीजिए इस जीवन के बारे में, मगर बिना प्रकृति से जुड़े कुछ भी संपूर्ण नहीं है। ये बादल, ये दीवानापन, ये बेकरारी और कुछ अंतहीन सपनों के साथ आज चलते हैं एक और सुरीले सफर पर। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आपकी सुगम और सुंदर लिखावट देखकर मौसम के साथ दिल भी आशिकाना बन गया है। कुदरत का प्यार, जन्नत की तस्वीर जीने की तमन्ना बढ़ा रही है। यही आस नाराज बादलों का छुपा हुआ राज जानकर उन्हें सपनों में नहीं तो धरती पर सचमुच का सुरीला सफर करने को कह रही है। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, ये मौसम रंगीन समा, और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, बिंदिया चमकेगी वगैरह। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तो दिल का मौसम खुशगवार हो जाएगा, दिल भी झूम उठेगा और कहेगा लहरा कर चल दिल्ली में, क्योंकि गाना ही दिल्ली में फिल्माया गया है। खैर, पैराग्राफ को पढ़कर ही पैर थिरकने लग गए हैं कि कौन से गीत बजेंगे। मौसम तो बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने और भी अपनी बातें लिखी हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं और दिल का मौसम जैसे गीत आज की इबारत में शामिल हो सकते हैं। जी, अभी चलने का समय नहीं हुआ है श्रोताओ, तो आप चलिए नहीं बल्कि कार्यक्रम से जुड़े रहिए। एक और हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओ, आपको इस गीत के बाद बताते हैं।

कविता रहमान जी पर फिल्म आया गया, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गाइड से, और आपको बताना है कि इसका जो आखिरी अंतरा है वो किस ऐतिहासिक किले में फिल्माया गया है। और एक और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपके दिल का मौसम कभी ये कहता है कि राजस्थान चलें और ऊँट की सवारी करें। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी लिखी हुई इबारत के चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत भी शामिल, जो बात तुझ में है, और मेरी इबारत के बैक टू बैक दो गीत शामिल हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हमने कई पेड़ लगाए हैं और अभी ज़रूर लगेंगे। हमारे घर में हमने गमलों में भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं। सुबह सुबह जब उठकर फूलों को खिला हुआ देखते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और उस मन भावन को भी अपने जो है घर का फूल चढ़ाते हैं, भगवान को भी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आम का पौधा लगाया था, 5 साल हो गए, आज बहुत बड़ा हो गया है, मालदा आम भी लगाए हुए हैं। जी हाँ, आम का तो मौसम है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत सुंदर है, खूबसूरत गानों की तरफ इशारे भी कर रही है, समझ में तो आ रहे हैं पर मैं लिख नहीं रही हूँ, सुनने का ही मजा लूंगी। ऐसा मत कीजिए, आप लिखिए भी जरूर। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, लाहौर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और निकलने वाला हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम खुशगवार हो ना हो, सपनों में मिलेंगे, तस्वीरों से बात करेंगे तो आशिकाना दिल लहरा के चलेगा, कुदरत के ललाट पर सूरज रूपी बिंदिया चमकती है, कायनात के इस रूप को देख चीनी की तमन्ना उठती है, राज दिल छुपाना मुश्किल होगा तो बहाने से बताएंगे कि बादल बेकरार होके दीवाना होकर बरसेगा। और बहुत लंबी इबारत है।

सुरीला सफर कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। कुदरत फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। एक हमारी श्रोता लिखती है कि हमारे यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार है, गर्मी भी है और धूप भी और मंद मंद हवा के झोंके भी आ रहे हैं, क्या पता शाम तक बारिश भी हो जाए। कुल मिलाकर सफर गीतों के साथ

बातों को भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं, साइकिल चलाना मैंने कभी नहीं छोड़ा, आज भी साइकिल से बाजार घूमने जाता हूँ, घुटनों का व्यायाम हो जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, पाकीज़ा फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद थे और इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जो थी वो मीना कुमारी नहीं रही। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने बहुत साइकिल दौड़ाई है दिल्ली में, पूरा रिंग रोड नाप दिया जो पूरे दिल्ली के क्षेत्र को जोड़ता है।

श्रोताओं, आप फिल्म पहचाने और संगीतकार बताएं, और ये भी बताएं कि आपको कभी ऐसा लगा कि किसी खास जगह को ढूंढने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी।

हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में भी लिखा है। सूरज और चंदा फिल्म का गीत है, मोहम्मद रफी की आवाज़ में, और रीटा अक्सर और संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था।

आपको भी कभी ऐसी मशक्कत करनी पड़ी श्रोताओं क्या, किसी खास जगह को ढूंढने में, किसी जगह पर जब आप पहली बार गए? एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऊंट की सवारी तो प्रायः सभी समुद्री तट पर उपलब्ध है और पूरी मेरे घर से 80 किलोमीटर दूरी पर है। बच्चे भी

तो ऊंट की सवारी किए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बिल्कुल आपने जैसा पूछा, मौसम तो होते ही हैं प्यारे, हर मौसम की अपनी अलग विशेषता है और पकवान भी। सर्दियों की प्रतीक्षा रहती है हमें, क्योंकि हमारे लखनऊ में निमिष सर्दियों में ही तो मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं, राजस्थान में ऊंट की सवारी यहाँ के पर्यटन का एक मुख्य और बेहद खूबसूरत आकर्षण है। थार मरुस्थल के सुनहरे रेतीले टीलों के बीच ऊंट पर बैठकर सूर्यास्त या सूर्योदय देखना एक जीवन भर न भूलने वाला अनुभव होता है। ऊंट पर बैठते और उतरते समय थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि जब ऊंट अपने पैरों पर खड़ा होता है या बैठता है तो आगे और पीछे की तरफ एक जोरदार झटका लगता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मौसम किसे प्यारे नहीं लगते, हमें तो नवंबर और फरवरी के महीने का मौसम बड़ा प्यारा लगता है, जब सर्दी थोड़ी सी कम रहती है। ऐसे मौसम में हाथ डाले दूर तक चलने में आनंद आता है, जब चांदनी रात हो।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, राजस्थान तो नहीं गई लेकिन अभी हाल में गुजरात के दीव में हमने ऊंट की सवारी की, थोड़ा डर भी लगा जब वो खड़ा होता और फिर बैठता है। एक और श्रोता लिखते हैं, फिल्म गाइड का गीत मेरी लिस्ट का पांचवा गीत है। एक लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ फिल्म में किले में फिल्माया गया ये गीत है। एक और श्रोता ने लिखा है, बचपन के दिनों में हमारे पास ऊंट होता था जो कुएं से पानी निकालने का काम के काम आता था और हम उस पर बैठकर घर से खेतों में और वहां से फिर घर आते थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि हाँ, मेरा जाने का मन तो करता है राजस्थान, कभी शायद जा पाऊँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर में हुआ था गाइड फिल्म का फिल्मांकन गीत का।

मिलो सजना इस फिल्म का गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुखविंदर सिंह की आवाज में फिल्म स्टैनली का डब्बा से।

हितेश सोनिक का संगीत अमोल गुप्ते के लिखे बोल सुखविंदर सिंह की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म स्टैंडी का डब्बा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शान और आमिर खान की आवाज में फिल्म तारे जमीन पर से।

0: शंकर एहसान लॉय का संगीत प्रसून जोशी के लिखे बोल आमिर खान और शान की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म तारे जमीन पर से और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह सिक्किम के खांग चेनजोंगा की 5 धरोहर 2047 तक विकसित सिक्किम का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह लेख खांग चेनजोंगा को सिक्किम की भूमि, स्मृति और चेतना के रक्षक के रूप में चित्रित करता है और इसके सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में भी चर्चा हुई और क्वाड बैठक से पहले हिंद प्रशांत क्षेत्र प्राथमिकता बना हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते का जल्दी होना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। इससे पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने सिंगरौली जिले के विकास के बारे में चर्चा की
1: और ये आने वाले समय की दृष्टि से हम इसका मास्टर प्लान बना रहे हैं सिंगरौली के लिए और विकास के लेकर के मध्य सरकार के पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं। बहुत जल्दी उनके रिजल्ट भी आएंगे और जिस प्रकार से हमने अपने निवेश और रोजगार को लेकर के गत वर्ष काम किया था उसके बलबूते पर ये पूरे हमारे आसपास के जिलों को भी रोजगार यहाँ मिले, इस तरह का प्रबंधन कर रहे हैं।
0: भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले का उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। ट्विशा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ भोपाल पहुंची है। इससे पहले आरोपी समर सिंह को कल अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा। लोगों को फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है। विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों GSTC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि नए नियमों के तहत ये केंद्र वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल और डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर की जांच भी शामिल है। इसका उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना, व्यवस्था में तकनीक के उपयोग और वैश्विक मानकों के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बढ़ावा देना है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। अब तक लगभग 100,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेलवे के जबलपुर मंडल स्थित रेल उत्सव हॉल मदन महल में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 211 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नर्मदापुरम जिले की ग्राम पंचायत मलोथर में प्रशासन आपके द्वार अभियान के तहत रात्रि चौपाल आयोजित की गई। प्रभारी कलेक्टर ने ग्रामवासियों से संवाद कर शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। और रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नीतिका आकरे ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
1: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे

0: महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्त स्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानशी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और

0: राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: का लिखा संगीत सचिन देव बर्मन का था।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में आप सुन रहे थे दो चोर फिल्म का गीत।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुर में ढाला चित्रगुप्त ने। लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म थी ऊंचे लोग। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: नहीं है वल्ला जवाब।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म में किशोर कुमार की आवाज आपने सुनी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: तुम इसको खेल समझे हो मगर एक दिन दिख

0: मोहब्बत इसको कहते हैं इस फिल्म का गीत था, मुकेश और आशा भोसले का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।
1: तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन

फिल्म माया का दोगाना था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया मंसूर सुल्तानपुरी के बोलों को सुर में ढाला सलील चौधरी ने। यही थी आज के सदाबहार कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं,

नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 और 30 सेकंड हुए हैं। हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। तमाम व्यस्तता के बीच कहीं दोपहर में ठंडे शरबत की ताजगी है और खस की खुशबू और ऐसी ही ताजी हवा के झोंके सा आपके चुने हुए गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत आ चुका है आपके रेडियो सेट पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में किन किन श्रोताओं के मनचाहे गीत शामिल हो रहे हैं। मनचाहे गीत प्रोग्राम में अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आन मिलो सजना, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहा जिला यमुनानगर हरियाणा से जयपाल धीमान, यशपाल धीमान, विनोद और राजीव धीमान। इसी गीत के लिए फरमाइश की रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और इस गीत को सुनना चाहते थे जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला अदवंत, नीलेश अदवंत, मयूरी अदवंत, कल्पेश अदवंत और संगीता अदवंत।

एक बार मुस्कुरा दो इस फिल्म में आशा भोसले मुकेश की आवाजें आपने सुनी, एस एच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने, इस गीत को सुनना चाहा दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी। इसी गीत को सुनना चाहा सिकंदर अली खान, बदुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से, और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से, ये हैं चंदू हातोले, सीमा हातोले, गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से, बीपी गौतम, सरिता, अनन्या, कुश, रिंकू टिंकू, रीना, ऐश्वर्या, श्रेय, आप सभी की फरमाइश थी।

खयाम की बनाई तर्ज पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यश दास ने। त्रिशूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिन जी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी और शिवांश अनूप सिंह और अभिजीत सिंह की ये फरमाइश थी। हेतु रांची से प्रवीण कुमार और इसी गीत को सुनना चाहा गुराई बुरीवली वेस्ट मुंबई से अंशिका ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत।

चोर मचाए शोर इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से, और भरत यादव, काजल शर्मा, विकास सक्सेना इनकी फरमाइश है बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे श्रोता हैं तहसील तिलहारा अकोले महाराष्ट्र से, विनोद कुमार आड़िया, भारती, पारस पायल, श्वेता और उर्वीबेन आड़िया।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी, और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी, और इसी गीत की फरमाइश की लीला बेन, रिस्मिता बेन, भारती, निधि, सेजल, मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में सुनिए उषा सक्सेना का लिखा नाटक चंदन वृक्ष।

0: भी कॉल लगने वाली है।
1: हाय फ्रेंड्स, क्या चल रहा है?
0: फिलहाल तो चाय और समोसे चल रहे हैं। अब आप आ गए हैं तो
1: चल चलो सुमित, उधर बैठते हैं खिड़की के पास।
2: वहाँ क्यों?
1: अरे भाई, आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए। तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी। आया जी।
3: हाँ बिटिया,
1: हमारी चाय यही दे देंगे।
3: लाई चाय बिटिया,
1: चल बैठ सुमित।
2: अरे यार, तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
1: तो ले चाय पी, एकदम गरम है। अरे सुमी, जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
2: कहाँ कहाँ? ओ जूड़ा? अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।
1: वो दिन वो
2: कहाँ?
1: तो तुमने शायद शैम्पू किया है। वाह, कितने खूबसूरत बाल हैं,
2: एकदम वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह।
1: सुमन सुमी, वो देख सुमन, देखो
2: कहाँ।
1: अरे कितनी अच्छी लग रही है
2: सच में।
1: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
2: अरे यार, ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी धीरे धीरे तैरती हुई चली जा रही है।
1: पर तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से। न कोई थ्रिल है, न कोई एक्साइटमेंट
2: है। क्यों नहीं? अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप, गोरी गोरी दुबली पतली प्यारी सी बालिका, जैसे
1: कटनार की गली यही कहेगी ना। ले समोसा खा।
2: गर्म गर्म खिला रही हो।
1: हाँ तो फ्रेंड्स,
3: यस
1: मिस सुमी, आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है।
3: बिल्कुल, वेलकम वेलकम।
1: ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है।
3: चंदन?
1: बस ये भी चंदन जैसी है। पर जरा सांप से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
2: रीमा तू नहीं सुधरेगी।
1: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना।
4: थ्री चीयर्स फॉर भावी कवित्री।
1: तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
2: अरे यार समोसा खाने दो।
1: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा, कम ऑन।
2: ओ रीमा, अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। जी चाहता है इसे आंखों में आंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से संवार दूं, कर लूं वंदन हे वृक्ष चंदन।
1: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई, मैं तो चली। चलेगी सुमी?
2: आज नहीं, भैया आते होंगे, उनका इंतजार करूंगी।
1: ओके बाय
3: बाय
1: फ्रेंड।
3: बाय
4: बाय, सी यू सून।
1: अरे नमस्ते भाई साहब।
5: अरे तू रीमा, लगता है

0: संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई।
1: कबूतरी? What do you mean? You mean Sumi? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है। हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकुटती है, और चलती है तो
0: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा है।
1: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
0: अरे भाई, गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
1: अच्छा भाई, तो आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
0: चक्कर और उससे? अरे बाबा, डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है, सुनिए। क्या करूं, तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
1: अच्छा, और क्या कहती है?
0: कहती है, खिलती कलियां झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं, जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
1: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
0: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो, अधखिली अनछुई ओस में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
1: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
3: अरे भैया, आप घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
4: बहुत अच्छी है, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
3: तार? वो तो नहीं मिला। खैर अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
4: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
3: रिजर्वेशन?
4: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
3: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है, और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
4: मैं तुम्हारे वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊंगा।
3: लेकिन भैया अचानक ये सब क्या हो रहा है, मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूंगी? साफ बताओ ना भैया, क्या बात है?
4: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
3: ब्याह?
4: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
3: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
4: ये मजाक नहीं सुमी, सच है, घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
3: वाह भैया, मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
4: देख सुमी, परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आगरे का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 बार बाहर भी हुआ है।
3: ओ भैया,
4: सब ठीक ही है। और देख, रही तुझसे पूछने की बात, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बूढ़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
3: हाँ, तभी तो आप भुगत रहे हैं, रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया, और आपकी जिंदगी।
4: सुमी बस प्लीज, दुख तिरक मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है, पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, और लड़के की बहन मंजू वो तो बहुत ही प्यारी। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ, तू तैयार है ना?
3: सामान बांट लो, सब लाड साहब हैं, मुझसे बिना पूछे ही सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे, और अब बीए भी नहीं कर पाऊंगी, लड़का इंजीनियर है। अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा, चढ़ जा सूली पर, एक खत तो लिख दो रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं, मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को, पहले से आ जाना, नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुनी
2: विजया जी, चलिए भैया जी आ गए हैं।

0: अरे सुमी सुमी, देख तेरी बारात आ गई।
1: ए सुमी, मैं भी तेरा दूल्हा देखा।
0: नहीं रीमा, मुझे छोड़कर मत जा।
1: क्यों?
0: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
1: अरे घबराहट कैसा? सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
0: रीमा छोड़ मुझे। रीमा, शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे लिपटे हुए सांप दिखाई दे रहे हैं। मेरा क्या होगा रीमा?
1: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा। अब तू एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।
0: ठीक है,

0: मैं भी चलूं?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों? शोमी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती, पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ,
0: हाँ
1: कि शोमी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती।
1: हाँ।
0: सुमी खुश रहे बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और वो अपने एक नई जिंदगी में खो जाए।
1: हाँ।

0: भाभी घूंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू, इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी?
2: अरे चलो चलो ना मिले ना मिले ना, अरे तार आताई आती दीजिए ना, जोड़ी की आती तार है जोड़ी है, देखो जरा सा।
0: आइए भाभी अब उधर बैठते हैं, आइए भैया
2: तुम भी चलो।
1: नहीं मैं आंगन में जा रहा हूँ भाभी, ताई जी और बुआ जी के पास।
3: मुबारक हो लल्ला जी।
2: अरे तैया दुल्हन है कि एकदम चाल का टुकड़ा, किस्मत वाले हैं हमारे भी भैया।
0: अच्छी हो जी, चाय पी लीजिए भैया, थक गई मैं।
2: आप लोग अरे
0: आप लोग भी चाय पीजिए।
1: क्या कहा, मैं थक गया हूँ, इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, ये कितनी सारी फाइलें निपटानी है और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
0: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है, हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं, कितनी प्यारी है भाभी।
1: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है, कितनी सारी भाभियां हैं चारों तरफ, भाभी भाभी भाभी, वाह। लो लो चाय पियो, लो लो भाभी तुम भी पीनो, तुम भी पीनो, तुम भी पीनो।
2: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई, हे भगवान और बहू का क्या होगा, डॉक्टर ने कहा कुमारी के चांद सी बहू आते ही ग्रहण लग गया, हाय क्या होगा।
4: अरे बंधी भी तो पागल के साथ।
1: क्या कहा, अरे मैं पागल हूँ?
4: अच्छा
1: तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम भी पागल हो, तुम सब पागल हो, पागल हो, ये पागलों की बारात है, पागल।

0: मैं पागल, मेरा मनुआ पागल, पागल मेरी प्रीत रे।
1: अरे ये मुझे क्या पहना दिया? हार अंगूठी ये लो ये लो ये लो, लूटो लूटो, पागल का ब्याह हुआ है, झूमो नाचो गाओ।
2: भैया भैया ये क्या कर रहे हो भैया? भाभी बुआ पकड़िए इन्हें, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ।
1: छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे मुझे छोड़ दो छोड़ दो। देखो देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
3: हूँ,
1: मैं पागल नहीं।
2: बाबूजी बाबूजी बाबूजी बाबूजी,
3: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
2: भैया को फिर दौरा पड़ा है बाबूजी, अनशन बोल रही हैं।
3: क्या कह रही हैं?
2: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रही हैं, चाची बुआ साबुनी पकड़े हुए हैं।
3: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर क्या तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर, तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
2: अच्छा
3: भाभी, राहुल विकी तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो, मंजू तुम बेटे बहू को संभालना।
2: अच्छा बाबूजी,
3: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
2: ठीक है बाबूजी। भाभी ताई जी संभालिए भैया को। भाभी भाभी ये क्या आप रो रही हैं? भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। भाभी ये लीजिए पानी पी लीजिए।
4: नई जिंदगी की शुरुआत, वो भी इस ढंग से। मंजू जी क्या हो गया आपके भैया को? क्या इसकी वजह मैं हूं या फिर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं? सच बताइएगा मंजू जी, आपको मेरी कसम।
2: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं हैं।
4: तो फिर?
2: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे, इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई हैं। लेकिन अचानक ही हमारे परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई।
4: ट्रेजेडी?
2: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करते थे और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की। उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा, इलाज किया गया, ठीक हो गए, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
4: वहाँ ठीक रहते हैं?
2: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं।
4: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
2: उम्मीद दिलाते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहते हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
4: नहीं मंजू जी अभी भूख नहीं।
2: तो लेट कर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ, शायद बाबू जी आ गए हैं।
4: कितनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का, रईस घराना, शानदार हवेली, 4-5 गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अरे डैडी, इससे अच्छा होगा अगर आप मेरा गला घोट देते। जीते जी मुझे मारने की क्या जरूरत थी डैडी? रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं।

0: वायलेंट हो गया था। हाँ, अगर सावधानी न बरती जाती तो शायद शायद वो नर्स का गला ही खोल देता।
1: बाबूजी।
0: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
1: पाप क्या होगा बाबूजी?
0: क्या कह सकता हूँ मैं? फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। राजेश बेटा।
2: जी बाबूजी।
0: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
1: लेकिन बाबूजी, भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी, भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
0: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
1: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकती है और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
0: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे?
1: ठीक कह रही हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सुमी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
0: मंजू, मंजू,
1: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो?
0: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप में आता है पक देती है।
1: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी, उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
0: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं, सोचता हूँ उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए, जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
1: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
0: ठीक।
3: अरे आ गए आप लोग, सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी, तू कुछ बोलते क्यों नहीं? रितेश कहाँ है?
4: मम्मी प्लीज, के सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगी। सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
3: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखूं तो? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
4: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
3: क्या हो गया मेरी सुनी बेटी?
4: आए डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
3: हाँ देखिए डॉक्टर साहब, कितना तेज बुखार है।
5: इत्मीनान रखिए, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई इसको तो बुखार है। ऐसा करता हूँ, मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा, चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
3: ठीक है ठीक है,
5: और घबराने की कोई बात नहीं है।
3: ठीक है, जा बेटा दवाएं ले आ।
4: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुमी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे। हाँ
3: ठीक है,
4: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
3: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
4: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
3: धोखा? कैसा धोखा?
4: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा, वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
3: अच्छा,
4: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
3: नहीं, नहीं।

0: सकता, ये नहीं हो सकता। ये भगवान, ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश? मेरी मासूम बच्ची सोमी, ये क्या?
1: देखिए मम्मी, इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
0: क्या?
1: इस सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है ममा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। मम्मी, एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे। रीमा उसकी केयर करेगी और रही ससुराल वालों की बात, तो उनसे हम निपट लेंगे।
0: अच्छा।
1: अब ठीक है ममा, आप सुमी के पास जाइए।
0: ठीक है। वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी, वाह! बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता मेरा? मैं तो टूट चुकी थी। और मैंने मुझे बदले में क्या दिया? रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर आखिर वो क्यों तप रहे हैं एक टूटे हुए इंसान के लिए? मुझे हर वक्त समझाते रहते हैं, पर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं?
2: अंदर आ सकता हूं?
3: ओ, आप आइए आइए, बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे तो ठीक है ना?
2: सब ठीक है। तुम कैसी हो सुमी?
3: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं।
2: यहाँ रहकर भी क्या करूंगा सुमी? एक बात कहूँ सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो, तोड़ दो सुमी। आज आखिरी बार कह रहा हूं।
0: कैसे तोड़ दूं? ये दुनिया, ये समाज मुझे जीने देगा?
2: समाज, समाज, फिर वही समाज। क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन, तनाव और दुख। तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से? चलता हूं, गुड बाय सुमी।
0: राजन!
2: सुमी
0: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बहुत थक गई हूं
2: सुमी।
0: और राजन,
2: ओ सुमी, मैं जीत गया सुमी, मैं जीत गया। शायद चंदन रस से सांप हट गए हैं
0: और बिखर गई है मादक गंध।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं जिस धरती का बंजा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
0: क्या 1993 फिल्म।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवां भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड वन।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बम्बई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जाम थे
2: जी,
1: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
2: साइन में,
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T157
2: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी,
2: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
2: ओ गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई होली आई कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा करता था
2: जी
1: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टेड बाय रमेश तलवार, म्यूजिक बाय कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
2: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है।
1: ना ना, वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा था उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सौतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सेलेक्ट हो गया और मद्रास एवीएम में जो है उसकी शूटिंग थी।
0: एपिसोड टू में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
1: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
2: बिल्कुल।
1: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे। एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आँख से, तो मैं काफी
2: आगे
1: चलूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी चार असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा पांचवा असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखिएगा सब
2: जी।
1: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
2: Yes.
1: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है पांच आने में। फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला एक आने का टिकट, वहां जाता पांच आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठन्नी में
2: काम बन जाता था। कौन कौन सी फिल्में देखी होंगी?
1: सब, कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है। बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती पांचवां सीटर रखकर कोने में बैठा हो, सब आगे चले। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
2: जावेद साहब ने,
1: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है, करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
2: हाँ
1: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं। आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
2: हाँ बिल्कुल,
1: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
2: वो भी आपके दोस्त।
1: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिंपल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी।
2: जी जी।
1: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में,
2: हाँ
1: तो पिक्चर को बिल्डअप मिलता है, ये उनके जहन में था। और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था, खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
0: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
1: करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
1: याद करते देखते हैं। नहीं करते भी है, देखते भी है, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही है ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल, और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार कास्ट,
1: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार

0: रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे। न्यू कमर था राइटर,
0: जी जी जी
1: उन्हीं का नाम है, राइटर है, राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर ले तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
0: हाँ।
1: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया।

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
2: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक,
1: खूबसूरत
2: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे, तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा वांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश से कहूँ पूछ लूँ, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा, तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, अच्छा प्ले था, बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर।
1: जी जी,
2: मैंने कहा ये जो इधर सेंट्रम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मैंने नाटक में नहीं होता।
1: जी जी,
2: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
1: जी,
2: नाटक में अमेरिका में बैठे तो मैं क्या करूँगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता है वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उसने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल में मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने उसके।

0: शबन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का। और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर, तेरा नाम मेरा नाम, न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो वो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला प्ले, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको शूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? पहले जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहा, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं अमित जी से भी बात कर लेती है, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। बोले सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने मुझे कहा ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे? मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे प्ले, ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें, और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती हैं, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटें कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। जैसे हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो, जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सबने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सब ने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने रमेश जी आप ही करिए।
0: अरे वाह।
1: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था, मुझे आप ही करिए कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए, आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मेरे से करनी शुरू हो गया और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
0: वाह वाह वाह।
1: उन्होंने कहा रोल मेन जिया जी का, लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में आप।

जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जज थ्रो अपने में है। और मेरा कभी कभी बीच में आता था मैं तीन चार, तो सब ने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

अजी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुँह मांगा दाम मिल, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई, तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैं तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? नहीं करूँगा, जरूर करूँगा, कब करना चाहोगे, कौन सी है स्क्रिप्ट सुनाओ, और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गुरड़िया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट पर बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जया जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जया जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा मैं करूँगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूँगा और पोइट लगूँगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए, लेकिन जो फिर तो उनके राइटर थे उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूँगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले, शबाना जी को ये थोड़ा करूँगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो उन्होंने फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, समथिंग राइटर ने। ठीक है, शौकत भाभी ने अपना अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही हैं, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने कहा शबाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहे कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए जावेद साहब से कहिए लिखें। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूँगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी, आप अपने ढंग से आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनके उनकी स्क्रिप्टों फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए। तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए तो उन्होंने कहा
रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती है शबाना की और वो, तो आप किसी और आप कंवलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: रमी जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट रहे हैं, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिल के, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: पुराना है मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है शाम का, उसमें कैरेक्टर का नाम शाम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना छुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी, तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी साथ में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये टाइम यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में, ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिग्मिलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नज़दीक नज़दीक की है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिश हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली, वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला, और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया, रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता, बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है, और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
0: वाह वाह,
1: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है, और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी हैं उसकी।
0: जी जी जी, काबुली वाला भी चल रहा है।
1: काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमलराज की बेटी वो आई, परीक्षित सानी के संग आई थी, उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा, वो करके मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीजें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित सानी से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सानी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार, मैं अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करनी, वो टाइम अलग था, अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है, तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी का भार करता।
0: मैंने देखा है, क्यूट प्ले है वो।
1: हाँ, बहुत अच्छा। तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्षन स्टेज पे क्या हो सकता है उतना करके जमा लिया अपना और चलता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हैना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबलीवाला लौट आया इन्हीं करेक्टर को लेके लिखा था और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबलीवाला जो एक्टरों के साथ अच्छे, ये सोलो पढ़ती है काबलीवाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बात कर लिया, फिर लुबना सदीकी ने एक आध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ करो और स्टेज पे पढ़ो। वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है और

0: आते हैं। अरे भाई उसका क्या, वो तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।
2: अच्छा।

0: ये थी रंगमंच और फिल्मों के जानी माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवा भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले उनकी यादों की। उजाले।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, यू नो शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

0: आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। कहते हैं जिसे मोहब्बत हो गई उसे अपने महबूब के अलावा दुनिया में कुछ नजर नहीं आता। इश्क में डूबे इंसान को अपने महबूब की हर चीज दुनिया जहान की सबसे खूबसूरत चीज नजर आती है। उसकी मासूमियत, उसकी सादगी, नाजुकी, उसका हुस्न, उसकी नजरें। जिसने तेरी नजर को देख लिया उसको दुनिया नजर नहीं आती। सच, उन्हें देखकर ये लगता है जैसे हर अधूरी मोहब्बत मुकम्मल हो गई हो।
1: कहां से लाई हो।

तसव्वुर एक ज़हनी जुस्तजू का नाम है शायद। ये दिल उनको ढूंढ कर लाता हुआ महसूस होता है। उनकी बातें मुझे खुशबू की तरह लगती हैं, फूल जैसे कोई सहरा में खिला करता है। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी।

मुझको महबूब है आपकी हर अदा, तू मेरा रंग है, तू मेरा रूप है, मेरी छांव है तू, मेरी धूप है तू। जिनकी यादों से रोशन है मेरी आंखें, जिनकी यादों से रोशन है मेरी आंखें, दिल कहता है, दिल कहता है, उनको भी मैं याद आता हूँ।

अब तक मेरी यादों से मिटाए नहीं मिटता भीगी हुई एक शाम का मंजर, तेरी आंखें। आप इश्क में हैं और दिल में जख्म ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन तमाम दर्द और जख्म के बाद भी दिल लगाना भला कौन छोड़ पाता है। जख्म झेले, दाग भी खाए बहुत, दिल लगाकर हम तो पछताए भी बहुत। वो तमाम पन्ने जिन पर लिखी हैं तेरी मेरी कहानी, सच कहूं इश्क हो जाएगा मेरी दास्ताने इश्क से। रात भर जागा करोगे इस कहानी के लिए।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मुद्दत के बाद आज उसे देखकर एक बार दिल तो धड़का मगर फिर संभल गया। उनके आने के बाद भी देर तलक उनका इंतजार रहा। कभी चांदनी रातों में तेरे ख्वाबों में खो जाते थे हम, अब अकेले रातों में तेरी यादों में बिखर जाते हैं हम। शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ, दिल ही काफी है तेरी याद में जलने के लिए।

उजड़ उजड़ कर संवरती है तेरे हिजर की शाम, उजड़ उजड़ कर संवरती है तेरे हिजर की शाम, न पूछ कैसे गुजरती है तेरे हिजर की शाम।

न जाने क्यों हमें इस दम तुम्हारी याद आती है, जब आंखों में सितारे चमकते हैं शाम से पहले। दिल की चाहत होती है तुम बैठो कुछ देर हमारे सामने यकीन के लिए। दवा जरूरी तो नहीं हर वक्त सुकून के लिए। तुम्हें पता है जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है। ये शाम की तन्हाइयां तेरी यादों के काफिले, एक कसक, एक टीस, एक सूनापन, एक अधूरी सी आहट। दर्द खामोश रहा, टूटती आवाज रही। दर्द खामोश रहा, टूटती आवाज रही। मेरी हर शाम तेरी याद की हमराज रही।

जुगनू जले बुझे मेरी पलकों पे सुबह तक, जब भी तेरा ख्याल सरे शाम आ गया। एक ही मिट्टी से हम दोनों बने हैं, तुझ में और मुझ में मगर फासला यूं कितना है। पूछते हो तो सुनो, है और तो कोई सबब उसकी मोहब्बत का नहीं, बात इतनी है कि वो मुझसे जफा करता है। वो मुझको टूट के चाहेगा,

छोड़ जाएगा। मुझे खबर थी उसे ये हुनर भी आता है। कब लौटा है बहता पानी, बिछड़ा साजन, रूठा दोस्त। हमने तो उसको अपना जाना जब तक हाथ में दामा था। वक्त के बदलने से दिल कहाँ बदलते हैं जाना, वक्त के बदलने से दिल कहाँ बदलते हैं जाना। आपसे मोहब्बत थी, आपसे मोहब्बत है।

अक्सर पूछते हैं लोग, किसके लिए लिखते हो? अक्सर कहता है दिल, काश कोई होता। साथियों, इन्हीं अफसानों के साथ पूरा होता है आज के छाया गीत का सफर। गीत संगीत की ऐसी ही सुरीली महफिल में फिर होगी मुलाकात। शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी कैसे क्लिक में अरे वाह
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: ओ यारो माफ करना कुछ कहने आया हूँ

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी

0: दिखाओ, अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
0: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

श्रोताओं, अब आपके लिए एक आवश्यक सूचना। कार्यालय वन मंडलाधिकारी दक्षिण शहडोल वन मंडल जिला शहडोल की ओर से, वन मंडल अनूपपुर के परिक्षेत्र अनूपपुर में विगत कुछ दिनों से विचरण कर रहे एक हाथी ने दिनांक 13/5/2026 को वन मंडल दक्षिण शहडोल की सीमा में प्रवेश कर लिया है। वन परिक्षेत्र केशवाही के वन क्षेत्र रामपुर और बेलिया के वन क्षेत्रों में विचरण करते हुए गिरवा पहुंच गया और 13 मई 2026 को रात्रि में ग्राम गिरवा कुदरा टोला में एक व्यक्ति को घायल कर मृत कर दिया है। उक्त हाथी वर्तमान में वन परिक्षेत्र केशवाही के वन क्षेत्र में विचरण कर रहा है। जंगली हाथियों के वन क्षेत्र से लगे ग्रामों के आसपास विचरण करने से फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाने और हाथी मानव द्वंद होने की अत्यधिक संभावना है। वन्य प्राणी जंगली हाथी का मूवमेंट वन परिक्षेत्र केशवाही के अंतर्गत ग्राम खमरौद, देवरी, खरला, चन्नौड़ी, अतरिया, जैतपुर और अन्य आसपास के गाँव में होने की संभावना है। अतः इन ग्राम के ग्रामवासियों को सजग रहना है। वन मंडलाधिकारी वन मंडल दक्षिण शहडोल श्रीमती तरुणा वर्मा भारतीय वन सेवा की आमजनों से अपील है, कृपया वन्य प्राणी जंगली हाथी को परेशान करने की कोशिश न करें। अगर जंगली हाथी के द्वारा ग्रामीण जनों के फसलों या घरों को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो शासन के द्वारा हुई क्षति का मुआवजा तत्काल नियमानुसार दिया जाएगा। वन क्षेत्र से लगे ग्रामों के पास वन्य प्राणी जंगली हाथी का मूवमेंट होने से कोई भी व्यक्ति वन क्षेत्र की ओर न जावे। हाथियों को बिना वजह शोरगुल कर परेशान न करें। हाथियों के पास पटाखे, ध्वनि यंत्र आदि का उपयोग न करें। जंगली हाथी दिखे तो तत्काल स्थानीय वन विभाग को सूचना दें। हाथियों को भगाने से इनका दल छोटे छोटे दलों में बढ़ जाता है और किसी भी दिशा में हाथी जा सकते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। अतः इन्हें न भगाएं। शराब और सुगंधित खाद्य पदार्थ हाथियों को आकर्षित करते हैं, अतः विशेष सावधानी रखें। घरों में महुआ फूल का भंडारण करके न रखा जाए। घरों में महुआ फूल रखने से हाथी घर की तरफ आकर्षित हो सकते हैं और मकान क्षति किए जाने की संभावना बन सकती है। अतः महुआ फूल का भंडारण घर से 200 मीटर की दूरी पर ही करें। यह जानकारी कार्यालय वन मंडलाधिकारी दक्षिण शहडोल वन मंडल जिला शहडोल की ओर से जनहित में जारी।

फिल्म संगीत का आनंद अभी आप उठा रहे थे श्रोताओं। अब वक्त हो रहा है कार्यक्रम लोक संगीत में जाने का, क्योंकि शाम के 6 बजने वाले हैं। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम लोक संगीत में।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर से सावधान
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

श्रोताओं, आपके लिए एक जरूरी सूचना। कार्यालय वन मंडलाधिकारी दक्षिण शहडोल वन मंडल जिला शहडोल की ओर से, अगर आपके आसपास जंगली हाथी दिखाई देता है तो जंगली हाथी की फोटो और इनके साथ सेल्फी न लें, सावधान रहें। जंगली हाथी शोर शराबे से नाराज होते हैं, अतः हल्ला न करें। जिन मार्गों में हाथियों का आवागमन है उन मार्गों को अस्थायी रूप से विधिवत बंद कर लोगों को जागरूक करें। घर में शराब का निर्माण न करें और शराब का सेवन कर हाथी प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन न करें। जिन क्षेत्रों में हाथियों का विचरण है उन क्षेत्रों से संबंधित सभी शासकीय विभाग जैसे वन, पुलिस, बिजली, स्वास्थ्य, राजस्व को सूचित करें। वन अधिनियम के अधीन हाथियों को विशेष संरक्षण प्राप्त है। इन्हें किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने पर वन और पुलिस विभाग कार्यवाही कर सकते हैं। जब भी हाथियों का विचरण दिन में हो तो विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाथी दिन में आराम करते हैं और सताए जाने की दशा में इधर से उधर गुस्से से घूमते हैं। वे आक्रोशित हो सकते हैं। हाथियों के विचरण क्षेत्र में वनों में एकाकी घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान के पक्के मकानों जैसे पंचायत भवन, स्कूल आदि में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कराना चाहिए। स्कूलों में स्कूली बच्चों को हाथियों से बचाव के उपाय बताएं ताकि बच्चे बड़ों को जागरूक कर सकें। हाथियों को देखने जंगल न जाएं, न ही किसी को जाने दें। जंगल में आप हाथियों को देखने जाएंगे तो हाथी आपको देखने आपके घर तक आएंगे, अतः इससे बचने का उपाय है आप उन्हें देखने जंगल न जाएं। हाथियों और मनुष्य में अधिकांश टकराव जंगलों में ही होता है, अतः हाथियों की वनों में उपस्थिति के दौरान वनों में न जाएं। हाथियों को खाने पीने की वस्तुएं न दें, ना ही किसी को देने दें। शराब और शराबियों से जंगली हाथी आकर्षित होते हैं और उनके करीब आ सकते हैं, अतः सावधान रहें। हाथियों को भगाने के लिए फटाके न फोड़ें, हाथियों को भगाने से वे गुस्सा होकर और अधिक हानि पहुंचा सकते हैं। हाथियों को पत्थर आदि से न मारें। हाथियों का बदला लेने का स्वभाव होता है, बदला लेने के लिए मारने डांटने वालों को दूर तक ढूंढने जाते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। संपत्ति की हानि सरकार देती है, मगर जन हानि पर कहीं भी कोई भी सरकार मनुष्य को पुनः जीवन दान नहीं दे सकती, अतः हाथियों से दूर रहें, उन्हें रास्ता दें, स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित करें। हाथियों के विचरण क्षेत्र के 20 किलोमीटर की परिधि में विशेष रूप से सावधान रहें। हाथी भागने की दशा में 24 घंटे के अंदर हाथी 60 से 70 किलोमीटर दूर भी जा सकते हैं, अतः सावधान रहें। हाथियों के आने जाने और रहने की सूचना मोबाइल फोन, SMS, व्हाट्सएप, धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर, वाहनों में लाउडस्पीकर, कोटवार आदि के माध्यम से करना चाहिए। यदि वन क्षेत्रों में वन्य प्राणी हाथी का मूवमेंट दिखाई देता है तो इन मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। श्री विनोद जाखड़, प्रशिक्षु भारतीय वन सेना अधिकारी, उप वन मंडलाधिकारी जैतपुर। फोन नंबर है 9424794433। श्री संतोष शुक्ला, सहायक वन संरक्षक, उप वन मंडलाधिकारी सुहागपुर। फोन नंबर है 9424794432। और श्री अंकुर तिवारी, वन क्षेत्रपाल, वन परिक्षेत्राधिकारी केशवाही। फोन नंबर है 8319034800। ये जानकारी कार्यालय वन मंडलाधिकारी दक्षिण शहडोल वन मंडल जिला शहडोल की ओर से जनहित में जारी।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब वक्त है कार्यक्रम संध्या वंदन का।
2: संतोषी माँ की महिमा अपार है। हर भक्त ने उनकी महिमा का गुणगान अपने अपने ढंग से किया है। इस चित्र की कथा भी कुछ धार्मिक पुस्तकों और लोक कथाओं के आधार पर है। आशा है आप इसे सच्ची भावना से स्वीकार करेंगे। जय संतोषी मां।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

अनूपपुर में विगत कुछ दिनों से विचरण कर रहे एक हाथी ने दिनांक 13/5/2026 को वनमंडल दक्षिण शहडोल की सीमा में प्रवेश कर लिया है। वन परिक्षेत्र केशवाही के वन क्षेत्र रामपुर और बेलिया के वन क्षेत्रों में विचरण करते हुए गिरवा पहुंच गया और 13 मई 2026 को रात्रि में ग्राम गिरवा कुदरा टोला में एक व्यक्ति को घायल कर मृत कर दिया है। उक्त हाथी वर्तमान में वन परिक्षेत्र केशवाही के वन क्षेत्र में विचरण कर रहा है। जंगली हाथियों के वन क्षेत्र से लगे ग्रामों के आसपास विचरण करने से फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाने और हाथी मानव द्वंद होने की अत्यधिक संभावना है। वन्य प्राणी जंगली हाथी का मूवमेंट वन परिक्षेत्र केशवाही के अंतर्गत ग्राम खमरौद, देवरी, खरला, चन्नौड़ी, अतरिया, जैतपुर और अन्य आसपास के गांवों में होने की संभावना है। अतः इन ग्राम के ग्रामवासियों को सजग रहना है। वन मंडलाधिकारी वन मंडल दक्षिण शहडोल श्रीमती तरुणा वर्मा भारतीय वन सेवा की आमजनों से अपील है, कृपया वन्य प्राणी जंगली हाथी को परेशान करने की कोशिश न करें। अगर जंगली हाथी के द्वारा ग्रामीण जनों के फसलों या घरों को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो शासन के द्वारा हुई क्षति का मुआवजा तत्काल नियमानुसार दिया जाएगा। वन क्षेत्र से लगे ग्रामों के पास वन्य प्राणी जंगली हाथी का मूवमेंट होने से कोई भी व्यक्ति वन क्षेत्र की ओर न जावे। हाथियों को बिना वजह शोरगुल कर परेशान न करें। हाथियों के पास पटाखे, ध्वनि यंत्र आदि का उपयोग न करें। जंगली हाथी दिखे तो तत्काल स्थानीय वन विभाग को सूचना दें। हाथियों को भगाने से इनका दल छोटे छोटे दलों में बढ़ जाता है और किसी भी दिशा में हाथी जा सकते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। अतः इन्हें न भगाएं। शराब और सुगंधित खाद्य पदार्थ हाथियों को आकर्षित करते हैं, अतः विशेष सावधानी रखें। घरों में महुआ फूल का भंडारण करके न रखा जाए। घरों में महुआ फूल रखने से हाथी घर की तरफ आकर्षित हो सकते हैं और मकान क्षति किए जाने की संभावना बन सकती है। अतः महुआ फूल का भंडारण घर से 200 मीटर की दूरी पर ही करें। यह जानकारी कार्यालय वन मंडलाधिकारी दक्षिण शहडोल वन मंडल जिला शहडोल की ओर से जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या वंदन। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है, शाम के 7 बजने वाले हैं। तो आइए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से और सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि श्री डोभाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की चार सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। अभी आप समाचार सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से, और अब वक्त है संदेशों का। श्रोताओं, आपके लिए एक जरूरी सूचना। कार्यालय वन मंडलाधिकारी दक्षिण शहडोल वन मंडल जिला शहडोल की ओर से, अगर आपके आसपास जंगली हाथी दिखाई देता है तो जंगली हाथी की फोटो और इनके साथ सेल्फी न लें, सावधान रहें। जंगली हाथी शोर शराबे से नाराज होते हैं, अतः हल्ला न करें। जिन मार्गों में हाथियों का आवागमन है उन मार्गों को अस्थायी रूप से विधिवत बंद कर लोगों को जागरूक करें। घर में शराब का निर्माण न करें और शराब का सेवन कर हाथी प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन न करें। जिन क्षेत्रों में हाथियों का विचरण है उन क्षेत्रों से संबंधित सभी शासकीय विभाग जैसे वन, पुलिस, बिजली, स्वास्थ्य, राजस्व को सूचित करें। वन अधिनियम के अधीन हाथियों को विशेष संरक्षण प्राप्त है। इन्हें किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने पर वन और पुलिस विभाग कार्यवाही कर सकते हैं। जब भी हाथियों का विचरण दिन में हो तो विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाथी दिन में आराम करते हैं और सताए जाने की दशा में इधर से उधर गुस्से से घूमते हैं, वे आक्रोशित हो सकते हैं। हाथियों के विचरण क्षेत्र में वनों में एकाकी घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान के पक्के मकानों जैसे पंचायत भवन, स्कूल आदि में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कराना चाहिए। स्कूलों में स्कूली बच्चों को हाथियों से बचाव के उपाय बताएं ताकि बच्चे बड़ों को जागरूक कर सकें। हाथियों को देखने जंगल न जाएं, न ही किसी को जाने दें। जंगल में आप हाथियों को देखने जाएंगे तो हाथी आपको देखने आपके घर तक आएंगे, अतः इससे बचने का उपाय है आप उन्हें देखने जंगल न जाएं। हाथियों और मनुष्य में अधिकांश टकराव जंगलों में ही होता है, अतः हाथियों की वनों में उपस्थिति के दौरान वनों में न जाएं। हाथियों को खाने पीने की वस्तुएं न दें, ना ही किसी को देने दें। शराब और शराबियों से जंगली हाथी आकर्षित होते हैं और उनके करीब आ सकते हैं, अतः सावधान रहें। हाथियों को भगाने के लिए फटाके न फोड़ें, हाथियों को भगाने से वे गुस्सा होकर और अधिक हानि पहुंचा सकते हैं। हाथियों को पत्थर आदि से न मारें। हाथियों का बदला लेने का स्वभाव होता है, बदला लेने के लिए मारने डांटने वालों को दूर तक ढूंढने जाते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। संपत्ति की हानि सरकार देती है, मगर जन हानि पर कहीं भी कोई भी सरकार मनुष्य को पुनः जीवन दान नहीं दे सकती, अतः हाथियों से दूर रहें, उन्हें रास्ता दें, स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित करें। हाथियों के विचरण क्षेत्र के 20 किलोमीटर की परिधि में विशेष रूप से सावधान रहें। हाथी भागने की दशा में 24 घंटे के अंदर हाथी 60 से 70 किलोमीटर दूर भी जा सकते हैं, अतः सावधान रहें। हाथियों के आने जाने और रहने की सूचना मोबाइल फोन, SMS, व्हाट्सएप, धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर, वाहनों में लाउडस्पीकर, कोटवार के माध्यम से करना चाहिए। यदि वन क्षेत्रों में वन्य प्राणी हाथी का मूवमेंट दिखाई देता है तो इन मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। श्री विनोद जाखड़, प्रशिक्षु भारतीय वन सेना अधिकारी, उप वन मंडलाधिकारी जैतपुर। फोन नंबर है 9424794433। श्री संतोष शुक्ला, सहायक वन संरक्षक, उप वन मंडलाधिकारी सुहागपुर। फोन नंबर है 9424794432। और श्री अंकुर तिवारी, वन क्षेत्रपाल, वन परिक्षेत्राधिकारी केशवाही। फोन नंबर है 8319034800। ये जानकारी कार्यालय वन मंडलाधिकारी दक्षिण शहडोल वन मंडल जिला शहडोल की ओर से जनहित में जा

0: ആകാശവാണി at 90.
1: शाम के 7:10 होने वाले हैं और अब वक्त है आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचारों को सुनने का।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी
2: फीस तो देखो
4: क्या हाल है क्या हुआ
3: फीस की टेंशन
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही
5: रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4,00,000 रुपए का नो कोलैटरल
4: वो कहाँ है
5: मिठाई
6: आरबीआई कहता है
7: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
8: यार सच बताऊं अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है इस बार तो लगवा ही देता हूँ जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई आप भी लगवा ही दो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in
9: फास्ट एक्सप्रेस के यात्री मोबाइल चार्ज करना
3: दिमाग चार्ज कर अपना
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
3: देखा
9: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
6: अब क्या करोगे
9: फ्री वाई फाई है ना
3: बुद्धू सुधर जा
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाई फाई
9: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
6: आरबीआई कहता है
7: करो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
10: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर कल उज्जैन में कार्यक्रमों में होंगे शामिल भोपाल की तीशा शर्मा मृत्यु मामले में आज दिल्ली एम्स टीम ने किया दोबारा पोस्टमार्टम और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी अधिकांश शहरों का तापमान 45 डिग्री के आसपास अब समाचार विस्तार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है इन एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा इन्हें न्यूज ऑन एयर और यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि IIT मद्रास का विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेगा और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता और सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेगा यह दल समग्र IT अवसंरचना की मजबूती लॉगिन प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता पहुंच प्रणाली भुगतान गेटवे की सटीकता और सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में सहायता करेगी विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की दोनों पक्षों ने भारत और अमरीका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार ऊर्जा मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के रूप में विशेष रूप से है
11: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं दूसरा हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है तीसरा हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते
12: These would be the principles with which we would approach that region.
10: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर 25 और 26 मई को उज्जैन में शिप्रा तट पर आयोजित परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्रद्धा, संस्कृति और जल संरक्षण के संदेश से जुड़े विविध आयोजन किए जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर 25 मई को प्रदेश भर में वहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रभात फेरिया, नदी एवं जलाशय परिक्रमा, साइकिल रैली, चुनरी अर्पण, पूजन तथा जल और नदियों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएगी। वहीं भारत भवन भोपाल में सदा निरा का आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत ग्राम खेरवा टोला जिला उमरिया में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु और कुछ नागरिकों के घायल होने पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हमले में मृतक के परिजन को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। घायलों को निशुल्क उपचार और आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
12: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
10: समाचारों में आपका स्वागत है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में त्रिषा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार ने मेडिकल टीम से अनुरोध किया था कि वे एक बहुविषयक फॉरेंसिक, पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल दृष्टिकोण अपनाएं और उनकी उन चिंताओं की स्वतंत्र रूप से जांच करें। गौरतलब है कि 33 वर्षीय त्रिषा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिषा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पंजीकृत अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षा प्रतिदिन 4 शिफ्टों में होगी। सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के लिए भोपाल में केंद्र ION डिजिटल जोन, प्रेस्टीज, श्री जयराम एजुकेशन सोसाइटी, कोकता बायपास रायसेन रोड और ION डिजिटल जोन RGPM सनखेड़ी दानिशकुंज कोलार रोड पर स्थित है। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को 11 मई को अधिसूचित किया गया था और यह इसी वर्ष जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। अगले 4 दिनों तक लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं से राहत मिलने की संभावना नहीं है। कल से शुरू हो रहे नौतपा के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं शहडोल जिले में झुलसा देने वाली गर्मी का असर जल स्रोतों पर भी दिखने लगा है। जिले का सबसे बड़ा बाण सागर बांध 56% तक खाली हो चुका है। छोटे बांधों की स्थिति और भी चिंताजनक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से जारी है। उपवन संरक्षक अनादि बुधुलिया ने बताया कि अब तक कई क्षेत्रों में लक्ष्य का 50% से अधिक संग्रहण पूरा हो चुका है। नर्मदापुरम जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सबसे पहले सबसे दूर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दूरस्थ जनजातीय ग्रामों तक पहुंचकर आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं कुछ संदेश।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
2: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
4: हर लेन देन अब है आसान।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
2: संदेशों को सुनने के बाद अब आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा के लिए।

0: और अब लीजिए प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा चौरे। भैया बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस समय खेतों में सही प्रबंधन बेहद जरूरी हो जाता है। पानी की बचत, फसलों की सुरक्षा, पशुपालन, सब्जियों की खेती, कीट एवं रोग नियंत्रण और आगामी खरीफ फसलों की तैयारी, ये सभी विषय किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और इसीलिए हमारे आज के हेलोग्राम सभा का विषय हमने रखा है ग्रीष्म ऋतु के समसामयिक कृषि कार्य। और आज आपसे बातचीत करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर के नेमा जी, जो कि प्रमुख वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक है। आपको बता दें डॉक्टर साहब फसल और खेती के बहुत जानकार हैं और इस क्षेत्र में काफी लंबा अनुभव रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार किसान भाइयों और राधा जी नमस्कार।
0: नमस्कार सर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम होता है, जहां टेलीफोन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे विषय विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ग्रीष्म ऋतु के समसामयिक कृषि कार्यों से संबंधित आपके जो भी सवाल हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। डॉक्टर के नेमा जी हमारे साथ हैं। वैसे तो हमारे किसान भाई हमारा टेलीफोन नंबर जानते ही हैं, लेकिन जो नए किसान श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि भोपाल का एसटीडी कोड है 0755 और हमारे फोन नंबर है 2669।

0: शून्य दो और 2660903 इन नंबरों पर आप हमें फोन करें और आज के विशेषज्ञ से सीधे बातचीत करें। और हमें संकेत मिल रहा है कि हमारे आज के पहले कॉलर फोन लाइन पर हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में।
1: जी नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते जी, अपना नाम बताएं, स्थान भी बताएं, कहां से बोल रहे हैं
1: आप? मैं जगत सिंह चार ग्राम पिपलिया वराई तहसील बेगवान जिला रायसेन से बोल रहा हूं मैडम जी।
0: रायसेन से बोल रहे हैं जगत जी, बहुत बहुत स्वागत है हेलो ग्राम सभा में। जी बताएं क्या सवाल है आपका?
1: जी ये बोल रहा हूँ, जब अभी मका बोना, जैसे मक बोना है
0: जी, हाँ।
1: कौन सा बीज है कि जो 2-3 महीना में आ जावे? अच्छो
2: मक्का आप बोना चाहते हैं, देखिए ये इसमें आप लिख लीजिए अर्ली JM 8 और JM 12
1: जी,
2: और एक किस्म है भीमा
1: जी,
2: एक है जवाहर हाइब्रिड 2
1: जी।
2: ये इसमें से कोई भी किस्म आप चुन सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको ये रखना पड़ेगी कि आप अगर अकेले बोने वाले हैं, आसपास कोई किसान नहीं है, तो थोड़ा सा चौकीदारी की व्यवस्था आपको करना पड़ेगी, क्योंकि जानवरों से नुकसान इसमें ज़्यादा होता है। और इसमें एक इल्ली जो है फाल वर्म कहलाता है, वो एक इल्ली का आक्रमण जो है इसमें देखा गया है, तो कृपया उसका ध्यान रखें कि उस इल्ली के नियंत्रण के लिए आप तैयार रहें।
1: जी सर
2: जी
1: जी,
0: तो जगत जी को अपने सवाल
1: मेरे
0: जी जी कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप?
1: जी विपिन भाई साहब जी हैं, जहां भी हुए मुझे कॉल कर ले मेरा नाम।
0: चलिए लगता है कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में कनेक्शन हट गया अपना
2: जी।
0: सर अभी क्योंकि हम जैसे बात कर रहे हैं, मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही
2: जी,
0: है
2: जी।
0: तो और अब अगर फसलों की सिंचाई की बात करें या नॉर्मल हम पेड़ पौधों की सिंचाई की बात भी करें, तो किस समय करना चाहिए, कौन सा समय सबसे अच्छा होता है, लाभकारी होता है?
2: समय तो ऐसा है, ये जमीन आपकी कैसी है उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो हमारे किसान भाई कृपया ये ध्यान रखें कि हल्की जमीन है के मोटे की जमीन है। मोटे की जमीन से मतलब है कि काली अगर जमीन है तो उसके हिसाब से उनको अपनी जमीन का ध्यान रखना चाहिए। हल्की जमीन है तो उसमें 7-10 दिन के अंतराल पे उनको सिंचाई करना है, और अगर काली मिट्टी है तो उसमें थोड़ा सा अंतराल ज़्यादा हो सकता है, लेकिन समय समय पर उनको खेत का भ्रमण जरूर करना पड़ेगा, तभी उनको मालूम चलेगा कि हमें सिंचाई की आवश्यकता कब है।
0: बिल्कुल, यानी कि जमीन पर निर्भर करता है, हल्की पर अलग और काली मिट्टी पर अलग जी। तो हमारे साथ सर एक और कॉलर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, एक और कॉलर है उनसे मिलते हैं, जानते हैं। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
3: हेलो
2: हेलो
0: हेलो जी, नाम बताएं अपना, कहां से बोल रहे हैं आप? आवाज मिल रही है आपको, आप सुन पा रहे हैं हमें?
3: हेलो
0: जी, नाम बताएं अपना।
3: संजू हरवार कुतरिया करकट जिला सागर से बोल रहे दीदी जी।
0: जी संजू भैया, राम राम।
3: राम राम दीदी जी, राधा दीदी जी, नमस्ते।
0: नमस्ते भैया, नमस्ते, क्या हाल चाल?
3: ठीक है, अब गर्मी पड़ रही, सब आगे की तैयारी की उर्दा की किशन जान में कौन
2: जोर से बोल
0: जी। संजू जी थोड़ा सा तेज बोलेंगे, आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी।
3: उर्दे की किस्म जानना चाहते हैं, उर्दा लगाना है,
0: उड़दा लगाना चाह रहे हैं, उड़द लगाना चाह रहे हैं,
2: उड़द लगाना चाह रहे हैं। हाँ तो ये तो बरसात के लिए है, उड़द आप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जो किस्म है उसका सही चुनाव आपको करना पड़ेगा। उसके लिए PU 31 करके एक किस्म है, प्रताप उड़द है, JU 2 है, JU 3 है, ये अपने यहाँ की वैरायटी है, JU 2 JU 3 तो, और इंदिरा उड़द 1 करके है, ठीक है। और एक किस्म और नोट कर लीजिए, TJU 130, ये हमारे क्षेत्रों के लिए ये उड़द की किस्में बहुत अच्छी हैं। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे
0: संजू जी, कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप?
3: हाँ सोयाबीन की भी जानकारी चाहे सोयाबीन भी लगाना है।
0: सोयाबीन भी लगाना चाह रहे हैं।
2: हाँ, आपकी जो मिट्टी मिट्टी की हालत है वो कैसी है?
3: हालत ठीक है, ना ही पानी भरता है ना ही कुछ
2: नहीं। हल्की हल्की कम गहरी है, मध्यम दोमट है के गहरी काली है?
3: गहरी काली है सर।
2: गहरी काली है तो उसके लिए पी के 416, पूसा 16, पूसा 20 और JS 8021। ये JS 8021 जो है ये बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका आप चयन कर सकते हैं। ठीक है,
3: महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, जी। संजू भैया आपका भी ग्राम सभा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे कॉलर बहुत जागरूक हैं और अपने सजीव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से अपनी फसलों से जुड़ी जानकारी लगातार ले रहे हैं। और सर हम अभी बात कर रहे थे कि की सिंचाई की बात कर रहे थे, अब हम जानना चाहेंगे कि अगर हम खेत को लंबे समय तक नमी बनाए रखना चाहते हैं कि नमी बनी रहे, तो इसके लिए हमारे जो किसान भाई हैं वो कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं?
2: लंबे समय के लिए अगर हमें नमी की आवश्यकता है खेत में बनाए रखना है
0: जी,
2: तो सबसे बढ़िया साधन तो ये है कि पलवार जो है पलवार करते हैं तो उससे छाया बनी रहती है, तो उससे क्या है कि वाष्पीकरण जो है हमारे खेत से नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जमीन की तैयारी करके पाटा लगा के रख दिया जाए
0: जी,
2: तो उससे भी जमीन से जो है जल जल्दी उड़ेगा नहीं
0: जी,
2: सूर्य की गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा पड़ती है
0: जी, जी।
2: तो ये मतलब उपाय है। तीसरी बात ये है कि जैविक खाद का और वर्मी कंपोस्ट का हमारे किसान भाइयों को लगातार उपयोग अगर वो करते हैं तो जल धारण क्षमता जो है वो हमारी भूमि की बढ़ जाती है, और हर 3 साल में अगर गहरी जुताई का जो है प्रयास करते हैं हमारे किसान भाई तो उससे भी जल धारण क्षमता हमारी जमीन की ज्यादा हो सकती है।
0: बिल्कुल, तो किसान भाइयों याद रखें आपकी आपको पलवार लगाना है, पाटा का ध्यान रखना है, उसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज सर ने कही कि जैविक खेती करना है और वर्मी कंपोस्ट का आपको इस्तेमाल करना है, और हर 3 साल में गहरी जुताई जरूर करना है अपने खेत की। बिल्कुल, और हमें संकेत मिल रहा है, एक और कॉलर हमारे साथ है जी। नमस्कार।
4: हेलो मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
4: अशोक पटेल बात कर रहे हैं, श्याम नगर बेगमगंज में।
0: अशोक पटेल, कहाँ से बोल रहे हैं अशोक जी आप?
4: श्याम नगर बेगमगंज मैडम।
0: बेगमगंज से
4: जी मैडम।
0: जी जी, बताएं अशोक जी क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप सर से?
4: मैडम सर से ये पूछना चाह रहे हैं, अभी गर्मियों में जो बेल वर्गीय फसलें लगी हैं मैम, तो इनमें रस चूसक कीड़ों की बहुत समस्या आ रही, तो इसके लिए जैविक निदान में क्या रहेगा सबसे अच्छा
0: जी,
4: जो अपने जैसे विभाग पर वो चीज में मिल जाए?
0: जी जी
4: जी
0: सर, अशोक जी पूछना चाह रहे हैं कि गर्मियों में ये जो कीट लग रहे हैं तो इनकी बहुत समस्या देखने को मिल रही है, तो इसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं?
2: गर्मियों में जो कीट लगते हैं तो उसमें कौन सा इल्ली लग रही है क्या, रस चूसक कीट?
0: अशोक जी थोड़ा सा आप आवाज आपकी बहुत आवाज बढ़ा के थोड़ा सा बोले, बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी।
4: अब अच्छी आ रही मैम?
0: थोड़ा नेटवर्क में है आप?
4: जी मैम नेटवर्क में तो हैं हम
0: जी। हाँ बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं
2: आप? आपके यहाँ ये बताइए कि रस चूसक कीड़े हैं, सफेद मक्खी वगैरह है कि इल्ली वगैरह है, क्या है?
4: सर वो क्या है कि पत्ते ऑटोमेटिक कुकड़ जाते हैं ऊपर से,
2: पत्ते सिकुड़ रहे हैं। ठीक है, पत्ते सिकुड़ रहे हैं तो उसके लिए देखिए ऐसा है कि इमीडा क्लोप्रिड कल के एक रसायन आता है
4: जी सर,
2: क्योंकि चूंकि कीट आ चुका है तो उसके लिए अपन नीम तेल का इस्तेमाल अभी नहीं कर सकते हैं, अगर शुरुआती अवस्था होती तो उसमें नीम तेल का अपन छिड़काव कर सकते थे, लेकिन अब जो है आपको इमीडा क्लोप्रिड नाम की जो इंसेक्टीसाइड है उसका जो है प्रयोग आप कर लीजिए तो उसमें आपका जो है फायदा हो जाएगा जी।
4: अच्छा
0: जी, तो अशोक जी आपको आपकी जानकारी मिल गई होगी, और सर अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर सब्जियों पे अगर हम आते हैं तो कौन-कौन सी सब्जियां हैं जिनकी खेती किसानों के लिए अधिक लाभकारी हो सकती है इस मौसम को देखते हुए?
2: इस मौसम में वैसे हमारे किसान भाइयों ने बेलदार सब्जियां जो है अपने खेतों में लगा रखी हैं और कहीं-कहीं पर क्या बोलते हैं बरबटी जो है भिंडी है इसका भी हमारे किसान भाई जो है उस क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा मिलता है तो ये अभी हमारे किसान भाइयों ने फसलें लगा ली हैं
0: जी
2: और इसमें ही जैसे करेला वगैरह है कद्दू है लौकी है गिलकी है तोरई है तो ये सब्जियां जो है हमारे किसान भाइयों ने अभी लगा रखी है।
0: तो ये जो सब्जियां लगा रखी हैं इनकी वो देखभाल कैसे करें कि ज्यादा इनको मुनाफा मिले?
2: इसमें देखभाल उनको ये करना है सबसे बड़ी समस्या जो है कीड़ों की आती है जैसे अभी इनने बताया था कि सिकुड़ रही हैं
0: जी
2: तो इसी तरह से कई किस्म के कीट जो होते हैं वो हमारी इन सब्जियों को नुकसान पहुंचाते हैं और एक फल मक्खी होती है तो फल मक्खी के कारण वो अपने अंडे जो देती है फलों में तो उससे टेढ़ी मेढ़े जो है फल हो जाते हैं और बाजार मूल्य जो है कम मिल पाता है हमारे किसान भाइयों को तो उसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई इमिडाक्लोपिड नाम का जो है वो दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी बात ये है कि उसके लिए जगह जगह अपन एक घोल बनाते हैं गुड़ डालते हैं और थायमिथाक्सम करके एक इंसेक्टिसाइड है वो डालते हैं तो इसका घोल बना के और उसमें थोड़ा सा अपन डाल सकते हैं सिरका
0: जी जी
2: उसके कटोरे जगह जगह सब्जियों के खेत में अपन टांग देते हैं तो ये जो फ्रूट फ्लाई है फल मक्खी है ये उसमें आके डूब के मर जाती है तो उससे उनका नियंत्रण हो जाता है।
0: जी जी जी बिल्कुल सर। तो आपने जैसा कि बताया कि बेलदार सब्जियां भी लगी हुई हैं उनका हमको निराकरण करने के लिए आपने जो दवाइयां बताई हैं उनका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी नमस्कार।
5: जी मैं आपका बहुत पुराना श्रोता सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
0: राजेश नेमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा में।
5: जी और मेरा सवाल ये है
0: जी
5: कि ग्रीष्मकालीन समय में अक्सर खेतों में आग वगैरह लग जाती है।
0: आग लग तो जाती है खेतों में जी
5: खाली
0: जी पूरा करें क्या
5: पड़ता है क्या
0: जी पूरा फिर से दोहराएं अपना सवाल।
5: मेरा सवाल ये है कि ग्रीष्मकालीन समय में खेतों में खाली खेतों में भी कई बार आग लग जाती है।
0: खाली खेतों में भी कई बार आग लग जाती है। हाँ
5: तो क्या इसके उर्वरा शक्ति पर कुछ प्रभाव पड़ता है मिट्टी खराब होती है क्या उससे?
0: राजेश नेमा जी जानना चाह रहे हैं सर कि जो ये खाली खेतों में भी कई बार आग लग जाती है तो क्या हमारे उर्वरा शक्ति पे तब भी असर पड़ता है?
2: जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए आग लगती तो नहीं है ये किसान जो है आग जानबूझ के लगा देते हैं कि ताकि नरवाई के कारण उनको कोई दिक्कत नहीं हो। आग नहीं लगाना चाहिए और अगर आग लग जाती है तो उससे हमारी 10-15 वर्षों की मेहनत पे पानी फिर जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे मिट्टी से अपन ईंट बनाते हैं भट्टे में रख देते हैं तो उस ईंट के चूरे में क्या कोई चीज उत्पन्न की जा सकती है? नहीं की जा सकती। जल धारण क्षमता भी अगर पानी डालेंगे तो पूरा निकल के उसमें से निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है मिट्टी की भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। दूसरी बात यह है कि जल उसमें रुकता नहीं है। वो तीसरी बात यह है कि जितने भी जैविक जो कीट रहते हैं उसमें जीवाणु रहते हैं ये जीवाणु जो है मर जाते हैं और इस तरह हमारे उत्पादन के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो 15-20 सालों की जो मेहनत है आपने मिट्टी को बनाया है देसी खाद दिया है वर्मी कंपोस्ट दिया है और फर्टिलाइजर दिया है तो वो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। उसका बड़ा विपरीत प्रभाव हमारे जो भूमि है उसके ऊपर पड़ता है।
0: जी जी तो यानी कि किसान भाइयों को अपनी खुद की मेहनत पे पानी नहीं फेरना है नरवाई नहीं जलाना है।
2: इसके लिए तो आजकल सरकार ने प्रतिबंध भी लगा दिया है और किसानों को उसमें जेल भी हो सकती है जुर्माना भी हो सकता है और सैटेलाइट के माध्यम से आपके खेत का फोटो सरकार के पास पहुंच जाता है तो इस चक्कर में नहीं रहे किसान के कोई देख नहीं रहा है। हाँ पूरा देख रहे हैं और किसानों को पिछले साल सजा भी हो चुकी है और जुर्माना भी हो चुका है
0: बिल्कुल और हम तो ये कहेंगे कि किसानों को जुर्माने ये सब तो बात की बात है आप खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं आप अपने खेतों
2: अपना नुकसान
0: उर्वरा शक्ति खत्म कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल एक और कॉलर लाइन पर है
2: हां
0: जी नमस्कार
6: नमस्कार महोदया मैं ग्राम परसमा जिला मुरैना से हरिलाल सिंह तोमर बोल रहा हूं

0: सर नाम अपना दोहराएं प्लीज।
1: हरि विलास सिंह तोमर
0: जी। हरि विलास जी स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद
0: जी। बताए क्या सवाल है आपका।
1: मेरा सवाल विशेषज्ञ महोदय से है कि चूंकि हरी खाद का प्रयोग भी जैविक विधि में ही आता है, तो मैं जानना चाहता हूँ हरी खाद के प्रयोग के लिए कौन कौन सी फसलें बो दी जाए।
0: हरी खाद के प्रयोग के लिए कौन कौन सी फसलें बोई जाए, ये पूछना चाह रहे हैं आप।
1: जी
0: जी।
2: हरी खाद के लिए वैसे तो जो मूंग उड़द है इसको भी आप बो सकते हैं, जैसे ही उसके फूल आने लगते हैं तो उसको अपन बखर चला के मिट्टी में मिला देते हैं, और नहीं तो ढेंचा और सनई जो है इसका भी अपन बोनी करके और उसको भी मिट्टी में मिला देते हैं।
1: सनई और ढेंचा इसकी समय कब है, कब बोने का बीज अगर तैयारी करें खेत की?
0: समय जानना चाह रहे हैं, सही समय कौन सा होगा बोने का, तैयारी करने का।
2: हाँ उसके लिए आप अभी अभी चाहें तो अभी बोनी कर सकते हैं, अगर आपके पास में पानी की मात्रा है सही तो आप अभी उसके कर लीजिए, क्योंकि अपने यहाँ पर जो है 16 से 20 जून के बीच में पानी आने का समय रहता है।
1: जी
0: जी। तो हरि विलास जी उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर के नेमा जी अब आते हैं ग्रीष्म ऋतु के समसामयिक कृषि कार्यों पे, कौन कौन से वो कार्य हैं जो हमारे किसान भाइयों को शुरू कर देने चाहिए, आवश्यक तौर पर शुरू कर देने चाहिए।
2: जैसे ही अपनी फसल कटती है तो सबसे पहला तो अपन को उपाय ये करना है कि मिट्टी की जांच वो करवा लें, ताकि खरीफ में आपको खाद वगैरह जो है फर्टिलाइजर कितनी अपनी फसलों में देना है तो उससे ये तय हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ग्रीष्म ऋतु में जो जुताई गहरी जुताई करते हैं मिट्टी पलटने वाले हल से, वो जरूर हर 3 साल में हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए।
0: सर बीच में आपको रोकना चाहेंगे, हम अपनी बात जारी रखेंगे। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
3: हेलो।
0: हेलो नमस्कार, नाम बताएं अपना।
3: अरे दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते।
3: हम भाग चंद्र साहू जी बोल रहे हैं, गोकुल ग्राम परसों, तहसील मालसोन, जिला सागर।
0: भरत सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम में, बताएं क्या सवाल है आपका।
3: दीदी हम ये पूछना चाहते हैं मध्य प्रदेश में अभी उड़द की जैसे कमी बहुत देखने में आ रही है, तो ऐसी कौन सी वैरायटी है जो कि अपन हम किसान भाई लगा सकते हैं, अच्छी किस्म का बीज हो।
0: उड़द की सबसे अच्छी किस्म के बारे में आप जानना चाह रहे हैं?
3: हाँ हाँ बिल्कुल यही जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब आपको नमस्कार कर रहे हैं।
2: भैया नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। और आपका प्रश्न जो है ये आप पेन कागज लेके बैठे हो तो इंदिरा उड़द एक,
3: अच्छा अच्छा
2: ठीक है, JU2 और JU3, JU2 और JU3, इंदिरा उड़द एक और TU31। हाँ और TJU 130। एक प्रताप उड़द भी अच्छी किस्म है, तो ये हमारे प्रदेश के लिए ये अच्छी किस्में हैं, तो अपने प्रदेश के हिसाब से ही मैंने आपको ये किस्में बताई हैं, तो
3: बिल्कुल
2: इनमें से कोई भी आप उपलब्ध हो उसको लगाइए।
3: बिल्कुल डॉक्टर साहब
0: जी
2: जी।
0: तो भरत भैया को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब जैसे अभी अपन
2: बोल रहे हैं,
0: कुछ और पूछना चाह रहे हैं भरत भैया आप?
3: नहीं भागचंद्र साहू जी।
0: अच्छा भागचंद्र साहू जी, जी माफ कीजिएगा, भागचंद्र बहुत माफ कीजिएगा जी। डॉक्टर साहब अभी हम क्योंकि बीज चयन की बात कर रहे थे, तो इस समय किसानों को किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो बीज का चयन कर रहे हैं?
2: इस समय सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो किस्म आप 8-10 साल से लगा रहे हैं उसको पहली दफा में, मतलब ये है कि उसको आप बदल दीजिए, उसके जगह जो अच्छी किस्म है उसका चयन करें। दूसरी चीज ये है कि एक ही फसल पे ना जाएं, एक ही फसल नहीं लेना है, 2-3 फसलें लेना है। अगर आपकी मजबूरी है कि एक ही फसल लेना है तो उस फसल की 2-3 किस्मों का चयन करें, जैसे सोयाबीन बोने वाले हैं तो उसकी 2-3 किस्में लीजिए, उड़द है तो उड़द की 2-3 किस्में लीजिए, ऐसा मूंग है उसकी 2-3 किस्में

0: अच्छी पैदावार तो कौन सा सोयाबीन ले में?
1: गुड्डू भैया पूछना चाह रहे हैं सोयाबीन की कौन सी वो किस्म लें जो कम समय में जल्दी से तैयार हो जाए।
2: हाँ, शीघ्र पकने वाली आपको किस्म चाहिए है तो शीघ्र पकने वाली आपको किस्म हम बता दे रहे हैं कि ये 90 से 85 से 98 दिन की अवधि की आपको बता रहे हैं। JS 71-5
0: जी,
2: JS 335 ये तो पुरानी वैरायटी हो गई है, इसको मत लगाइए। JS 90-41
0: जी,
2: JS 93-05
0: जी,
2: और एक इंदौर की किस्म है NRC 7 और JS 95-60। ये किस्में जो है ये कम दिन की है, 85 से 98 दिन में ये पक के तैयार हो जाती हैं। और इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। इसमें दो तीन किस्में ऐसी भी हैं कि अगर पानी एक दो दिन रुका भी रहता है तो उससे अपनी फसल को नुकसान नहीं होगा।
1: बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा सजीव इन फोन इन कार्यक्रम है जहां आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे विषय विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। और हमारा जो आज का विषय है वो है ग्रीष्म ऋतु के समसामयिक कृषि कार्य। तो अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो हमारे विशेषज्ञ KK नेमा जी हमारे साथ हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। हमारे किसान भाई हमारे टेलीफोन नंबर जानते ही हैं, लेकिन जो भी किसान श्रोता जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि भोपाल का STD कोड है 0755 और हमारे फोन नंबर है 2660902 और 2660903। और हमें संकेत मिल रहा है एक और फोन लाइन पर, एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी नमस्कार।
3: जी मैं उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ, पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से।
1: उमा शंकर जी पिपरिया से। जी बताएं क्या सवाल है आपका?
3: मैम मुझे तिली की किस्में जानना है सर से, जो जल्दी भी आ जाए और अच्छे से भी मिल जाए फसल हमें।
1: जी उमा शंकर जी, तिली की किस्में तिल की किस्में जानना चाह रहे हैं जो जल्दी से आ जाए।
2: तिल की किस्म भैया पेन कागज है
3: जी?
2: हाँ लिखिए आप TKG 21।
3: मैं लिख रहा हूँ
2: TKG 22
3: जी,
2: JT 7 JT और Kanchan 28 और Kanchan 32
3: जी।
2: ये जो तीन चार किस्में मैंने बताई हैं TKG 21 TKG 22 TKG 7 Kanchan 28 और Kanchan 32। इन किस्मों में से कोई भी आप तिल की किस्म प्राप्त करें और उसको लगाइए। और सागर, सागर अगर जा सकते हैं तो सागर कृषि विज्ञान केंद्र से भी आपको तिल की अच्छी किस्में मिल सकती है।
3: जी सर एक प्रश्न और था, वो भटा लगाए हैं सर उसमें सफेद सफेद कीड़े लग रहे हैं उसके लिए?
2: हाँ भटा लगाए हैं सफेद कीड़े लग रहे हैं तो उसमें अब चूंकि थोड़ी सी देर तो आपको हो गई है लेकिन फिर भी आप उसमें थायामिथाक्सम
3: जी जी
2: है ना, थायामिथाक्सम का स्प्रे करिए या इमीडाक्लोप्रिड
3: जी,
2: इमीडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करिए। 100 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के मान से लगता है ये, इसका आप स्प्रे करिए। और चूंकि ये गर्मी का मौसम है तो ध्यान ये रखें कि या तो सुबह के शाम स्प्रे किया जाए या शाम के टाइम स्प्रे किया जाए। दोपहर में जहां तक बने दोपहर में स्प्रे अपन को छिड़काव या भुरकाव नहीं करना है।
3: जी सर,
2: जी
3: सर धन्यवाद। ओके सर
1: जी। डॉक्टर साहब, ग्रीष्म ऋतु की फसल से संबंधित कोई सलाह या जानकारी जो हमसे छूट गई हो और किसान भाइयों के लिए जानना जरूरी हो?
2: हमारे किसान भाई सतत निगरानी करते रहें खेतों की, और सबसे पहले अगर कोई छिड़काव करना है तो नीम तेल का जो है छिड़काव हमारे किसान भाई करें।
1: जी जी, तो किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि नीम तेल का छिड़काव वो कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे साथ है डॉक्टर KK नेमा जी हैं जिनको जिन्होंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी मिल गए हैं। तो किसान साथियों याद रखिए, सही जानकारी और समय पर किए गए कृषि कार्य ही फसल को मजबूत

0: बनाते हैं और हमें अच्छी पैदावार दिलाते हैं, इसलिए हमें अभी से कदम उठाने होंगे, है ना। और उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी है आपके खेत और फसलों दोनों के लिए बेहद काम आई होगी, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ सवाल जवाब का नहीं है, किसानों की अपनी ग्राम सभा है जहां हर सवाल और हर आवाज अपने आप में मायने रखती है। सर, जाते जाते एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो भी महत्वपूर्ण कीट और रोग, क्योंकि अक्सर हमारे कॉलर पूछ रहे हैं, तो इनसे बचाव करने के लिए क्या एक छोटा सा कोई आप टिप्स देना चाहें, कोई सलाह देना चाहें?
1: इससे देखिए, बचाव करने का तो ये है कि स्वस्थ बीज का अगर और स्वस्थ खेती अगर करते हैं हमारे किसान भाई, तो उनको कीट और रोग जो है वो मतलब परेशान नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया कि ग्रीष्म ऋतु की हर 3 साल में जुताई करना है, तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का। और दूसरा ये है कि शुरुआती अवस्था में जैविक कीटनाशक जो हमारे किसान भाई तैयार करते हैं उनका प्रयोग किया जाए, NPB का प्रयोग करें, BT का प्रयोग करें, बेसिलस थुरिंजियंसिस का, ये जैविक कंट्रोल इनसे होता है, रासायनिक पे पहले नहीं जाना है।
0: जी जी, तो किसान साथियों आपको जैविक तरीकों को अपनाना है, डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है। तो धन्यवाद सभी श्रोताओं का जिन्होंने हमें फोन किया या करने की कोशिश कर रहे थे। आभार डॉक्टर के नेमा जी आपका भी, आप यहाँ आए और इतना अमूल्य समय हमें दिया, किसानों को आपने इतना अपना समय दिया और उनके सभी सवालों के जवाब आपने दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: किसान भाइयों का, आप सब लोगों का भी नमस्कार और धन्यवाद।
0: बिल्कुल किसान भाइयों, ये था हमारा आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जिसमें हमने विषय रखा था ग्रीष्म ऋतु के समसामयिक कृषि कार्य। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ थे डॉक्टर के नेमा जी। कार्यक्रम का संयोजन किया था चंद्रशेखर शर्मा जी ने, कर्तव्यस्थ अधिकारी थी बबीता भंडारी, और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया था राजू वासे और रेणु टोपो ने। उद्घोष के रूप में हमारे साथ थे विजयकांत नायक जी, और सूत्रधार के रूप में आपके साथ थी मैं यानी राधा चौरे। आप दे आ गया, नमस्कार, राम राम।

0: अभी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
3: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
2: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
3: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है और 1 जुलाई से इस अधिनियम का कार्यान्वयन होने जा रहा है। यह अधिनियम भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और ग्रामीण रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में यह एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि इस गारंटी फ्रेमवर्क जो होता है रूरल एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें पहले एमजी नरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हमारे श्रमिक भाई बहनों को मिलता था जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अब वह गारंटी जो है वह 100 से बढ़कर जो है 125 होने जा रही है। सो 125 दिन का रोजगार हर एक वित्तीय वर्ष में इन ग्रामीण परिवारों को देने की गारंटी जो है, यह एक वैधानिक गारंटी है जो इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरे प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम कहते हैं कि गारंटी है, गारंटी का मतलब ही यह होता है कि अगर गारंटी फुलफिल नहीं होती तो कुछ दिया जाता है। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर 15 दिन के अंदर किसी श्रमिक को काम मांगने पर अगर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। अगर कोई श्रमिक भाई हमारा या बहन काम करती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके बैंक के खाते में सीधे मजदूरी पहुंच जाएगी और यह वेजेस का जो रेट होगा, मतलब मजदूरी दर जो होगा, वह भी पहले एमजी नरेगा के अंदर जितनी मजदूरी मिलती थी उससे ज्यादा होने की संभावना है। कुछ ही दिनों में भारत सरकार मजदूरी दर भी नोटिफाई करने वाली है, तो बेहतर मजदूरी मिलेगी और बेहतर गारंटी मिलेगी। अब मैं आती हूँ दूसरे प्रावधान की ओर, जो कि लोगों के श्रम को एक सम्मान देगा और गांवों के विकास को जो है चालना देगा। आपको पता है कि एक्ट के नाम में ही विकसित भारत है, तो काम ऐसे होंगे जिससे कि पंचायतों का विकास हो। विकसित ग्राम पंचायत प्लान की बात इस एक्ट में कही गई है। कोई भी ऐसे अनप्रोडक्टिव काम नहीं लिए जाएंगे, ऐसे काम लिए जाएंगे जिससे कि ग्रामीण एरिया का विकास हो और ऐसे काम लिए जाएंगे जिसमें आजीविका के भी कई अवसर उससे पैदा हो। से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाँव में कोई फूड प्रोसेसिंग का अगर कोई प्लांट लिया जाता है तो उससे और भी हमारे किसान भाई बहनों को आगे जाके आजीविका के अवसर उससे उपलब्ध हो सकते हैं। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं, लखपति दीदियां बन रही है उसमें से करोड़ों दीदियां, तो उनको भी आजीविका के कई साधन बनाने के लिए विकसित भारत जी राम जी के अंदर जो है वह काम लिए जा सकेंगे। 4 प्रकार के काम है मेनली। सबसे पहला, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं जल है तो कल है, वाटर सिक्योरिटी के काम जो है हमारे गाँव में बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमारा किसान भाई भी वहीं पर बसता है, तो जल सुरक्षा के काम हमारा कामों का पहला क्षेत्र है। दूसरे काम जो होंगे वो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे गाँव में अगर बुनियादी ढांचा रहेगा, बुनियादी अवसंरचना रहेगी, तभी हमारे किसान भाइयों को या फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकोनॉमी को भी चालना मिल सकती है, इसलिए कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यह एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। लाइवलीहुड रिलेटेड, जिसकी मैंने हल्की से अभी बात की, कि आजीविका मूलक गतिविधियां कई सारी करने के लिए विकसित भारत जी राम जी के एक्ट में प्रावधान है। और चौथा जो है, आपने देखा होगा सोनू जी, कई बार ये हो रहा है आजकल ज्यादा हो रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट जिसे कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं फ्रेंटली जो है फेस करना पड़ रहा है देश को, तो एक्सट्रीम वेदर से निपटने के लिए भी जो काम जरूरी है वह काम भी इसमें जो है लिए जाएंगे। तो एक तरीके से मैं अगर इसे समअप करना चाहूंगी तो विकसित भारत जयराम जी में श्रम भी है, उसका सम्मान भी है और उससे विकास की भी जो है एक इन्विसाज किया गया है। तो ऑल इन ऑल भारत देश के ग्रामीण एरिया के लिए विकसित भारत जयराम जी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विकसित भारत बनने की ओर जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहल है ऐसा मैं मानती हूँ।
2: जी बिल्कुल, ये आउटकम ओरिएंटेड है ये स्कीम और ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा बता रही है चार प्रायोरिटी एरियाज में इससे विकसित होगा। एक और चीज जो है कि सेंटर ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट रूल्स और उसमें उन्होंने पब्लिक फीडबैक मांगा है 20 जून तक की कोई भी सुझाव हो या कोई आपत्ति हो, तो ये भी एक बहुत ही डेमोक्रेटिक अप्रोच है सरकार का जिसमें वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं।
3: बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें बॉटम अप मतलब गांव के लोगों को क्या चाहिए यह गांव के लोगों से हमें पता चलना चाहिए, इसलिए जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स भी बनेंगे वो भी ग्राम सभा ही बनाएगी। तो जो आपने नियमों के बारे में पूछा कि अभी हमने 22 तारीख को 8 ऐसे नियम जो बने हैं विकसित भारत जयराम जी के अंतर्गत, उन नियमों को हमने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए वाइडर कंसल्टेशन के लिए जो है पब्लिक डोमेन में डाला है और हमारे भारत देश के ई गैजेट में भी वो पब्लिश हो चुके हैं। इसके माध्यम से हम फीडबैक मांगना चाह रहे हैं लोगों से, प्रैक्टिशनर से, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, जो श्रमिक इसमें काम कर रहे हैं उन भाई बहनों से, जो हमारे ग्राम रोजगार सहायक जो है जो कि यह योजना चलाने वाले हैं उनसे, तो ये वाइडर या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे एकेडमिशियंस हो या फिर जितना भी वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन इसमें हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका है टू इंश्योर कि ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो बहुत ही स्मूथली हो जाए ताकि हमें अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुधार इसमें मिल जाएं। तो 30 दिन तक यह रूल्स जो है पब्लिक डोमेन में रहेंगे और हम आपके इस कार्यक्रम के द्वारा मैं सभी से अपील करूंगी कि इन रूल्स के ऊपर आपके जो भी सुझाव होंगे वो हमने वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है और कई सारे बाकी मोड्स भी है जिससे कि आप हम तक पहुंच सकते हैं और आपके सुझाव हमें दे सकते हैं ताकि यह जो विकसित भारत जयराम जी है वो अपने एक होलिस्टिक रूप में लोगों के लिए बेहतर बने, यही हमारी इस अपेक्षा है।
2: बेहतर व्यवस्था की और सुचारू रूप से बदलाव हो और सभी जो मौजूदा कार्य चल रहे हैं वो विधिवत पूरे हो, रोजगार सृजन ट्रांजिशन पीरियड जो है खासकर जून में वो निरंतर बना रहे इस पर भी बल दिया जा रहा है, किस तरह की वित्तीय व्यवस्था या अन्य व्यवस्था की गई है?
3: सोनू जी बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है जिसे रिफॉर्म हम कहते हैं और यह एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, तो इस बदलाव के टाइम, इस रिफॉर्म के टाइम यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हितधारक है जो कि हमारे श्रमिक भाई बहन है उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जब ये ट्रांजिशन होता है, एमजी नरेगा यह स्कीम चल रही है पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से, तो इन 20 साल का यह जो एक चल रहा है उसको जब हम एक नए तंत्र में ट्रांजिशन करते हैं तो यह भारत सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी तरह की दिक्कत या किसी भी तरह की छोटे से जिसे फ्रिक्शन पॉइंट कहते हैं ये बिल्कुल भी हमारे श्रमिक भाई बहनों को उनका सामना ना करना पड़े। इसीलिए एक सुचारू और एक निर्बाध तरीके का एक ट्रांजिशन का प्लान भारत सरकार ने बनाया है जिससे कि हमें इंश्योर कर रहे हैं कि जो श्रमिक आज, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगी कि 30 जून तक एमजी नरेगा रहेगा, 1 जुलाई से विकसित भारत जयराम जी आ जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल ये देना चाहूंगी कि जो हमारा श्रमिक भाई अगर 30 तारीख को एक कार्य पर जा रहा है और वह कार्य अपूर्ण है, वो आगे भी चलता रहेगा, तो वह श्रमिक दूसरे दिन भी 1 जुलाई को भी जब विकसित भारत जयराम जी आ जाएगा तब भी बिना किसी दिक्कत के एमजी नरेगा का वह जो उसका जॉब कार्ड अभी उसके पास है उसी का सत्यापन हमने और रखा है, तो उसी जॉब कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हुए वह आगे भी कुछ दिनों तक विकसित भारत जयराम जी में निर्बाध तरीके से काम पा सकेगा। यह हमने केवल इसीलिए किया है, पीपल सेंट्रिक जो अप्रोच है प्रधानमंत्री जी का भी सिटीजन सेंट्रिक, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो जबकि ये ट्रांजिशन लाए अंडर विकसित भारत जयराम जी। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का ट्रांजिशन जो है वो भी स्मूथली मैनेज करने की कोशिश है, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है कि श्रमिक भाई को इस ट्रांजिशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए यह अपूर्ण काम भी जो है वो नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट करके हम उसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को जो है बिल्कुल सुचारू रूप से निर्बाध तरीके से एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूअसली मिलती रहे, रोजगार कंटिन्यूअसली मिलता रहे
2: और जो लंबित देनदारियां हैं उनका भी निपटारा सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए।
3: बिल्कुल सही बात कही। यह भी एक ट्रांजिशन का इम्पोर्टेंट पहलू है कि एमजी नरेगा में राज्यों की कुछ देनदारियां होती है जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। यह ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने पिछले दशक में 10-12 साल में जो है 8 से 10 लाख करोड़ का खर्चा जो है एमजी नरेगा पर किया है और कोविड में भी 1,11,000 करोड़ से ऊपर की बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार ने राज्यों को और श्रमिकों के खाते में पहुंचाई है। तो यह कमिटमेंट भारत सरकार की इसमें भी बनी रहेगी कि एमजी नरेगा में जितनी देनदारियां हैं उनका भी सुचारू रूप से जो है सेटलमेंट किया जाएगा। और इस वर्ष विकसित भारत जीराम जी में अगर आप देखें सोनू जी, तो 95,692 करोड़ का एक बड़ा वित्तीय प्रावधान जो है विकसित भारत जीराम जी के लिए भारत सरकार ने किया है। तो इस 95,692 करोड़ दैट इज द बजट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलॉटेड। तो इस धनराशि का उपयोग भी जो है लोगों को 125 दिन के एनहांस गारंटी देने के लिए भी किया जाएगा।
2: जैसा आप कह रही थी कि किसानों को रूरल इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव है। एक जो पीक एग्रीकल्चर सीजन जो 60 दिन विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत काम नहीं होगा, इस एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बता सकती हैं?
3: सोनू जी, जब मैंने कहा कि हमारे किसान भाई ग्रामीण एरिया में ही बसते हैं और वहाँ वही के श्रमिकों को हम ये रोजगार 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, तब यह देखना बहुत जरूरी था कि क्या इस एनहांस गारंटी की वजह से हमारे जो किसान भाई हैं, ऑलमोस्ट 86% जो हमारे किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं जिन्हें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहा

0: Surgióme.
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी

0: Surgióme.
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
1: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
2: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है।
0: सुर्खियों में
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम डगर विकास की। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।
4: डगर विकास की, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम जल जीवन मिशन के कार्यों पर केंद्रित है। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

0: नमस्कार, आज हम उस अंचल की यात्रा पर हैं जहां रेवा की लहरें संस्कृति की कहानी सुनाती है। इंदौर की आधुनिकता से लेकर उज्जैन के महाकाल लोक तक और बुरहानपुर के ऐतिहासिक दर्रों से लेकर खंडवा के किशोरदा की यादों तक आज एक ही चर्चा है। वो चर्चा है जल जीवन मिशन की, एक ऐसा मिशन जिसने मालवा की पथरीली जमीन और निमाड़ की तपती धरती पर ठंडे पानी की फुहार पहुंचा दी। ये केवल पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं बल्कि करोड़ों सपनों में विश्वास का रंग भरने की कहानी है।
1: हर घर में नल लग गई है, साफ सुथरा पानी है, मशीन लगी है, उसके बाद दिक्कत खत्म हो गई।
2: अब ये यहाँ सुविधा होने से बहुत आनंद है गांव में।
3: अच्छा हो गया,
4: अभी तो अच्छी व्यवस्था होगी, अब नल चालू हो गए।
3: अभी नल लगी है तो अच्छा सुचेत करिए सरकार।
5: जो टंकी से नल का पानी हो गया ना।

0: बढ़िया हो गया,
1: नल लग गया।
2: जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो गौरव से सीना तब चौड़ा हो जाता है जब बुरहानपुर का नाम आता है। जुलाई सन 2022 में बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। यहाँ के 254 गांवों के सभी 1,01,000 से अधिक ग्रामीण घरों में अब नल से शुद्ध जल पहुँच रहा है। भले श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव PHED मध्य प्रदेश।
3: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश का सर्वप्रथम हर घर जल प्रमाणित होने का पुरस्कार दिया गया है। उसके लिए ना सिर्फ बुरहानपुर, पूरा मध्य प्रदेश काफ़ी प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि हर घर जल प्रमाणित होना अर्थात बुरहानपुर जिले के पूरे 1,00,000 से अधिक ग्रामीण घरों में हमने शुद्ध जल टोटी के माध्यम से उपलब्ध कराया है। और ये पूरे प्रदेश के लिए इसलिए भी बहुत ही शुभ होगा और लोगों को मोटिवेट करेगा, क्योंकि ये हमारे राज्य के अन्य जिलों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा कि आज बुरहानपुर को ये सम्मान मिला है, कल मध्य प्रदेश के अन्य जिलों को भी ये सम्मान प्राप्त होगा।
2: बुरहानपुर के तत्कालीन कलेक्टर प्रवीण सिंह,
4: जब हमने ये काम शुरू किया था तब हम लोग लगभग 37,000 कनेक्शन बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में थे, और आज हमने जो जितनी भी पात्र जनसंख्या है जो जेएजेएम के मापदंड को पूरा करती है, लगभग 1,00,000 कनेक्शन ऐसे लोगों को दिए हैं। और बुरहानपुर की सबसे विशेषता ये है कि इन जल जीवन मिशन की योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी भी हमने ग्राम पंचायतों में महिला स्वयं सहायता समूह को दी है। इससे न केवल लोगों को पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि ये जल जीवन मिशन एक तरह से ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तिकरण का जरिया भी बनेगा। और जल जीवन मिशन के साथ में हमने एक और महत्वपूर्ण भारत सरकार की स्कीम को जोड़ा है, वो है जल शक्ति मिशन। क्योंकि जल जीवन मिशन जो है वो जल शक्ति मिशन के बिना अधूरा है। जल शक्ति मिशन के तहत हम लोग जल जीवन मिशन के स्रोतों के चारों तरफ कुंडी, बावड़ियां, नए जल संरचनाओं का निर्माण, तालाब, पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, चेक डैम, स्टॉप डैम, गली प्लग और बहुत से जल संरक्षण की संस्थाओं पर काम कर रहे हैं। तो उससे ये जो जल शक्ति के तहत जो संस्थाएं बन रही है उससे जल जीवन मिशन का स्रोत में पानी बना रहेगा, और जब जल जीवन मिशन के स्रोत में पानी बना रहेगा तो उस पानी से हम गाँव में 12 महीने लोगों को पानी पिला पाएंगे। तो मेरा बुरहानपुर की जनता से अनुरोध रहेगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है, पूरे देश में इसका नाम हुआ है, तो हम लोग पानी को सहेज के रखें, धरती के अंदर पानी को वापस जाने दें, क्योंकि जितना पानी धरती माता में होगा उतना ही हम पानी वापस ले आ पाएंगे। तो हम लोग बहुत ही समझदारी से काम लेंगे और अच्छे से जल जीवन मिशन और जल शक्ति मिशन काम करेंगे।
2: लेकिन ये सफर आसान नहीं था। धार और अलीराजपुर की पहाड़ियों पर जहां रास्ता बनाना भी एक चुनौती थी, वहां पानी चढ़ाना नामुमकिन लगता था। यहां काम आए हमारे इंजीनियर्स और सोलर तकनीक। शुद्ध जल का अर्थ है बीमारियों से मुक्ति। आंकड़े बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में नल से जल पहुंचा है वहां जल जनित रोगों में 40% तक की कमी आई है। डॉक्टर योगेश शर्मा, जिला महामारी विशेषज्ञ, खंडवा।
5: पानी केवल जीवन नहीं बल्कि हर माँ की चिंता, हर बच्चे की मुस्कान और हर परिवार की सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी जरूरत है। एक समय था जब गांव की पगडंडियों पर सिर पर मटके उठाए महिलाएं दूर दूर तक पानी लेने जाती थी। कई बार वही पानी बीमारियों का कारण बन जाता था। लेकिन अब घर घर पहुंचा स्वच्छ जल केवल प्यास नहीं बुझा रहा बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नई उम्मीद भी जगा रहा है। स्वस्थ जीवन की पहली आवश्यकता है स्वच्छ जल। वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कुओं, तालाबों और हैंडपंपों पर निर्भर रहे, जहां कई बार दूषित पानी के कारण डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और हैजा जैसी बीमारियां फैलती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी को नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, अर्थात हर घर जल। अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल योजना ने इस स्थिति में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। घर घर नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचने का सबसे बड़ा लाभ लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। साफ पानी मिलने से जल जनित रोगों में कमी आई है, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। पहले महिलाओं और बच्चियों को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते थे। अब यह समय शिक्षा, रोजगार और परिवार की देखभाल में उपयोगी हो रहा है। श्रोताओं, स्वच्छ जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ समाज की नींव है। जब पानी साफ होता है तो भोजन स्वच्छ बनता है, हाथ धोने और साफ सफाई की आदतें बढ़ती हैं तथा संक्रमण का खतरा कम होता है। मिशन की शुरुआत के बाद से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में खंडवा जिले में जल जनित बीमारियां जैसे एक्यूट डायरियल डिसीज, टाइफाइड और कॉलरा या हैजा केसों की संख्या में बहुत बड़ी कमी दर्ज की गई है। एक्यूट डायरियल डिसीज के आउटब्रेक 2019 के पहले काफी संख्या में हुआ करते थे, जिसमें की लगभग 60% की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ में जो जॉइंडिस और टाइफाइड बीमारियां हैं, इनके आउटब्रेक वर्ष 2019 के बाद से जिले में एक भी आउटब्रेक रिपोर्ट नहीं किया गया है और पिछले दो वर्षों में कॉलरा या हैजा बीमारी का भी एक भी आउटब्रेक जिले में रिपोर्टेड नहीं है। इस प्रकार स्वच्छ जल उपलब्ध होने से जल जनित बीमारियों की संख्या और उनके आउटब्रेक में बड़ी कमी देखी गई है। नल से जल योजना सामाजिक और आर्थिक विकास का भी माध्यम बन रही है। स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम पानी की बर्बादी रोकें, जल स्रोतों को स्वच्छ रखें और इस योजना को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। स्वच्छ पानी की हर बूंद अब केवल सुविधा नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य का संदेश बन चुकी है। जब घर के आंगन में नल से साफ जल बहता है तब बच्चों की मुस्कान, माताओं की राहत और परिवार की खुशहाली भी साथ बहती है। आइए जल को सहेजें, स्वच्छता अपनाएं और स्वस्थ भारत के इस सपने को मिलकर साकार करें।
2: जल जीवन मिशन ने महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है। उज्जैन संभाग में हजारों जल सखियां आज इस मिशन की रीढ़ है।
0: सरकार तरफ से नल जल की योजना आई है तो अपने सभी ग्रामवासियों को सभी को साथ देना है और सभी का साथ चाहिए
1: कि हमारे वार्ड क्रमांक एक में जो हमारे को जल कर वसूलना था उसमें से वार्ड क्रमांक एक के 1200 रुपए आ गए हैं, वार्ड क्रमांक दो में 790 रुपए आ चुके हैं और वार्ड क्रमांक तीन में 2780 रुपए आ गए।
6: सभी को समझाइश दे रहे हैं कि जलकर अपने को जमा करना है जिससे अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। उनकी जो समस्या है उसके विषय में भी जो वो बताते हैं उसके निदान के लिए हम जलकर समिति को अवगत कराते हैं। जलकर समिति और हम साथ में जाकर के पानी को वेस्टेज नहीं जाने दे, इसके विषय में भी हम सभी बहनों को भी समझाते हैं, सभी भाइयों को भी समझाते हैं। पानी की बचत करना है, पानी का दुरुपयोग नहीं होने देना है, नल अगर पानी भर जाए तो बंद कर देना है, ऐसी समझाइश भी देते हैं जलकर समिति द्वारा।
7: जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिन भी गांवों में ये दिक्कत आ रही है, पहले से टंकी है या वाटर सप्लाई है और वहां पर जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर पानी पीने में समस्या आ रही है, पानी घर घर पहुंचने में समस्या आ रही है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई टंकी का निर्माण करेंगे यहां पर।

0: इंदौर और उज्जैन संभाग के हर घर से आती पानी की ये कलकल दरअसल आत्मनिर्भर भारत की धड़कन है। जहां कभी सूखे के कारण पलायन होता था, आज वहां हरियाली और मुस्कान है।
1: पहले हम कुएं से पानी पीते थे, पेट दर्द होने लग जाता था, बीमार होने लगते थे हम। नल जल का शुद्ध पानी पीने लग गए हैं, अब डॉक्टरी खर्च भी हमारा आधा हो गया है।
2: मजदूरी पहला सर जला तो भी नहीं था, पानी में दिन भर हो जाते, माने टाइम बहुत व्यस्त हो जाता पहले, और अब पानी हो गया तो नल चालू करो, पानी भरो और मजदूरी भी चले जाओ।
3: जब से घर घर नल से जल आ रहा है तब से बहुत ही खुशहाली आ गई है और पूरा परिवार मजदूरी पे जा पाता है और शुद्ध पानी मिल रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है।
0: इस मिशन का लक्ष्य था हर घर जल, जिसे मध्य प्रदेश के इन जिलों ने एक जन आंदोलन बना दिया। पर याद रखिए, ये नल की टोंटी से गिरता पानी केवल एक सुविधा नहीं, एक अमानत है जिसे हमें आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है। प्रशासन ने रास्ता बनाया है, अब उस रास्ते पर जल संरक्षण के साथ चलना हमारा कर्तव्य है। विकास के ये रंग यूं ही खिलते रहे, अमृत की ये धारा यूं ही बहती रहे। आज की इस विशेष कार्यक्रम डगर विकास की में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए सफर पर। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी और सहजते रहिए जीवन की सबसे अनमोल बूंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय रात के 8:30

यमला पगला दीवाना टू इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में कुमार के बोल थे। फिल्म है ओम शांति ओम। शान उदित नारायण श्रेया घोषाल सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजें जावेद अख्तर के बोल शंकर एहसान लॉय का संगीत

ओम शांति ओम। फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। ये सिंगम फिल्म का गाना है, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, अजय अतुल का संगीत है।

सिंघम फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं विविध भारती से, थोड़ी देर में आप सुनेंगे

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 149,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों

0: Radioscope, the National Science Magazine program.
1: चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
2: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
3: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं

चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार ए आर कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे के एल सह।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरूह सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरूह साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुत करता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

रात्रि के 10 बजे हैं। अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आनंद उठाते हैं इस कार्यक्रम का। ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
5: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
4: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said, the UCC will not infringe upon any tribal rights. The National Testing Agency, that is NTA, today postponed the Common University Entrance Test undergraduate, that is CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid ul-Zuha, that is Bakrid holiday, as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. The Central Board of Secondary Education, that is CBSE, today extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12th board examinations by one more day until tomorrow. CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. The board advised candidates to avail of this extended timeline and submit their applications accordingly. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given directions to depute a team of professors and technical experts from Indian Institute of Technology, that is IIT Madras and IIT Kanpur, to assist the Central Board of Secondary Education, CBSE, in ensuring a glitch-free re-evaluation process. The decision has been taken in view of the developments and concerns raised by students and parents regarding the CBSE post-result services portal. In Karnataka, eight members of a family, including seven women, drowned in the Thatte Hakalu River in Uttara Kannada district today. The mishap occurred when they were collecting freshwater mussels and were swept away by strong currents. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the incident. Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. Chief Minister Siddaramaiah also announced an ex gratia of 5 lakh rupees for the next of kin of each deceased. The India Meteorological Department, that is IMD, has forecast that severe heat wave conditions are likely to persist over central and northwest India for the next 7 days. The weather agency also issued a red alert for severe heat wave conditions over East Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. At the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers continued their impressive run, securing 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam's Da Nang today. And that is the end of this news bulletin.
6: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर अपने बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद।